ये आकाशवाणी का छिंदवाड़ा केंद्र है, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 11वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 2 जुलाई सन 2026। सुबह के 5:58 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा प्रारंभ होती है।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के ठीक 6 बजे का समय हुआ है। लीजिए, अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

का सपना देखा था। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे अनेक देशभक्तों की कुर्बानियों से लेकर आज तक सियाचिन की बर्फ में तैनात जवानों तक ये जज्बा ही है जो भारत को अखंड बनाए रखता है। ऐसे देशभक्त वीरों को हमारा शत शत नमन है।

भगवान की भक्ति का पहला चरण है उनकी शरण में जाना। जब मनुष्य अपने अहंकार को त्याग कर ईश्वर के चरणों में समर्पित हो जाता है, तब उसे सांसारिक चिंताओं से मुक्ति मिल जाती है। ये भावना दर्शाती है कि हम निमित्त मात्र हैं और संचालन करने वाली वही परम शक्ति है।

कलयुग में ईश्वर की प्राप्ति का सबसे सरल मार्ग नाम स्मरण बताया गया है। मन की शांति और भटकती हुई इंद्रियों को वश में करने के लिए प्रभु का नाम एक औषधि के समान है। जब हम निष्काम भाव से उनका नाम जपते हैं तो हृदय में प्रेम का संचार होता है।

ईश्वर केवल मंदिरों में नहीं बल्कि कण कण में व्याप्त हैं। भक्ति का अर्थ है हर जीव में उस परमात्मा का अंश देखना। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं और सबके प्रति प्रेम का भाव रखते हैं, वही सच्ची पूजा है। ये विश्वास ही हमें कठिन समय में साहस देता है।

भक्ति की नींव श्रद्धा पर टिकी होती है। बिना विश्वास के की गई प्रार्थना केवल शब्द बनकर रह जाती है, लेकिन सच्चे विश्वास से पुकारा गया एक शब्द भी भगवान को खींच लाता है। हमारे विश्वास में ये दृढ़ता होनी चाहिए कि हर परिस्थिति में प्रभु हमारे साथ हैं।

आज की वंदना में सर्वप्रथम आपने सुना समूह स्वर में देशगान, इसके पश्चात हरिओम शरण, सुरेश वाडकर, अनूप जलोटा और जगजीत सिंह के सुरों में आपने सुनी भक्तिमय रचनाएं। इसी के साथ यही संपन्न होता है कार्यक्रम वंदना।

अभी आप आनंद ले रहे थे भक्ति रस का कार्यक्रम था वंदना। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र का प्रसारण है। सुबह के 6:30 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान। स्वर हैं रामकिशन चंदेश्री और शिप्रा बोस का।

शिव का वरण करने के पार्वती के निश्चय की परीक्षा लेने के उद्देश्य से सप्तर्षियों ने हर प्रकार से उन्हें शिव से विमुख करने का प्रयत्न किया, किंतु शैल कुमारी शैल की भांति ही दृढ़ थी। कहा, मैं महर्षि नारद के वचन की अनसुनी नहीं करूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े। हे मुनीश्वरो, यदि आप पहले मिल गए होते तो मैं आपका उपदेश सिर आंखों पर रखकर मान लेती, परंतु अब तो शिव जी के लिए मैं अपना जन्म हार चुकी हूँ, फिर उनके गुण दोष का विचार कैसा। मेरा तो करोड़ों जन्मों तक ये हठ रहेगा कि या तो मैं शिव जी को वरूंगी या फिर कुंवारी रहूंगी। शिव जी के लिए पार्वती की ऐसी प्रीति देखकर ज्ञानी मुनिगण उनकी जय जयकार कर उठे। बोले, हे माते, आप माया हैं और शिव कल्याणकारी भगवान। आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। ऋषिगण ने हिमवान के पास जाकर उन्हें पार्वती के पास भेजा, जो विनती करके उन्हें घर ले आए। उधर भगवान शंकर के पास जाकर ऋषियों ने पार्वती की दृढ़ प्रतिज्ञा का वर्णन सुनाया, जिससे भगवान शिव आनंद मग्न हो गए।

रामकिशन, चंदेश्री और शिप्रा बोस के स्वरों में अभी आपने सुना श्री रामचरितमानस गान। ये आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र का प्रसारण है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज पर, और सुबह के 6:40 का समय हुआ है। लीजिए अब सुनिए चिंतन। आलेख पंडित वासुदेव शास्त्री का है और वाचन स्वर है शैलेंद्र जोगी का।

0: और नष्ट होने वाली वस्तु को लेकर आप अपने में बड़प्पन निकृष्टता का अनुभव करते हैं? ये बहुत बड़ी भूल है। जैसे कोई धन को लेकर अपने को बड़ा मानता है, कोई मकान को लेकर अपने को बड़ा मानता है, कोई अच्छे कपड़े पहनकर अपने को बड़ा मानता है, कोई ऊंचा पद प्राप्त करके अपने को बड़ा मानता है, इन चीजों को पाकर मनुष्य में अभिमान का भाव आ जाता है। प्रभुता चाहे कैसी भी हो, अभिमान का कारण बनती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है कि प्रभुता पाए काम मद नाहीं, अर्थात संसार में किसी भी प्रकार की संपत्ति पद पाकर मनुष्य में अहम भावना आ ही जाती है। तनिक विचार करें गीता के उस वाक्य पर जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। अब बताइए कि जो कुछ पाकर आप अभिमान कर रहे हैं वो कल आपके पास से दूसरे के पास चली जाएगी। इसलिए विवेकी जनों को हर समय समदर्शी बनकर रहना चाहिए। ईश्वर कृपा और अपनी मेहनत से जो चीजें आपने उपार्जित की हैं इनका उपयोग करें, पर इनके द्वारा अपने को छोटा बड़ा न माने। आप इसी क्षण स्वीकार कर लें कि जड़ चीजों से हम अपने को बड़ा नहीं मानेंगे। जड़ चीजों को लेकर अपने को बड़ा मानना महान पराधीनता है। पराधीन को स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता है। पराधीन सपने हूं सुख नहीं। सहज सुख राशि होते हुए भी इंसान दुखी कब होता है? जब वो नाशवान की पराधीनता स्वीकार कर लेता है। आप दुख तो चाहते नहीं पर दुख की सामग्री बटोरते हैं। जब दुख की वस्तुएं पास में होती हैं तब मनुष्य में सारी विकृतियां आ जाती हैं। स्थिर चित्त से विचार करें और आपके पास जो है उसे जरूरतमंद को दें, यही सबसे बड़ी सेवा है। जब ये भावना आपके अंदर आ जाएगी तब आपके अंदर से हर प्रकार के अभिमान का सर्वथा नाश हो जाएगा। आप उदार मना बनकर सबके प्यारे हो जाएंगे और उसमें जो संतोष का अनुभव होगा वही आपकी सबसे बड़ी पूंजी बनेगा।
1: अभी आपने सुना।

अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे हेलो छिंदवाड़ा और देशगान सुबह 6:50 पर। साप्ताहिक पत्रोत्तर का कार्यक्रम भवदीय प्रसारित होगा सुबह 7:20 पर। प्रस्तुति अमोल शेंडे की होगी और प्रस्तुति सहयोग होगा रुखसाना खान का। सदाबहार नगमे आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम गीत गंगा में सुबह 7:35 पर।

सुबह 8:30 पर सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग, जिसे हम भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे। सुबह 9 से आप सुन पाएंगे विविध भारती सेवा के कार्यक्रम, जिन्हें हम मुंबई से अनुप्रसारित करेंगे। जिले की चिट्ठी भोपाल से अनुप्रसारित की जाएगी दिन के 10:00। दिन के 10:05 पर सुनिएगा

ये प्रारंभ कर 30 मिनट पर दिन के 11 बजे भारतीय सेवा के कार्यक्रम जिन्हें हम मुंबई से प्रसारित करेंगे। हमारी सांध्यकालीन प्रसारण सभा प्रारंभ होगी शाम 5:30 पर युवा श्रोताओं के अपने कार्यक्रम युवा वाणी के साथ, जिसमें आज की बात का विषय होगा खेल पत्रकारिता और निष्पक्ष रिपोर्टिंग का महत्व। होगा क्रम 7 सवाल और फिल्म संगीत से मनोरंजन होंगे अन्य आकर्षण। शाम 6 बजे सुनेगा भक्ति संगीत का कार्यक्रम संजवाती।

शाम 6:30 पर सुनिएगा आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जा रहे दूसरे सेमीफाइनल मैच का लंदन के द ओवल क्रिकेट ग्राउंड से सीधा प्रसारण, जिसे हम दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। किसान भाई बहन सुनेंगे उनका अपना प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी शाम 7:20 पर, जिसमें आज की बात होगी प्रकृति का वन महोत्सव इस विषय पर, और होगी चर्चा अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस के बारे में, लोग होंगे अन्य आकर्षण।

रात्रि 8 बजे से आप सुनेंगे आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जा रहे मैच का लंदन के सेवा के कार्यक्रम जिन्हें हम मुंबई करेंगे कार्यक्रम के

फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से। सुबह के 6:50 का समय हुआ है, लीजिए अब सुनिए हेलो छिंदवाड़ा। जिला जनसंपर्क कार्यालय छिंदवाड़ा से प्राप्त जानकारी के अनुसार कलेक्टर श्री हरेंद्र नारायण ने बुधवार को जिला जेल छिंदवाड़ा का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न बंदी वार्डो, पाकशाला, जेल चिकित्सालय, मुलाकात व्यवस्था एवं पुस्तकालय का अवलोकन किया तथा बंदियों से चर्चा कर उनकी समस्याओं एवं अनुभवों की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान विश्व चिकित्सक दिवस के अवसर पर जिला आयुष विभाग द्वारा आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण एवं चिकित्सा शिविर का शुभारंभ कलेक्टर श्री नारायण एवं जेल अधीक्षक श्री प्रतीक जैन की उपस्थिति में किया गया। शिविर में जिला जेल के परीक्षण कर साथ ही

कार्यालय ने कार्यप्रणाली, राजस्व प्रकरणों के निराकरण, अभिलेखों के संधारण एवं नागरिकों को उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं की जानकारी ली तथा आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड एवं जिला प्रशासन द्वारा अगस्त माह में तामिया में पहली बार 3 दिवसीय सावन महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। महोत्सव का उद्देश्य छिंदवाड़ा जिले में संचालित ग्रामीण होम स्टे का प्रचार प्रसार, पर्यटन विकास को बढ़ावा देना, तामिया पातालकोट को देश प्रदेश के पर्यटन मानचित्र पर सशक्त पहचान दिलाना तथा स्थानीय पारंपरिक खेलों और संस्कृति को प्रोत्साहित करना है। जिला पुरातत्व पर्यटन एवं संस्कृति परिषद के माध्यम से आयोजित होने वाले इस महोत्सव में पर्यटकों के लिए सावन के झूले, हस्तकला एवं हथकरघा उत्पादों की प्रदर्शनी, बैलगाड़ी राइड सहित अनेक आकर्षक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। कलेक्टर श्री हरेंद्र नारायण एवं जिला पंचायत सीईओ श्री अग्रिम कुमार के मार्गदर्शन में महोत्सव की तैयारियां व्यापक स्तर पर की जा रही हैं। शासकीय औद्योगिक संस्था के नोडल निम्जित ने बताया

0: समूह स्वर में अभी आपने सुना देशगान। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से FM 102.2 MHz पर। सुबह के 7 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम दिल्ली से अनुप्रसारित कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
2: नवंबर 2024 में टोक्यो में आयोजित पहले आर्थिक सुरक्षा संवाद के दौरान भारत और जापान ने रणनीतिक सहयोग के लिए 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की थी। इनमें सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, फार्मास्यूटिकल्स, स्वच्छ ऊर्जा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शामिल है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रमुख मंच बना हुआ है। वर्ष 2025 में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान जापान भारत मानव संसाधन आदान प्रदान एवं सहयोग कार्य योजना शुरू की गई। इसके तहत अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच 5,00,000 लोगों के दो तरफा आदान प्रदान का लक्ष्य रखा गया है। इसमें भारत से जापान जाने वाले 50,000 कुशल और अर्ध कुशल कर्मी भी शामिल है। दोनों देशों के बीच विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य वरिष्ठ स्तरों पर

0: भी नियमित रूप से बैठकें और उच्च स्तरीय आदान प्रदान होते रहते हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री तकाईची भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान के प्रधानमंत्री के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत और मलेशिया ने कल नई दिल्ली में आपसी सैन्य सहयोग की समीक्षा की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों पक्षों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और मुक्त आवाजाही को लेकर प्रतिबद्धता व्यक्त की। 12वीं उप समिति की बैठक में दोनों देशों के बीच मौजूदा रक्षा पहलू, सैन्य संपर्क, द्विपक्षीय अभ्यास, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, समुद्री तथा अन्य उभरते क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में मदद मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यव्यापी विशेष भूमि मापन अभियान डीजी रोवर की शुरुआत की है। ये अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर में इस अभियान की शुरुआत की। अभियान में हर तहसील में भूमि सीमांकन और मापन से जुड़े मामलों का समाधान नई तकनीक से किया जाएगा। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में अब तक 32,000 से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटीकरण किया जा चुका है। राष्ट्रीय राजधानी में अब तक करीब 9,99,000 प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं। झारखंड सरकार ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद राज्य में स्वास्थ्य अलर्ट जारी किया है। सरकार ने रक्त संक्रमण से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए सभी उपायुक्तों को तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था आज जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से रवाना हो चुका है। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जत्थे को रवाना किया। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। 57 दिनों की ये यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला गया T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीम 0-0 से बराबरी पर हैं। डूरंड कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलोंग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। अटलांटा में खेले गए मुकाबले में कप्तान हैरी केन ने मैच के अंतिम 15 मिनट में 2 गोल दागकर इंग्लैंड को रोमांचक जीत दिलाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 MHz पर। सुबह के 7:05 का समय हुआ है। लीजिए अब सुनिए कुछ महत्वपूर्ण संदेश।
3: वात रोग, उदर रोग, मूत्र रोग, चर्म रोग, मानसिक रोग, श्वास रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, स्त्री रोग के इलाज हेतु विभिन्न पंचकर्म विधियों व आयुर्वेदिक दवा का प्रयोग आज ही संपर्क करें डॉक्टर निधि जैन, आदिवासी संग्रहालय के सामने छिंदवाड़ा। कॉल करें 9794543985।
4: हेलो
5: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ। आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए, अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
6: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
4: सर इतने कहाँ से?
6: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
5: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
4: 2 लाख
7: क्या हुआ पापा?
4: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
5: अरे
4: काट दिया।
7: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
4: फ्रॉड?
7: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
4: तो पैसे गवाओगे।
8: RBI कहता है
9: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: के लिए कुकड़ा हिल्स आकाशवाणी कार्यालय छिंदवाड़ा में संपर्क करो और हम त्योहारों की शुभकामनाएं या किसी विशेष अवसरों पर किसी को बधाई देना चाहते हो तो भी आप आकाशवाणी कार्यालय छिंदवाड़ा में संपर्क कर सकते हैं।
1: अच्छा, मेरे चाचा बर्तनों की दुकान खोल रहे हैं, उसके लिए भी?
0: हाँ हाँ, अपने प्रतिष्ठान के शुभारंभ पर भी आप बधाई दे सकते हैं या जानकारी दे सकते हैं, तो विज्ञापन के लिए संपर्क करें
1: कुकड़ा हिल्स आकाशवाणी कार्यालय छिंदवाड़ा।
0: हाँ,
2: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
3: सुनो ना।
4: हाँ?
3: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं,
4: तो
3: की मदद किससे मांगू?
4: मुझसे।
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
4: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
4: देखो, फायदा है जिस शहर में चाहो विज्ञापन के तहत तक पहुँच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूँ?
4: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो
3: 870-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
5: ये आकाशवाणी का छिंदवाड़ा केंद्र है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 7:10 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम भोपाल से अनुप्रसारित करने जा रहे हैं। कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री के बीच आज होगी द्विपक्षीय वार्ता। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, धान की फसल पर भावांतर राशि दी जाएगी। प्रदेश में मॉनसून सक्रिय, लोगों को झमाझम बारिश का इंतजार। और भारत इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच बारिश के कारण ड्रॉ रहा, दूसरा मैच शनिवार को होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता करेंगे। वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर

0: हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। प्रधानमंत्री ताकाइची की ये पहली भारत की आधिकारिक यात्रा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है और ये यात्रा इसे आगे ले जाने में सहायक होगी। पेश है एक रिपोर्ट।
1: नवंबर 2024 में टोक्यो में आयोजित पहले आर्थिक सुरक्षा संवाद के दौरान भारत और जापान ने रणनीतिक सहयोग के लिए 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की थी। इनमें सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, फार्मास्यूटिकल्स, स्वच्छ ऊर्जा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शामिल है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन देशों की रणनीतिक साझेदारी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रमुख मंच बना हुआ है। वर्ष 2025 में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान जापान भारत मानव संसाधन आदान प्रदान एवं सहयोग कार्य योजना शुरू की गई। इसके तहत अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच 5,00,000 लोगों के दो तरफा आदान प्रदान का लक्ष्य रखा गया है। इसमें भारत से जापान जाने वाले 50,000 कुशल और अर्ध कुशल कर्मी भी शामिल है। दोनों देशों के बीच विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य वरिष्ठ स्तरों पर भी नियमित रूप से बैठकें और उच्च स्तरीय आदान प्रदान होते रहते हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश के धान उत्पादक किसानों के हित में बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि अब धान की फसल पर भी भावांतर योजना का लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमारे हालधर किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं, इस धरा के वास्तविक शुभंकर हैं। किसानों की खुशहाली ही हमारी सरकार का संकल्प है, क्योंकि किसान समृद्ध होगा तभी हमारा प्रदेश और देश समृद्ध होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि महाकौशल की धरती धान उत्पादन के लिए जग प्रसिद्ध है। क्षत्रिय धान को अब भौगोलिक संकेतक जाई टैग मिल गया है। श्री यादव ने कहा,
2: धान पर भी हम भावांतर देने वाले जोरदार ताली बजाए, भावांतर योजना। आप धान लगाओगे, जो भाव आपको मंडी में बेचे अच्छे से अच्छा भाव दिलाने का प्रयास करेंगे, लेकिन अगर नहीं मिला तो बीज का अंतर वो हमारी सरकार आपको देने वाली है। आपके माध्यम से हमारी सरकार खेत से लेके कारखाने तक और बाग से लेके बाजार तक हरेक क्षेत्र में मूल्य संवर्धन श्रृंखला लगा रही है। हरेक किसान को उसकी फसल का ठीक से लाभ मिले, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं।
0: मुख्यमंत्री डॉ. यादव कल सिवनी जिला मुख्यालय में आयोजित राज्य स्तरीय धान महोत्सव को संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि GST को लागू करना एक राष्ट्र एक कर एक बाजार की अवधारणा तक सीमित नहीं होकर एक राष्ट्र एक संकल्प और एक साझा उत्तरदायित्व का जीवंत प्रतीक है। राज्यपाल श्री पटेल कल GST के 9वें वर्ष के अवसर पर भोपाल के रविन्द्र भवन में सुगम कर सशक्त भारत थीम पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि GST की 9 वर्षों की इस यात्रा से देश को दशकों पुराने इंस्पेक्टर राज और जटिल कर तरीकों के जाल से मुक्ति मिली है। यह ऐतिहासिक यात्रा इस बात का प्रमाण है, जब केंद्र और राज्य एकजुट होकर कार्य करते हैं तो आर्थिक सुधार केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं रह जाते बल्कि एक राष्ट्रीय आंदोलन का रूप लेते हैं। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। नई दिल्ली में आकाशवाणी के रंग भवन में कल फोटो गैलरी स्वर प्रेरणा पथिका का अनावरण किया गया। पद्म विभूषण बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ने उसका उद्घाटन किया। गैलरी में भारत रत्न पुरस्कार विजेताओं के चित्र शामिल हैं। कार्यक्रम के दौरान पंडित रूपक कुलकर्णी द्वारा बांसुरी वादन प्रस्तुत किया गया। इस दौरान प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी तथा DD न्यूज के महानिदेशक राजीव कुमार जैन उपस्थित थे। सभा को संबोधित करते हुए श्री द्विवेदी ने कहा कि आकाशवाणी ने भारत की समृद्ध संगीत विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा,

0: आकाशवाणी ने हमेशा से ही अपने कार्यक्रमों में संगीत की सभी विधाओं को स्थान दिया है और संगीत में रुचि रखने वाले कलाकारों को प्रोत्साहन दिया है और साथ ही श्रोताओं की पसंद का भी विशेष ध्यान रखा गया है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, कर्नाटक संगीत, सुगम संगीत, लोक संगीत, भक्ति संगीत, फिल्म संगीत, पाश्चात्य संगीत, रवींद्र संगीत, इस प्रकार अनेक विधाओं के संगीत को कोई सुनना चाहे तो आज भी उनके लिए आकाशवाणी सर्वश्रेष्ठ माध्यम है।
1: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार ने 24 घंटे नवकरणीय ऊर्जा उपलब्ध कराने के महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत कर दी है। उन्होंने बताया कि दावोस में की गई घोषणा के अनुरूप प्रदेश 24 घंटे हरित ऊर्जा देने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव मध्य प्रदेश भवन नई दिल्ली में आयोजित प्री बिड मीटिंग को वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। प्रदेश में मानसून सक्रिय है। कल उज्जैन, बालाघाट, कटनी, सीहोर, उमरिया, धार और मंडला समेत 7 जिलों में बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार भोपाल और सागर संभाग को मानसून पूरी तरह कवर कर चुका है, जबकि उज्जैन, ग्वालियर और चंबल संभाग में दस्तक बाकी है। राजधानी भोपाल में आज सुबह से बादल छाए हुए हैं। कल भी दिनभर यहां रुक रुक कर बारिश होती रही। प्रदेश में मानसून सक्रिय होने के बाद लोगों को झमाझम बारिश का इंतजार है। मौसम विभाग ने कल के लिए बालाघाट और डिंडौरी में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच चेस्टरली स्ट्रीट में खेला गया पहला टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच बारिश के कारण रद्द हो गया। इसके साथ ही श्रृंखला 0-0 से बराबरी पर है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 189 रन बनाए। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा टी20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्मदापुरम जिले की पिपरिया स्थित शहीद भगत सिंह शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में कल से 9 प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए 3 दिवसीय दीक्षांत कार्यक्रम का आयोजन शुरू हुआ। मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय ईश्वरदास रोहाणी की स्मृति में कल जबलपुर के मानस भवन में गौरव शिखर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। शिवपुरी में अवैध कब्जों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने पोहरी के ग्राम अनभौरा में लगभग 3 करोड़ रुपए की 150 बीघा से अधिक पट्टे की भूमि को दबंगों के कब्जे से मुक्त कराया। खंडवा में बीबी जी रामजी योजना का जिला स्तरीय शुभारंभ आज विकासखंड की ग्राम पंचायत बमन गांव आखई में होगा। वहीं बीबीजी रामजी योजना का आगरमालवा में जिला स्तरीय शुभारंभ 2 जुलाई को यानी आज सुबह ग्राम पंचायत पिपलिया चाचा में किया जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग की सदस्य बारेलाल अहिरवार आज अशोकनगर कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला अधिकारियों के साथ विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक लेंगे। झाबुआ कलेक्टर ने रक्तदान शिविर में रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया। शिविर में 67 यूनिट रक्तदान हुआ। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र का प्रसारण है। सुबह के 7:20 का वक्त हो चला है। लीजिए अब प्रस्तुत है साप्ताहिक समीक्षात्मक कार्यक्रम भवदीय। प्रस्तुति अमोल शेंडे की है और प्रस्तुति सहयोग है रुखसाना खान का।

0: बरसात की बूंदों में भी एक पैगाम होता है। हर भीगा हुआ लम्हा किसी अपने के नाम होता है। नमस्कार, आदाब, सुप्रभात, स्वागत है आप सभी का पत्रोत्तर के साप्ताहिक कार्यक्रम भौदिया में।
1: बरसात की सुहानी सुबह, बादलों की चहलकदमी,

0: हवाओं की सरगोशियां और मिट्टी की ये सौंधी सी खुशबू आज की सुबह को खास बना रही है। ऐसे खूबसूरत मौसम के साथ हम लेकर आए हैं आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम भवदीय। आपके पत्र, आपकी प्रतिक्रियाएं और आपकी वो भावनाएं जो दूरियों के बावजूद हमें आपसे और आपको हमसे जोड़े रखती हैं।
1: श्रोताओ, आपके पत्र हमारे लिए केवल शब्द नहीं बल्कि विश्वास, अपनेपन और स्नेह की अमूल्य धरोहर है।
0: तो अब अगले 15 मिनट तक सजी रहेगी ये महफिल आपके पत्रों और संदेशों के साथ। श्रोताओ, आज इस प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त रुखसाना
1: और मैं अमोल शिंदे करते हैं आपका स्वागत और कहते हैं आपसे नमस्कार। रुखसाना जी, हर कार्यक्रम की तरह इस कार्यक्रम में भी बहुत अधिक मात्रा में पत्र हमें प्राप्त हुए हैं, तो हम बिल्कुल वक्त नहीं गंवाते हैं और शुरुआत करते हैं आज के भव्य कार्यक्रम की इस संदेश के साथ।
0: ये पहला संदेश हम तक पहुंचा है अमोल जी, लकी इवनाती, नितेश गवनेकर, मनीष थानवर, विनोद दुबे, सुरेश इवनाती, तेजीलाल मरकाम, मनीष प्रजापति और इनके साथियों का। आप सभी हमें संदेश प्रेषित करते हैं टीवी टावर चांदा मेटा से।
1: सभी हमारे सुधी और निमिष होता है। इस सप्ताह लकी जी और इनके साथी क्या लिखते हैं?
0: बीते सप्ताह का भवदीय कार्यक्रम इन्होंने पसंद किया है। 26 तारीख को प्रसारित कार्यक्रम युववाणी की ये तारीफ लिखते हैं। 27 तारीख का कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम इन्होंने पसंद किया है। इसी तरह हेलो आकाशवाणी, विविधा और शब्द चित्र कार्यक्रम की भी इन्होंने तारीफ लिखी है। साथ ही लिखा है कि 1 जुलाई को प्रसारित कार्यक्रम गीत गंगा बहुत अच्छा रहा।
1: लकी उनाती जी, नितेश गोनेकर जी और सभी साथी, आप हमारे नियमित और सुधीश होता है। आपके संदेश से प्रतीत होता है कि विगत सप्ताह आकाशवाणी छिंदवाड़ा से प्रसारित लगभग सभी कार्यक्रम आपने सुने हैं और काफी अच्छी समीक्षा हम तक पहुंचाई है। आपके संदेश के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
0: और अब किसका संदेश शामिल कर रहे हैं अमोल जी?
1: रुखसाना जी, ये संदेश भी हमारे नियमित और प्रबुद्ध श्रोता मित्रों के समूह द्वारा हमें प्राप्त हुआ है। लिखने वाले हमारे श्रोता मित्र है जाटा छापर चौकी लाइन से मोहनलाल देवांगन, रेखा देवांगन, अर्चना जी, रुखसाना बेगम, सूरज, आश्रित आर्य, ममता भन्नारे, होरीलाल रुतिया, अब्दुल रबजई, दयाशंकर साहू, महेश मार्सकुल्ले, जगदीश यादव, राजू नाग, जगजीत पटेल, माधुरी कुमरे, रुपेश, नयन उइके, नवीन सेठ और इसी संदेश में शामिल है रावनवाड़ा आमालाइन से शेख मुनव्वर, सकीना बेगम, शेख समीर, नजमा, गोलू, रीना, इरफान खान, अरसी, इस्ताक अली, रजिया बेगम, अल्फाज अली, सनाया, रफीक खान और ईद नबी।
0: बहुत बड़ा श्रोता समूह ये हमारा। क्या लिखा इन्होंने इस सप्ताह?
1: रुखसाना जी, इस सप्ताह हमारे श्रोता मित्र लिखते हैं, विगत सप्ताह का 25 जून का कार्यक्रम बहुत ही शानदार था। इसी दिन का कार्यक्रम गीत गंगा और शीर्षक गीत की भी इन्होंने तारीफ लिख भेजी है। 26 जून के कार्यक्रम गीत गंगा, 27 जून का कार्यक्रम गीत गंगा और साथ ही साथ मेरी पसंद, 28 जून को गीत गंगा और हेलो आकाशवाणी, 29 तारीख का कार्यक्रम विविधा, 30 तारीख का कार्यक्रम गीत गंगा और 1 जुलाई का भी कार्यक्रम गीत गंगा इन्होंने बेहद पसंद किया है।
0: मोहनलाल देवांगन जी को इस स्नेह के लिए कहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी इनके संदेश की हम प्रतीक्षा करेंगे। और अब अगले संदेश के साथ हैं सरोज पथरोले, मेघा पथरोले, पूजा खरे, कुंज झा, शिव कुमार सयाम, राम ध्रुवे, आप सभी हमें संदेश प्रेषित करते हैं बाबू लाइन चांदामेटा से।
1: सरोज पत्रोली जी और सभी साथी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। इस सप्ताह क्या कहना है सरोज पत्रोली जी का?
0: बीते सप्ताह का भव्य कार्यक्रम इन्हें बहुत अच्छा लगा है। आगे आप लिखते हैं 26 तारीख को प्रसारित कार्यक्रम युववाणी और गीत गंगा की प्रस्तुति बहुत ही अच्छी थी। 27 तारीख का कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम इन्होंने पसंद किया है। इसके साथ ही बीते सप्ताह का हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम, विविधा और शब्द चित्र की भी इन्होंने तारीफ लिख भेजी है। और 1 तारीख को प्रसारित कार्यक्रम गीत गंगा और फिल्म संगीत की भी इन्होंने तारीफ लिखी है।
1: सरोज पत्रोली जी, मेघा जी और सभी साथी, आप आकाशवाणी छिंदवाड़ा से कई वर्षों से जुड़े हैं, यही साथ निरंतर बना रहे इसी उम्मीद के साथ आपके संदेश के लिए हम आपको धन्यवाद कहते हैं।
0: और अब अगला संदेश किसका है?
1: रुखसाना जी, अगला संदेश भी हमारे नियमित और सुधी श्रोता मित्रों द्वारा प्राप्त हुआ है। ताजनगर छिंदवाड़ा से लिखते हैं हमें गफ्फार बाबू, रुखसाना बेगम, आयरा, इनाया, राहुल पाल, फूल सिंह मक्कड़, हरेश विश्वकर्मा और इसी संदेश में शामिल है नॉर्थ चांदामेटा से मोहम्मद अशफाक, अब्दुल सत्तार, अब्दुल रज्जाक और हुमा शायमा जी।
0: क्या लिखा इन सभी ने?
1: गफ्फार बाबूर साथी इस सप्ताह लिखते हैं 25 जून का कार्यक्रम बहुत ही शानदार था। 26 जून का कार्यक्रम गीत गंगा, युवानी, किसानवानी, इन सभी लोगों को बहुत पसंद आया है और साथ ही साथ अनुरोध की पेशकश की भी लाजवाब थी। 27 तारीख का कार्यक्रम गीत गंगा, कुछ बातें कुछ गीत, युवानी, किसानवानी, 28 जून को गीत गंगा, हेलो छिंदवाड़ा, हेलो आकाशवाणी, बाल सभा और किसानवाणी बहुत ही बढ़िया रहे। 29 तारीख का कार्यक्रम विविधा बहुत ज्ञानवर्धक था, ऐसा इनका कहना है। साथ ही साथ सोमवार का कार्यक्रम गीत गंगा, फिल्म संगीत की भी तारीफ लिखते हैं। 30 तारीख को शब्द चित्र गीत गंगा और 1 जुलाई का कार्यक्रम चिंतन, हेलो छिंदवाड़ा, गीत गंगा और फिल्म

0: संगीत में जो गीत सुनवाए गए थे वो काफी शानदार थे, ऐसा इनका कहना है।
1: लगभग सप्ताह भर के कार्यक्रम इन्होंने सुने हैं और अपने विचार भी हमारे साथ साझा किए हैं। इस संदेश के लिए और इस स्नेह के लिए इन्हें कहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सप्ताह भी हम इनके संदेश की प्रतीक्षा करेंगे। और अब कार्यक्रम में शामिल ये अगला संदेश हम तक पहुंचा है, वार्ड क्रमांक 14, न्यूटन नंबर 13, न्यूटन चिखली, परासिया से। संदेश भेजने वाले श्रोता हैं अनिल वाघ, संगीता वाघ, रविन्द्र वाघ, वंदना वाघ, अंकेश वाघ, अनुवेश वाघ, ऋतिक वाघ, अंकु और सिंकी।
0: वाघ परिवार के समस्त सदस्यों का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। इस सप्ताह वाघ जी का क्या कहना है?
1: बीते सप्ताह का भव्य कार्यक्रम इन्हें बहुत अच्छा लगा है। मेरी पसंद कार्यक्रम, कुछ बातें कुछ गीत और अनुरोध की भी इन्होंने तारीफ लिख भेजी है। इसी तरह आपको बाल सभा और हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम भी बहुत पसंद आया है। आगे आप लिखते हैं कि शब्द चित्र कार्यक्रम की प्रस्तुति लाजवाब थी। 1 जुलाई का गीत गंगा, फिल्म संगीत और सबरस कार्यक्रम भी इन्होंने पसंद किया है।
0: अनिल वाघ जी, संगीता वाघ जी और वाघ परिवार के समस्त सदस्य, आप भी कई वर्षों से आकाशवाणी छिंदवाड़ा के साथ निरंतर जुड़े हैं, यही जुड़ाव भी भविष्य में कायम रहेगा, यही हमारी कामना है। वाघ जी, आपके संदेश के लिए आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।
1: और अब अगला संदेश किसका है?
0: रुखसाना जी, अगला संदेश भी हमारे प्रभु श्रोता मित्रों के समूह द्वारा प्राप्त हुआ है। भमोड़ी कॉलरी से हमें लिखते हैं इसरीलाल वर्मा जेम्स, शाइनी वर्मा जेम्स, जय वर्मा, महिमा, यश, बेबी तक्षिका, श्रद्धा, शांति सुमन जी, एम जख्मी, एम रोशनी, क्षितिज, आशु, अमरदीप और इनके परिवार के अन्य सदस्य।
1: क्या लिखते हैं ये सभी?
0: जेम जी ने अपने संदेश की शुरुआत की है कि विगत सप्ताह की तरह इस सप्ताह के कार्यक्रम भी बहुत ही शानदार थे, समस्त कार्यक्रम बहुत कर्णप्रिय लगे, ऐसा इनका कहना है। विशेष रूप से इनके पसंदीदा कार्यक्रम थे विगत सप्ताह के गीत गंगा, फिल्म संगीत, हेलो आकाशवाणी, युवानी, हेलो छिंदवाड़ा, ये सभी कार्यक्रम इन्होंने बहुत पसंद किए हैं। साथ ही साथ क्रिकेट की कमेंट्री का भी इन्होंने भरपूर लुत्फ उठाया है,
1: क्या
0: ऐसा
1: बात
0: इनका
1: है।
0: कहना है।
1: इसरी लाल वर्मा जेम्स जी, इस स्नेह के लिए और आकाशवाणी के साथ जुड़ाव के लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं अमोल जी एक और संदेश के साथ। ये हम तक पहुंचा है वार्ड नंबर 15, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पीछे, परासिया से। इसे लिख भेजा है सतीश शिव, कविता शिव, प्रियांश शिव और आराध्या शिव जी ने।
0: जी, शिव परिवार का स्वागत है, क्या कहना है इनका?
1: बीते सप्ताह का भव्य कार्यक्रम इन्हें अच्छा लगा है। 26 तारीख को प्रसारित कार्यक्रम युववाणी की इन्होंने तारीफ लिख भेजी है। 27 तारीख को प्रसारित कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत की भी तारीफ ये लिखते हैं। बीते रविवार का हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम इन्होंने पसंद किया है। विविधा की भी ये तारीफ लिखते हैं। शब्द चित्र कार्यक्रम भी इन्हें बहुत अच्छा लगा है। साथ ही आप लिखते हैं कि 31 तारीख को प्रसारित कार्यक्रम गीत गंगा और फिल्म संगीत की प्रस्तुति बहुत अच्छी थी।
0: शुभ परिवार, आप भी हमारे नियमित और प्रभु श्रोता है, आपने भी काफी अच्छी समीक्षा हम तक पहुंचाई है, यही स्नेह भविष्य में आप बरकरार रखिए, इसी उम्मीद के साथ आपको हम धन्यवाद कहते हैं।
1: और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं एक और संदेश के साथ। किसका संदेश है ये अमोल जी?
0: रुखसाना जी, ये संदेश भी हमारे प्रभु श्रोता मित्रों के समूह द्वारा हमें प्राप्त हुआ है। देवेंद्र बख्शी जी, मुफ्फी भाई, राजू यदुवंशी, अरविंद साइमन, मेतु शाह दुर्वे, उमेश सिंह ठाकुर, सभी लिखते हैं हमें राम मंदिर के पास परासिया से।
1: आप सभी हमारे नियमित श्रोता हैं।
0: बख्शी जी का कहना है, विगत सप्ताह 25 तारीख का कार्यक्रम भौदिया बहुत बढ़िया रहा, 26 तारीख का कार्यक्रम वंदना, रामचरित मानस गान और देशगान की तारीफ लिखते हैं, 27 तारीख का कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत, 28 तारीख को हेलो आकाशवाणी, 29 तारीख का कार्यक्रम विविधा, ये सभी कार्यक्रम इन्होंने पसंद किए हैं, 30 तारीख का कार्यक्रम शब्द चित्र की वे तारीफ लिखते हैं, 1 तारीख का कार्यक्रम गीत गंगा और फिल्म संगीत के गीतों ने जुलाई महीने की शुरुआत बहुत ही शानदार करवा दी, ऐसा इनका कहना है। विशेष रूप से ये कहते हैं कल 1 जुलाई था, राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस हम मनाते हैं 1 जुलाई को, इस दिन के अवसर पर उन्होंने देश भर के डॉक्टरों को बहुत बहुत बधाई प्रेषित की है।
1: बहुत अच्छी बात है देवेंद्र जी, आपने अपने विचार, अपने संदेश हमारे साथ साझा किए हैं, अपनी भावनाएं हम तक प्रेषित की हैं। इसी तरह से हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए और हमारे साथ अपने विचार भी साझा करते रहिए। ये जुड़ाव बहुत देर तक और दूर तक बना रहना चाहिए। और आप तो हमारे ऐसे प्रबुद्ध श्रोता हैं कि आप नए नए श्रोताओं को भी हमारे साथ जोड़ते रहते हैं। बहरहाल, इस संदेश के लिए आपको कहते हैं धन्यवाद। और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं एक और संदेश के साथ। ये हम तक पहुंचा है ग्राम आलीवाड़ा, ब्लॉक तामिया, जिला छिंदवाड़ा से। लिख भेजा है देवीराम इनवाती और दामिनी इनवाती जी ने।
0: जी, इनवाती परिवार का स्वागत है।
1: आपने लिखा है 25 जून को प्रसारित कार्यक्रम चिंतन और गीत गंगा की प्रस्तुति बहुत ही अच्छी थी। इसी दिन 26 तारीख का अनुरोध कार्यक्रम और किसानवाणी कार्यक्रम इन्होंने पसंद किया है। कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम की भी ये तारीफ लिखते हैं। 28 जून को प्रसारित कार्यक्रम गीत गंगा और युववाणी की प्रस्तुति इन्हें अच्छी लगी है। 29 तारीख को प्रसारित कार्यक्रम विविधा की ये तारीफ लिखते हैं। 30 तारीख का शब्द चित्र कार्यक्रम भी इन्होंने पसंद किया है। और साथ ही

0: लिखते हैं कि 1 जुलाई का वंदना और चिंतन कार्यक्रम के साथ ही गीत गंगा की प्रस्तुति भी शानदार थी।
1: देवीराम इनवाती जी, दामिनी जी, आपने भी विगत सप्ताह प्रसारित हुए लगभग सभी कार्यक्रम सुने हैं और काफी अच्छी समीक्षा हम तक पहुंचाई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आकाशवाणी छिंदवाड़ा के साथ जुड़ने के लिए। अगले सप्ताह भी आपके संदेश का हमें रहेगा इंतजार। तब तक आकाशवाणी छिंदवाड़ा से प्रसारित कार्यक्रमों का आप आनंद लीजिए।
0: और अब अगला संदेश किसका है?
1: रुक्साना जी, अगला संदेश भी हमारे नियमित श्रोता मित्रों के समूह द्वारा हमें प्राप्त हुआ है। श्रीजी साहू परिवार सिंगोड़ी से हमें लिखते हैं, इसमें शामिल श्रोता मित्र है किरण रामनाथ साहू, बबली नर्मदा साहू, दीप शिखा, दीपक, हितेश, गुलशान, अमन और साहू परिवार के अन्य सदस्य।
0: क्या लिखते हैं श्री जी साहू परिवार के सदस्य?
1: साहू जी लिखते हैं, विगत सप्ताह गुरुवार का कार्यक्रम बहुत ही काफी अच्छा लगा। 26 तारीख को गीत गंगा, किसान वाणी, अनुरोध इनके पसंदीदा कार्यक्रम थे। 27 तारीख को कुछ बातें कुछ गीत, गीत गंगा, मेरी पसंद, ये प्रमुख रूप से इन्होंने पसंद किए हैं। रविवार का कार्यक्रम बाल सभा, हेलो आकाशवाणी और युवानी की ये तारीफ लिखते हैं। साथ ही साथ मंगलवार का कार्यक्रम गीत गंगा और शब्द चित्र भी इन्होंने बहुत पसंद किए हैं। और 1 तारीख का कार्यक्रम गीत गंगा और फिल्म संगीत के जो उद्घोषिका जी ने गीत सुनवाए थे, ये इन्हें बहुत पसंद आए।
0: श्री जी साहू परिवार को इस संदेश के लिए कहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए और हमारे साथ अपने विचार भी साझा करते रहिए। और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ रहे हैं एक और विस्तारित संदेश के साथ।
1: जी
0: आप जान गए होंगे ये किसका संदेश है।
1: जी कस्तूरी जी परिवार का ही संदेश होगा ये, रुक्साना
0: बिल्कुल
1: जी।
0: बिल्कुल, विस्तारित संदेश के नाम से हमारे
1: जी
0: श्रोता भी समझ गए होंगे।
1: जी
0: ये संदेश हम तक पहुंचा है वार्ड नंबर 11 शिव मंदिर के पास उमरेड से। इसे लिख भेजा है सुरेश कस्तूरे, राजेश कस्तूरे, शांतनु कस्तूरे, विक्रम कस्तूरे, राम कस्तूरे, श्याम कस्तूरे, अतुल कस्तूरे, पार्थ कस्तूरे, राघव जोशी, अनुराधा कस्तूरे, रेणुका, स्वाति, नीता कस्तूरे, श्रुति कस्तूरे, नमो कस्तूरे और इनके साथियों ने।
1: कस्तूरी परिवार का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। इस सप्ताह कस्तूरी जी अपने संदेश में क्या लिखते हैं?
0: बीते सप्ताह का भवदीय कार्यक्रम इन्हें बहुत अच्छा लगा है। साथ ही आप लिखते हैं कि वतन का राग कार्यक्रम की प्रस्तुति भी बहुत अच्छी रही थी। इसी दिन यानी कि 25 जून को प्रसारित वतन के राग कार्यक्रम की ये बात कर रहे हैं।
1: जी
0: 26 जून को प्रसारित कार्यक्रम वंदना और हेलो छिंदवाड़ा की प्रस्तुति इन्हें अच्छी लगी है। 27 तारीख का कार्यक्रम चिंतन और शक्ति रूपा की भी इन्होंने तारीफ लिख भेजी है। इसी दिन का कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम भी इन्हें अच्छा लगा है। 28 जून को प्रसारित कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी की इन्होंने तारीफ लिख भेजी है और बाल सभा कार्यक्रम भी इन्हें अच्छा लगा है। साथ ही आप लिखते हैं 29 तारीख को विविधा में हारमोनियम का जादू बिखेरने वाले नन्हे बालक आरव सेठिया जी से अमोल शेंडे जी की बातचीत बहुत ही अच्छी लगी। और आगे आप लिखते हैं 30 तारीख को प्रसारित कार्यक्रम रामचरितमानस गान की इन्होंने तारीफ लिख भेजी है। इसी दिन का शब्द चित्र कार्यक्रम इन्हें अच्छा लगा है जिसमें जानी मानी कवित्री शेफाली शर्मा जी का काव्य पाठ तथा लघु कथा हमने शामिल की थी वो इन्हें बहुत अच्छा लगा है। इसी दिन का मिश्र संगीत का कार्यक्रम भी इन्होंने पसंद किया है। 1 जुलाई को प्रसारित कार्यक्रम गीत गंगा की ये तारीफ लिखते हैं। इसी दिन का सबरस कार्यक्रम और फिल्म संगीत भी इन्हें अच्छा लगा है।
1: कस्तूरी जी, आपने काफी विस्तारित संदेश हम तक पहुंचाया है। इससे प्रतीत होता है कि आप बिना भूले आकाशवाणी छिंदवाड़ा से प्रसारित लगभग सभी कार्यक्रम सुनने का प्रयास करते हैं और निरंतर कई वर्षों से आपके द्वारा हमें विस्तारित संदेश हमेशा प्राप्त होते रहे हैं। यही निरंतरता आप बनाए रखिए। आपके संदेश के लिए पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। रुक्साना जी, अगला संदेश भी हमारे प्रभु श्रोताओं का है। लक्ष्मण प्रसाद डेहरिया, सूरज नारायण डेहरिया, अभिषेक, निखिल, पूजा, स्वाति, रुचि, पल्लवी और संदीप डेहरिया जी गीतांजलि कॉलोनी छिंदवाड़ा से हमें लिखते हैं।
0: क्या लिखते हैं ये सभी?
1: डेहरिया परिवार लिखते हैं, विगत सप्ताह का 25 जून का कार्यक्रम बहुत ही बेहतरीन था। 26 जून को एल्बम गीत और किसान वाणी बहुत बढ़िया रहे। 27 तारीख का कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत और शक्ति रूपा बहुत ही बढ़िया रहे। 28 तारीख का कार्यक्रम बाल सभा और हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम इन्हें शानदार लगा। 29 तारीख का कार्यक्रम विविधा में जो हमने भेंटवार्ता सुनवाई थी, ये इन्हें काफी बेहतरीन लगी। 30 तारीख का कार्यक्रम शब्द चित्र में शेफाली शर्मा जी ने अपनी कविताओं के द्वारा बहुत बढ़िया ज्ञानवर्धन किया, ऐसा इनका कहना है। उनके कुछ सुझाव है, उसे भी पढ़ लेते हैं। डेहरिया जी लिखते हैं, वन महोत्सव सप्ताह अभी हम मना रहे हैं 1 जुलाई से 7 जुलाई, तो इस अवसर पर अधिक से अधिक पेड़ लगाने के बारे में भेंटवार्ता सुनवाने का इन्होंने आग्रह किया है। और किसान वाणी कार्यक्रम के अंतर्गत अभी हाल ही के दिनों में रुक्साना जी, जैसे कि आपको ज्ञात है, वर्षा अभी उस तेजी से अब तक आई नहीं है। कम वर्षा के कारण किसानों को जो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इस विषय पर सक्षम अधिकारी से चर्चा सुनवाने का इन्होंने एक आग्रह किया है।
0: बहुत अच्छे सुझाव हैं लक्ष्मण प्रसाद डहरिया जी के, और इनके सुझावों को हम अपने कार्यक्रम अनुभाग और प्रेषित करते हैं, और निकट भविष्य में निश्चित ही इन विषयों पर आप हमारे प्रोग्राम्स

0: सुन
1: जी
0: सकेंगे।
1: बिल्कुल
0: और बहरहाल इस संदेश के लिए इन्हें कहते हैं धन्यवाद। और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं एक और संदेश के साथ। ये हम तक पहुंचा है मुकाम बमनी लाला पोस्ट परसोली से। इसे लिख भेजा है सतीश रघुवंशी, शिवम रघुवंशी, राज रघुवंशी, अजय वर्मा और इनके साथियों ने।
1: सतीश रघुवंशी जी और साथी भी हमारे नियमित और प्रविष्ट होता है। क्या लिखते हैं सतीश रघुवंशी जी?
0: बीते सप्ताह का भवदीय कार्यक्रम इन्हें अच्छा लगा है। किसानवाणी कार्यक्रम की भी ये तारीफ लिखते हैं। कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम भी इन्होंने पसंद किया है। हेलो आकाशवाणी की तारीफ इन्होंने लिख भेजी है। आपकी पसंद कार्यक्रम, आपकी मीठी गीत कार्यक्रम, माटी के स्वर, गीत गंगा और हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम की भी इन्होंने तारीफ लिख भेजी है।
1: सतीश रघुवंशी जी, शिवम रघुवंशी जी और सभी साथी, आप भी कई वर्षों से आकाशवाणी के साथ जुड़े हैं। आपसे उम्मीद है यही साथ निरंतर बना रहेगा भविष्य में भी।
0: बिल्कुल
1: हर सप्ताह हमें आपसे संदेश की उम्मीद है। आपके इतने प्यार भरे संदेश के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी।
0: और अब अगला संदेश आप किसका शामिल कर रहे हैं अमोल जी?
1: रुक्साना जी, ये संदेश भी हमारे नियमित सुधी श्रोता मित्रों के समूह द्वारा हमें प्राप्त हुआ है। पिपरिया रोड, न्यूटन वार्ड नंबर 1, तहसील परासियासी। लिखते हैं हमें हरिराम साहू।

गणेश घोष, अनंत सिंह और लोकेन बल शामिल थे। इन्हें चटगांव में क्रांतिकारियों की त्रिमूर्ति कहा जाता था। गणेश घोष ने चटगांव के युवाओं को व्यायाम शालाओं के माध्यम से संगठित करना शुरू किया। वो युवाओं को शारीरिक रूप से शक्तिशाली बनाने, लाठी चलाने और अनुशासन सिखाने के प्रभारी थे। वो मास्टर सूर्यसेन द्वारा स्थापित चटगांव रिपब्लिकन आर्मी में सघन रूप से सक्रिय हो गए। ये एक सशस्त्र क्रांतिकारी संगठन था जिसका उद्देश्य था ब्रिटिश शासन से चटगांव को मुक्त कराना तथा पूरे देश में विद्रोह की चिंगारी भड़काना। इस तरह इस क्रांतिकारी संगठन ने मजबूत आकार ले लिया। सन 1930 आते आते चटगांव की धरती पर एक बड़ी योजना आकार लेने लगी और इसके सूत्रधार थे मास्टर सूर्यसेन, गणेश घोष और अनंत सिंह। इन्होंने निश्चय किया कि अंग्रेजी शासन को सीधे चुनौती दी जाए। योजना बनी कि चटगांव के दोनों शस्त्रागारों पर कब्जा कर लिया जाए, संचार व्यवस्था को ठप्प कर दिया जाए, रेलवे संपर्क काट दिया जाए ताकि ब्रिटिश सेना की सहायता वहां तक न पहुंच सके। 18 अप्रैल सन 1930 गुड फ्राइडे का दिन था। रात करीब 10 बजे भारतीय रिपब्लिकन आर्मी की वर्दी पहने क्रांतिकारियों ने हमला बोल दिया। गणेश घोष ने पुलिस शस्त्रागार पर हमला करने वाले दस्ते का नेतृत्व किया। उन्होंने बड़े ही साहस और चतुराई से वहां मौजूद पहरेदारों को निष्क्रिय कर दिया तथा भारी मात्रा में बंदूकें और मस्कट जब्त कर लिया। उधर अनंत सिंह के समूह ने सहायक बल शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया। शस्त्रागार पर पूरी तरह कब्जा करने के बाद सभी क्रांतिकारी पुलिस शस्त्रागार के बाहर इकट्ठा हो गए। वहां मास्टर सूर्यसेन ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, सैन्य सलामी दी गई और अस्थायी क्रांतिकारी सरकार के गठन की घोषणा कर दी गई। गणेश घोष इस नवगठित क्रांतिकारी व्यवस्था में महत्वपूर्ण दायित्वों के साथ संलग्न हुए, लेकिन अंग्रेजी साम्राज्य इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। कुछ ही दिनों में ब्रिटिश सेना ने चटगांव को चारों ओर से घेर लिया। परिस्थिति देखकर क्रांतिकारी दल जलालाबाद की पहाड़ियों की ओर बढ़ चला।

कलकत्ता में पढ़ाई के दौरान ही गणेश घोष बंगाल के प्रसिद्ध क्रांतिकारी संगठन युगांतर के संपर्क में आ गए थे। वो बहुत जल्द इस संगठन के सक्रिय सदस्य बन गए। चटगांव में रहते हुए ही उनकी भेंट मास्टर सूर्यसेन से हो चुकी थी। सूर्यसेन की सादगी और दृढ़ संकल्प से वो अत्यधिक प्रभावित हुए और उनके सहयोगी बन गए। बहुत जल्द चटगांव में क्रांतिकारियों का समूह बना, जिसमें सूर्यसेन के साथ

22 अप्रैल सन 1930 को ब्रिटिश सेना ने जलालाबाद की पहाड़ियों को घेरकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस युद्ध में गणेश घोष ने युवाओं का ऐसा हौसला बढ़ाया कि क्रांतिकारियों की सटीक फायरिंग के सामने ब्रिटिश सेना टिक नहीं पाई, उसे पीछे लौटना पड़ा। इसके बाद मास्टर सूर्यसेन ने क्रांतिकारियों को छोटी छोटी टुकड़ियों में बंटकर गांवों में छिपने का आदेश दिया। गणेश घोष, अनंत सिंह, लोकेन बल और आनंद गुप्ता हुगली जिले के चंदन नगर में पहुंचे, जो उस समय फ्रांसीसी उपनिवेश था, इसलिए ये स्थान ब्रिटिश पुलिस के सीधे अधिकार क्षेत्र से बाहर था। यहाँ क्रांतिकारी सुहासिनी गांगुली और शशधर आचार्य ने पति पत्नी होने का नाटक कर एक घर किराए पर ले लिया, जहाँ गणेश घोष और उनके साथी छिपे हुए थे। ब्रिटिश खुफिया विभाग को इस ठिकाने का पता चल गया। पुलिस ने इसे घेरकर भयंकर गोलाबारी शुरू की। इस मुठभेड़ में गणेश घोष के साथी मखनलाल घोष शहीद हो गए और गणेश घोष को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर मुकदमा चला, उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और अंडमान की सेलुलर जेल भेज दिया गया। अपनी जेल यात्रा में भी वो चुप नहीं बैठे। उन्होंने जेल में दो बड़ी भूख हड़ताल भी की थी। उनकी रिहाई के लिए देशव्यापी आंदोलन चले। महात्मा गांधी, गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर और अन्य शीर्ष नेताओं ने ब्रिटिश सरकार पर लगातार दबाव बनाया और अंततः 1946 में वो रिहा हुए। आज़ादी के बाद उन्होंने शस्त्र छोड़कर जन आंदोलन और चुनावी राजनीति का रास्ता चुना। वो पश्चिम बंगाल के गरीब और शोषित वर्ग की आवाज़ बनकर उभरे। आज़ादी के बाद वो लगातार 3 बार पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य चुने गए। सदन में वो अपनी प्रखर वाणी और शोषितों की आवाज़ उठाने के लिए जाने जाते थे। सन 1967 में उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखा। वो दक्षिण कलकत्ता की सीट से चुनाव जीतकर 4th लोकसभा के सदस्य बने। अपने जीवन के अंतिम 2 दशकों में उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि चटगांव विद्रोह और उनके शहीदों का इतिहास आने वाली पीढ़ियों तक अवश्य पहुँचे। उन्होंने इसी उद्देश्य से बंगाली और अंग्रेजी में

संस्मरण, लेख और पुस्तकें लिखीं। उनकी अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम है चट्टग्राम विप्लवेर बन्ही शिखा। ये उस दौर का सबसे प्रामाणिक दस्तावेज माना जाता है। वो जीवन के अंत तक कोलकाता के एक छोटे से मकान में बहुत ही सादगी से रहे। उन्हें जो भी पेंशन या भत्ते मिलते थे उसे वो जन कल्याण हेतु दान कर दिया करते थे। अपने जीवन का पल पल भारत भूमि को समर्पित करते हुए उन्होंने 16 अक्टूबर सन 1994 को अंतिम सांस ली। नमन ऐसी महान विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा आज का सवाल है कि कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। सवाल एक बार फिर सुन लें, कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है wataankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

अभी आप सुन रहे थे स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाल द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।

यमला पगला दीवाना फिर से, ये फिल्म थी जिसका गीत आप सुन रहे थे सचेत टंडन की आवाज में, पुलकित ऋषि ने से लिखा, सचेत परंपरा का संगीत। कार्यक्रम चित्रलोक विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और आज बात हो रही है नींद की, कि भाई नींद पूरी क्यों नहीं हो रही है, किसकी नज़र लगी हमारी नींद पर, क्यों ना उसे हम हटा दें और अच्छी नींद पा लें। लेकिन ज्ञान देना बड़ा आसान होता है, असली बात कौन बताएगा, भाई हम ही बताएंगे। तो अच्छे समय पर सोने के लिए आप ये कर सकते हैं कि सोने का एक समय पहले निर्धारित कर लें कि भाई इस समय में मुझे सोना है, और रोज़ाना रात का 10 बजे हो, 9 बजे हो, जो भी हो, एक समय निर्धारित कर लें। और ये तो हम नहीं कह सकते कि फ़ोन का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि कई बार बहुत ज़रूरी काम भी होते हैं और इससे हम दूर उतने ज़्यादा नहीं हो सकते, तो ये एक व्यवहारिक तौर पर हम कह सकते हैं। तो फ़ोन का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन सिर्फ उतना ही जितना ज़रूरी हो। कोई बहुत ज़रूरी काम हो, बहुत ज़रूरी मेल भेजना हो, बहुत ज़रूरी संदेश भेजना हो, तो ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, और बाकी सारी चीज़ें वगैरह देखने के लिए ना करें फ़ोन का इस्तेमाल। कोई शांत सा संगीत लगा लीजिए, और चाहे तो मेडिटेशन कर सकते हैं उस वक्त भी, या डायरी लिखने की एक आदत आप डाल सकते हैं रोज़ाना रात में, तो इससे भी मन शांत होता है और पूरे दिन क्या क्या हुआ इसका लेखा जोखा तो मिलता ही है। साथ ही आपको भी पता चलता है कि आपके मन के अंदर क्या चल रहा है, क्या भावनाएँ हैं आपकी। और आप चाहें तो किताब पढ़ सकते हैं, या घर में बच्चे हों तो उनको कहानी सुनाने का एक समय निर्धारित कर लें रात का, तो उनकी भी जो देर से सोने की आदत है या फ़ोन देखने की आदत है वो सब भी दूर होती जाएगी, तो एक पंथ दो काज हो जाएंगे। और इसके साथ ही साथ सोने का जो अपना एक स्थान तो तय होता ही है, तो उस स्थान पर चले जाएं उस वक्त, तो एक मन को संदेश मिलता है कि हाँ अब सोने का वक्त हो चला है, तो वो जो बहुत ज़्यादा खुश रहता है या बहुत ज़्यादा कुछ काम करने के लिए एक्टिव रहता है वो धीरे धीरे शांत होने लगता है और समय पर आपको नींद आ जाएगी। तो ये कह सकते हैं कि एक तरह से एक ज़िद पाल लें कि सोना है समय पर और रोज़ाना, और ये ज़िद अगर आप पाल लेंगे तो एक अच्छी ज़िद है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि आप ये ज़िद ज़रूर पालेंगे।

निकिता गांधी की आवाज में रश्मि रॉकेट फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। कौशल मुनीर के बोल, अमित त्रिवेदी का संगीत। कार्यक्रम चित्रलोक विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। तो भाई, किस तरह से अच्छी नींद हो आपकी, इसके बारे में तो हमने आपको सब कुछ बता दिया है। अब आप इतनी जल्दी तो जल्दी सोने की आदत पड़ेगी नहीं, तो जब तक आप देर तक जाग रहे हैं तो आपको एक बात और बता दें कि विविध भारती आप दिन में कभी भी किसी भी समय सुन सकते हैं। दिन रात 24 घंटे आप विविध भारती कभी भी सुन सकते हैं हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप के जरिए। तो बस जब तक जाग रहे हैं तो विविध भारती तो आपके साथ ही बनी ही रहेगी।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
0: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम चित्रलोक, और हम बात कर रहे थे नींद की कि नींद क्यों समय पर पूरी नहीं होती। तो कई बार ऐसा होता है कि हम कोई मैच देखने के लिए भी जागते हैं और ये मैच हम तक पहुंचाते हैं खेल पत्रकार, जिन जो आंखों देखा हाल अपना सुनाते हैं या हमें दिखाते हैं, और साथ ही साथ कमेंट्री भी होती रहती है। बहुत कुछ होता है इसके पीछे और इसकी वजह से हम जागते रहते हैं और रोमांच बना रहता है। आज है विश्व खेल पत्रकार दिवस, जो कि प्रतिवर्ष 2 जुलाई को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी साल 1994 में। अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रेस संघ यानी कि इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन ने इस दिन को मनाने की शुरुआत की थी और इसलिए इस संघ के स्थापना दिवस को ही विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाने के लिए चुना गया। और ये दिन उन मेहनती पत्रकारों की भूमिका को उजागर करने का है जो दिन रात लगातार खेल के मैदान से आंखों देखा हाल रेडियो, टीवी और अन्य माध्यमों से हम तक पहुंचाते हैं, और इनकी पत्रकारिता निष्पक्षता, शांति, एकजुटता और खेल भावना का संदेश आम जन तक पहुंचाती है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम है जो ये करते हैं। तो आज विश्व खेल पत्रकार दिवस पर हम सभी खेल पत्रकारों को शुभकामनाएं देते हैं और उनके कामों के लिए देते हैं उन्हें धन्यवाद।
1: India in deep trouble now, having lost 2 matches in a row.

0: काम खेल ही नहीं। पहले ही कंधे घेर दोगे फिर कैसे लड़ोगे?
1: जब तू इन स्विंगर डालता है तो बैट्समैन को टेलीग्राम क्यों भेज रहा है कि तू इन स्विंगर डालता है? ग्रिप छुपा।

रांझणा फिल्म का ये गीत आपने सुना, सिराज उप्पल और जसविंदर सिंह की आवाज़ें, इरशाद कामिल के बोल, ए आर रहमान का संगीत। कार्यक्रम चित्रलोक में अब आपको सुनवा रहे हैं नीति मोहन, विशाल ददलानी, के और शंकर महादेवन की आवाज़ों में ये गीत, जिसे लिखा इरशाद कामिल ने, विशाल शेखर का संगीत, फिल्म हैप्पी न्यू ईयर।

स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए, दिन भर में जहां भी रहिए रहिए विविध भारती के साथ, और दीजिए अपनी दोस्त नेहा शर्मा को इजाजत। चित्रलोक कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आज के फनकार कार्यक्रम के लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मल।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

लीजिए पेश है प्रोग्राम आज के फनकार। सभी सुनने वालों को राजेंद्र त्रिपाठी का नमस्कार। दोस्तों आज के फनकार हैं जाने माने पार्श्व गायक मोहम्मद।

0: लखन।
1: दोस्तों, लखन नाम तो फिल्म राम लखन में अभिनेता अनिल कपूर का नाम था, लेकिन इस गाने की मकबूलियत ने पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज को सुनने वालों के दिलों में इस तरह बसा दिया जैसे सीप में मोती और किसी अंगूठी में कोई शानदार नगीना।
2: उंगली में

0: 2 जुलाई 1954 को गुमा वेस्ट बंगाल में जन्मे मोहम्मद अजीज का पूरा नाम था सैयद मोहम्मद अजीज उन नबी। शुरुआती कुछ फिल्मी गाने उन्होंने मुन्ना अजीज के नाम से भी गाए, बाद में उनकी पहचान बनी बतौर पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज के नाम से। मोहम्मद अजीज जाने माने पार्श्व गायक मोहम्मद रफी के बड़े प्रशंसक थे।
1: न फनकार तुझसा तेरे बाद आया, न फनकार तुझसा।

0: मोहम्मद अजीज को अपने जीवन में फिल्मी गायन का पहला मौका मिला बंगाली फिल्म ज्योति से। दोस्तों, आपको यहाँ याद दिलाना चाहेंगे कि बंगाली फिल्मों में मोहम्मद अजीज के तमाम गाए गीत बेहद मशहूर हुए। उसके बाद 1984 में हिंदी फिल्म अंबर में भी उन्होंने पार्श्व गायन का सिलसिला जारी रखा, लेकिन हिंदी फिल्म संगीत जगत में उनकी पहचान बनी मर्द फिल्म के इस गाने से।
1: मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला, हे मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरे दोस्त है ऊपर वाला। मर्द टांगे वाला, ओ मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरे दोस्त है ऊपर।

0: भाई बादल क्यों भाई मोती, मैं सच कहता हूँ मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरे दोस्त ऊपर वाला, मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरे दोस्त ऊपर वाला।
1: अमिताभ बच्चन अभिनीत फिल्म मर्द का ये सुपरहिट गीत गाकर मोहम्मद अजीज रातों रात पार्श्व गायन की ऊंची पायदान पर जा पहुंचे। इस फिल्म का संगीत दिया अनु मलिक ने और लोगों ने पहले तो ये समझा कि ये गाना शब्बीर कुमार ने गाया, लेकिन जब गौर किया गया तो पता चला मोहम्मद अजीज की आवाज है और बाद में इस आवाज ने धूम मचा दी।

मोहम्मद अजीज का बंगाली और उड़िया फिल्म इंडस्ट्री से भी जो गहरा नाता रहा है उसका जिक्र हम शुरू में ही कर चुके हैं। हिंदी फिल्म जगत की नामी संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ भी मोहम्मद अजीज का जुड़ाव दोस्तों लंबी अवधि तक बना रहा।

मोहम्मद अजीज ने अपने गायन जीवन में अपनी समकालीन दिग्गज गायिकाओं के साथ गीत गाए। लता जी के साथ उनका गाया ये गीत हम कैसे भुला सकते हैं, जो सिंदूर फिल्म का है।

दोस्तों, मोहम्मद अजीज ने, जैसे कि हम बता चुके हैं, अपनी समकालीन हिट सुपरहिट गायिकाओं के साथ भी गाने गाए हैं, तो उसमें अलका याग्निक का जिक्र ना हो तो प्रोग्राम थोड़ा अधूरा सा लगेगा। आइए सुनवाते हैं आपको बंजारन फिल्म का ये गाना।

और ये गीत है साधना सरगम और मोहम्मद अजीज की आवाजों में। आप भी याद रखेंगे क्योंकि फिल्म का नाम है याद रखेगी दुनिया।

दोस्तों यहाँ ये भी जिक्र करना जरूरी होगा कि मोहम्मद अजीज ने हिंदी फिल्म जगत के तमाम बड़े सितारों के लिए पार्श्व गायन किया है, जैसे अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर, मिथुन चक्रवर्ती, अनिल कपूर और गोविंदा के साथ साथ और भी कई कलाकार हैं। ऋषि कपूर के लिए मोहम्मद अजीज का गाया फिल्म नगीना का ये गीत बेहद मकबूल रहा है।

बहुमुखी गायन प्रतिभा के मालिक मोहम्मद अजीज ने विभिन्न भारतीय भाषाओं में लगभग 20,000 गीत गाए हैं। संगीतकार कल्याण जी आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आर डी बर्मन, नौशाद, ओपी नैयर, राजेश रोशन, राम लक्ष्मण और रविंद्र जैन से लेकर उषा खन्ना, आनंद मिलिंद, नदीम श्रवण, जतिन ललित, अनु मलिक, आनंद राज आनंद और आदेश श्रीवास्तव तक तमाम संगीतकारों के निर्देशन में मोहम्मद अजीज ने गीत गाकर सभी को लुभाया है, बहलाया है। अनुराधा पौड़वाल के साथ मोहम्मद अजीज का गाया ये गीत आज भी 90 के दशक के फिल्म संगीत की यादों को ताजा कर देता है।

मोहम्मद अजीज ने हमारे देश के अलावा विदेशों में भी जाकर मंच पर अपने कई प्राइवेट कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। उड़िया और बांग्ला भाषाओं में कई फिल्मी गाने उन्होंने अनुराधा पौडवाल के साथ भी गाए और तमाम कई फीमेल सिंगर के साथ भी उनके गाए गीत मकबूल हुए हैं। और जहां तक भजन का सवाल है तो आपको हम ये बता दें कि उड़िया भाषा में उनके कई भजन मशहूर रहे हैं और कई अवसरों पर गाए जाते हैं।

27 नवंबर 2018 को अचानक हुए हृदयाघात यानी हार्ट अटैक की वजह से मोहम्मद अजीज हमारे बीच नहीं रहे। दोस्तों कहते हैं ना, जिस्मानी तौर पर भले ही कलाकार हमारे बीच ना हो, लेकिन अपनी विधा के बल पर वो अपने चाहने वालों के दिलों में बसा करते हैं। इसी तरह पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज भी अपनी आवाज के जरिए हमेशा हमेशा अपने चाहने वालों के मन में जीवित रहेंगे।

0: तो दोस्तों ये था आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज पर। तकनीकी सहयोग दिया वंदना ठाकुर ने और कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। अब दीजिए अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत। नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है बैतूल जिले की चिट्ठी। आलेख मयंक भार्गव, वाचन स्वर दीपा सिंह। सतपुड़ा की सुरम्य वादियों में बसे आदिवासी बाहुल्य बैतूल जिले में गत माह प्रदेश के मुखिया डॉ. मोहन यादव के दौरे, जलगंगा संवर्धन अभियान का समापन और योग दिवस आदि प्रमुख घटनाएं चर्चा में रहीं। वहीं जून माह के आखिरी में शुरू हुई मॉनसून की बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। जिले में बोनी का कार्य शुरू हो गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अपने 2 दिवसीय बैतूल जिले के हिल स्टेशन कुकरू पहुंचे। यहां उन्होंने कृष्णा आजीविका सहायता समूह की महिलाओं द्वारा संचालित आजीविका गतिविधियों का अवलोकन किया। इस अवसर पर उन्होंने समूह द्वारा तैयार किए गए मावा और रबड़ी का स्वाद लिया, महिलाओं से आत्मीय संवाद कर उनके कार्यों की सराहना की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सहायता समूह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के साथ साथ महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। प्रदेश सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि कुकरू प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में विकसित होने की अपार संभावनाएं रखता है। प्रवास के दौरान रात्रि चौपाल में ग्रामीणों से आत्मीय संवाद किया। इस दौरान रात्रि चौपाल में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ग्रामीणों से आत्मीय भाव से खुले मिले। ग्रामीणों ने स्थानीय कुरकू भाषा में पारंपरिक गीत प्रस्तुत किए। वहीं मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भी गोविंद बोलो हरिगोपाल बोलो भजन सुनाकर सभी का मन मोह लिया। इसी बीच प्रदेशव्यापी जलगंगा संवर्धन अभियान के समापन अवसर पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन ग्राम पंचायत खेड़ी सावलीगढ़ में किया गया। कार्यक्रम में लोक स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री, जिले के प्रभारी मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। श्री पटेल ने जलगंगा संवर्धन अभियान के सफल संचालन के लिए जिलेवासियों को बधाई दी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का संदेश पढ़कर सुनाया। उधर खरीफ सीजन में किसानों को कृषि कार्यों के लिए डीजल की सुगम उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालकों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि किसानों को निर्धारित पहचान पत्र और आवश्यक दस्तावेजों के सत्यापन के उपरांत प्लास्टिक केनों में अधिकतम 50 लीटर तक डीजल उपलब्ध कराया जाए। दूसरी ओर जिले में कनूठा मतदाता जागरूकता कार्यक्रम ग्राम पंचायत घाट पिपरिया में आयोजित किया गया। आयोग के ब्रांड एम्बेसडर सारिका घारू के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और सुधार करवाने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण पारंपरिक पपेट शो रहा, जिसने स्थानीय भाषा में वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने की कहानी को बेहद रोचक अंदाज में पेश किया। उधर गर्भावस्था से संबंधित जटिलताओं का पता लगाने और समय रहते उनका उपचार सुनिश्चित कर सुरक्षित प्रसव करवाने के लिए प्रतिमाह 9 और 25 तारीख को प्रधानमंत्री चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर जगदीश ठकोरे ने बताया कि जिले में 25 जून को आयोजित प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान शिविर में 508 गर्भवती महिलाओं की जांच की गई और 222 हाई रिस्क चिन्हित कर 50 की सोनोग्राफी भी की गई। वह आयुष्मान भारत कार्यक्रम के अंतर्गत शासकीय स्कूलों के शिक्षकों का 23 जून से 25 जून तक 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें किशोर बच्चों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और उनके सर्वांगीण विकास पर जोर दिया गया। उधर शहर में नशा मुक्ति दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक कर नशा मुक्त समाज का निर्माण करना रहा। कार्यक्रम में नशे से होने वाले शारीरिक, मानसिक और सामाजिक नुकसानों पर पोस्टर प्रदर्शनी भी लगाई गई। उपस्थित युवाओं को नशा मुक्ति हेल्पलाइन की जानकारी भी दी गई। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून को जिले भर में सामूहिक योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल, जन अभियान प्रदेश उपाध्यक्ष श्री मोहन नागर, जिला विकास सलाहकार समिति सदस्य सुधाकर पंवार उपस्थित थे। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे जिले की चिट्ठी। इसमें आज आपने सुनी बैतूल जिले की चिट्ठी। आलेख मयंक भार्गव का था, वाचन था दीपा सिंह का, और इसका प्रसारण किया गया आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।
1: फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से। दिन के 10:05 का समय हुआ है, लीजिए अब सुनिए सुगम संगीत। कार्यक्रम में सबसे पहले आप सुनेंगे जगजीत और चित्रा सिंह की आवाजों को। फना निजामी का कलाम है

सुन रहे हैं सुगम संगीत आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। और कार्यक्रम में अब आप सुनेंगे गुलाम अली के सुरों में ये अगली पेशकश। अल्फाज निकले हैं संत दर्शन सिंह महाराज की कलम से।

और सुगम संगीत की बतौर आखिरी पेशकश लीजिए अब सुनिए डॉक्टर हरिओम की शब्द रचना, सुरों से रोशन किया है अहमद और मोहम्मद हुसैन ने।

अभी आप आनंद ले रहे थे सुगम संगीत का। ये आकाशवाणी का छिंदवाड़ा केंद्र है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 10:30 का समय हुआ है। लीजिए अब सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं विमलेश उमंग कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूं।
1: और मैं अजीत। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: लिखते हैं, मित्रता एवं रिश्तेदारी परस्पर सम्मान पर टिकी होती है।
1: बहुत सुंदर विचार आपने भेजा है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी का।
2: गांव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी अवनी प्रियांशी रियांशी ओजस अनाया गुरदीप और बेबी किरत अवाना ने लिखा है,
1: कार्यक्रम उमंग के प्रस्तुतकर्ता विमलेश जी और अजीत जी को सप्रेम नमस्कार। कार्यक्रम उमंग के तहत 3 जून 2026 को प्रस्तुत गोबी शीत मरुस्थल की भौगोलिक सांस्कृतिक एवं सामाजिक जानकारी हमारे लिए अत्यंत ज्ञानवर्धक रही। साथ ही प्रेरणादायी कहानी दोस्त की पहचान ने सच्ची मित्रता के गुणों को समझने की महत्वपूर्ण सीख हमें दी। ऐसे रोचक शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक कार्यक्रमों की भविष्य में भी आपसे अपेक्षा है। आपके उत्कृष्ट प्रयास के लिए हृदय से धन्यवाद।
2: बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी लिखते हैं,
1: आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी को सादर नमस्कार। समावेशी शिक्षा पर प्रोफेसर भारती जी द्वारा दी गई ज्ञानवर्धक जानकारी महत्वपूर्ण थी। साथ ही गुजरे सप्ताह शीत मरुस्थल पर बेहद शानदार जानकारी दी गई। ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी को हमारे बच्चों ने छुट्टियों में बड़े ध्यान और लगन से सुना और वे इस पर अमल भी कर रहे हैं, इसलिए हम उमंग कार्यक्रम की पूरी टीम का हृदय से शुक्रिया अदा करते हैं।
2: हम भी आपका हृदय से शुक्रिया अदा करते हैं संदेश भेजने के लिए।
1: अगला संदेश हमें मिला है नर्मदा नगर मध्य प्रदेश से सूरज वर्मा ऋषभ कनक और भावना वर्मा जी का।
2: ग्राम बंगला माटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे।
1: आप सभी श्रोताओं को हमारी ओर से आभार खूबसूरत संदेशों को भेजने के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी बहुमूल्य खनिज सोने के बारे में
2: और अब चलते हैं आगे और चर्चा करते हैं एक और खनिज के बारे में। तो अजीत जी, जरा उस खनिज का नाम तो बताइए।
1: जी विमलेश जी, वो तो बताऊंगा, लेकिन इस बार कुछ हिंट के साथ।
2: तो दीजिए हिंट।
1: हिंट है, ये खनिज सोने से भी अधिक मूल्यवान माना जाता है। इसकी चमक अत्यंत आकर्षक है
2: जी।
1: इसे तराशा जाता है।
2: और
1: हाँ, ये कांच काटने के काम भी आता है।
2: जी अजीत जी, मैं समझ गई, ये कहीं हीरा तो नहीं?
1: बिल्कुल सही जवाब। जी हाँ श्रोताओ, ये हीरा है। ये खनिज पृथ्वी पर पाए जाने वाले किसी भी प्राकृतिक पदार्थ से अधिक कठोर है। हीरे के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन प्रश्न ये है कि कितने लोग ये जानते हैं कि ये बनता कैसे है। तो आइए देते हैं इस रोचक चर्चा को विस्तार।
2: श्रोताओ, हीरे का निर्माण होता है पृथ्वी की गहराइयों में। अगर आप पूछें कि कितनी गहराइयों में, तो हम आपको बता दें कि पृथ्वी की सतह से लगभग 150 किलोमीटर नीचे पृथ्वी की परत मेंटल में बनता है।
1: आपको हम ये भी बता दें कि कोयला और हीरा दोनों ही मुख्य रूप से कार्बन से बने होते हैं
2: जी।
1: लेकिन हीरा बनने की प्रक्रिया बिल्कुल अलग है।
2: श्रोताओ, जैसा कि अभी हमने सुना था कि पृथ्वी की सतह से लगभग 150 किलोमीटर से भी अधिक गहराई में बनता है, आइए जानते हैं क्या होता है उन गहराइयों में।
1: श्रोताओ, पृथ्वी की गहराइयों में लगभग तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होता है और वहाँ का दबाव वायुमंडलीय दबाव से हजारों गुना अधिक होता है।
2: इन अत्यधिक दबाव वाली परिस्थितियों में कार्बन के परमाणु एक विशेष क्रिस्टलीय संरचना में व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसके कारण हीरा बनता है। इस प्रक्रिया में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। लेकिन अजीत जी, श्रोताओं की ओर से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। अभी हमने जाना कि हीरे पृथ्वी की सतह से 150 से भी अधिक गहराई में बनते हैं। इतनी गहराई तक उत्खनन तो असंभव है, तो फिर हीरे तक हम कैसे पहुँचे?
1: सचमुच ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है विमलेश जी। यदि हीरे इतनी

0: गहराई में ही बने रहते तो हम उन्हें कभी देख ही नहीं पाते। होता यह है कि ज्वालामुखीय विस्फोटों के कारण मैग्मा यानी धरती के अंदर की पिघली चट्टानें तीव्र गति से ऊपर उठती हैं और वे साथ साथ हीरों को भी पृथ्वी की सतह के बहुत करीब ले आती हैं
1: और फिर हम उन्हें उत्खनन द्वारा निकाल लेते हैं। श्रोताओ, वैज्ञानिक दृष्टि से हीरा शुद्ध कार्बन है। आपको बता दें कि हीरा और आपके घर में पाई जाने वाली पेंसिल की नोक ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन से बने हैं। अंतर केवल परमाणुओं की व्यवस्था का है।
0: पता है श्रोताओ, हीरे को यदि अत्यधिक ताप पर ऑक्सीजन में जलाया जाए तो अंत में कार्बन डाइऑक्साइड गैस में वो बदल सकता है। श्रोताओ, एक बात और आपको बता दें, आजकल आभूषणों और उद्योग में इस्तेमाल होने वाले हीरे प्रयोगशालाओं में ही बनाए जाते हैं।
1: लेकिन एक खास बात यह है कि कृत्रिम रूप में हीरों को बनाने के लिए एक छोटा प्राकृतिक हीरा इस्तेमाल किया जाता है, जिसे डायमंड सीड कहा जाता है। इस सीड के द्वारा प्राकृतिक प्रक्रिया की नकल करके हीरा बनाया जाता है। एक बात जरूर है कि प्राकृतिक रूप से हीरा बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं, लेकिन कृत्रिम रूप में इसे बनाने में बहुत कम समय लगता है।
0: लेकिन इसे बनाने की विधा या फॉर्मूला हमें प्रकृति से ही मिलता है, तो हम याद रख सकते हैं कि पृथ्वी की गहराइयों में अत्यधिक ताप और दबाव के कारण जो कार्बन के क्रिस्टल बनते हैं उन्हें हम हीरा कहते हैं।
1: तो श्रोताओ, आप कह सकते हैं कि आपके हाथ में चमकता हुआ हीरा वास्तव में पृथ्वी की गहराइयों में लाखों करोड़ों वर्ष पहले बना हुआ एक अद्भुत प्राकृतिक चमत्कार है।
0: जी, तो श्रोताओ ये थी जानकारी हीरे की। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से प्रश्न है, डायमंड सीड किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: डायमंड सीड किसे कहते हैं?
0: आप हमारे प्रश्नों के उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं आज का पहला शैक्षिक कार्यक्रम। शीर्षक है न्याय।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसके द्वारा पशु पक्षियों के प्रति दया और प्रेम भाव रखने का संदेश दिया गया है।
2: चलो मित्र सिद्धार्थ, उद्यान की ओर चलते हैं, सरोवर के पास। कैसी शांति है, पक्षी नीड़ों की ओर लौट रहे हैं। वहां देखो उस पेड़ पर, कैसे वो चिड़िया अपने बच्चे को दाना खिला रही है। अति सुंदर। और तनिक उधर देखो, उद्यान के बाहर कैसे एक बछड़ा अपनी माँ की ओर दौड़ा चला जा रहा है और गाय अपने बछड़े को लाड़ कर रही है।
3: साथियों, ये वार्तालाप हो रहा था युवराज सिद्धार्थ और उनके मित्र वसु के बीच। सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था, जो कपिलवस्तु नगर का एक ग्राम उद्यान था। उनके पिता राजा शुद्धोधन थे, जो शाक्य गणराज के राजा थे, जिसकी राजधानी थी कपिलवस्तु। युवराज सिद्धार्थ ही आगे चलकर गौतम बुद्ध बने और विश्व को अहिंसा और शांति का पाठ पढ़ाया। प्रारंभ में उनका जीवन राजसी सुख सुविधाओं से भरपूर था। आइए एक बार फिर से चलते हैं उस उद्यान की ओर, जहां दोनों मित्र वार्तालाप कर रहे हैं।
2: युवराज, तनिक ऊपर देखो, कितने सुंदर पक्षी हैं।
4: ये राजहंस हैं। ऐसा लगता है मानो हवा में तैर रहे हैं और इतनी ही सुंदरता से वे पानी में भी तैर सकते हैं। ओह, देखो एक राजहंस नीचे की ओर गिर रहा है।
2: हाँ, लगता है उसे तीर लगा है।
4: प्यारे पक्षी, सब ठीक हो जाएगा, घबराओ नहीं। मैं हूं ना, न जाने किस निर्दयी ने इसे घायल कर दिया, भला इसका क्या दोष है।
5: दोष ये है कि ये सुंदर है, प्यारा है, सबको पसंद आता है।
4: क्या सुंदर होना और सबका प्यारा होना कोई दोष है? प्यारे हंस, मैं तुम्हारा ये तीर निकाल देता हूं, फिक्र मत करो। ये निकाल दिया।

0: तुम मेरी गोद में थोड़ी देर विश्राम कर लो।
1: मित्र, कोई भी व्यक्ति जिसके पास हृदय है, इन निर्दोष पक्षियों को मार ही नहीं सकता। तुम जरा दौड़कर राज वैद्य से इसके लिए कोई औषधि तो ले आओ।
2: हाँ मित्र, अभी जाता हूँ।
3: युवराज सिद्धार्थ ने हंस को विश्राम करने के लिए पास के ही एक कुंज में लिटा दिया और वसु के आने की प्रतीक्षा करने लगे। इतने में

0: सिद्धार्थ, कुमार सिद्धार्थ,
1: कुमार सिद्धार्थ, अभी मैंने एक उड़ते हुए हंस को तीर मारकर नीचे गिराया था। मैंने अपनी आंखों से उसे गिरते हुए देखा था। वो इधर ही कहीं आया है।
0: तीर धनुष पर मेरा लक्ष्य अब भली भांति सद गया है।
1: ये बात मैं कल गुरुजी को बताऊंगा तो वो कितने प्रसन्न होंगे। तुम गुरुजी के सामने मेरी गवाही दोगे ना?
2: अवश्य दूंगा देवदत्त, और वो भी प्रमाण के साथ, क्योंकि इसका प्रमाण वो हंस है जिसे तुमने मारा है।
0: आहा, तो हंस तुम्हारे पास है।
1: लाओ उसे मुझे दे दो।
2: क्यों दे दो?
1: क्यों दे दो? ये तो बड़ा ही विचित्र प्रश्न है
0: भाई। इसलिए दे दो क्योंकि मैंने उसे मारा है।
2: लेकिन मैंने इसे बचाया है।
0: तुम राजकुमार हो इसलिए मुझे धमकी देना चाहते हो। मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं दोगे। इसका निर्णय तो अब राज दरबार में ही होगा।
3: तो साथियों, दूसरे दिन दरबार लगा हुआ था।
4: महाराज की जय हो,
5: महाराज की जय हो,
6: महाराज की जय हो।
3: प्रतिहारी ने सभी प्रकरणों की जानकारी दी और बताया कि आज कुमार देवदत्त भी एक प्रकरण न्याय के लिए प्रस्तुत करना चाहते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ भी उपस्थित थे।
7: कुमार देवदत्त को प्रस्तुत किया जाए।
1: महाराज को प्रणाम करता हूँ। महाराज, मेरा कहना है कि राजकुमार सिद्धार्थ ने मेरा हंस ले लिया है जिसे मैंने मारा था। वो मुझे मेरा हंस नहीं दे रहे, मुझे न्याय चाहिए।
7: राजकुमार सिद्धार्थ, क्या ये वही हंस है जो आपकी गोद में है?
2: महाराज को प्रणाम करता हूँ। जी महाराज, ये वही हंस है। मेरा कहना है कि कुमार देवदत्त ने इस हंस को मारा है, लेकिन मैंने इसे बचाया है। अतएव मैं ये हंस इन्हें नहीं दे सकता।
7: लेकिन सिद्धार्थ, देवदत्त ने इस हंस का आखेट किया है। नियम के अनुसार आखेट वीर का अधिकार है। वीर आखेट को छोड़ नहीं सकता।
2: जी महाराज, लेकिन नियम तो ये भी कहता है कि वीर शरणागत को भी नहीं छोड़ सकता। हमारी शाक्य राजवंश की परंपरा और शास्त्रों का नियम तो ये भी कहता है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है।
1: पर महाराज, मैंने पहले इस हंस को मारा है, इसलिए ये मेरा है।
2: जी, पहले मारा था, तभी तो वो मेरी शरण में आया है। बिना मारे वो मेरी शरण में कैसे आता?
7: महामंत्री, समस्या जटिल हो गई है। क्या आप कोई मार्ग सुझा सकते हैं?
8: जी महाराज, आपकी आज्ञा हो तो मैं अभी तुरंत दूध का दूध और पानी का पानी कर सकता हूँ। अब तो निर्णय ये हंस ही करेगा।
7: निर्णय ये हंस ही करेगा? भला वो कैसे आज्ञा है?
8: महाराज, मेरा आग्रह है कि हंस को यहाँ इस आसन पर बैठाया जाए।
3: हंस को आसन पर बैठा दिया गया। हंस भयभीत था, लेकिन सिद्धार्थ उसे सांत्वना दे रहे थे। सभा स्तंभित थी, सभी फुसफुसा रहे थे।
9: पता नहीं ये हंस कैसे बताएगा गद्दी पे बैठ कर
10: सिद्धार्थ को मिलना चाहिए।
8: कुमार देवदत्त, आप कहते हैं कि इस पर आपका अधिकार है। आसन के पास आइए और हंस को अपने पास बुलाइए।
1: ओ प्रिय हंस, मेरे पास आओ, आ जाओ, आओ मेरे पास, आ जाओ।
3: देवदत्त जितनी बार हंस को बुलाते, वो उतनी ही बार भय के मारे आसन से चिपक जाता। देवदत्त ने बहुत प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी।
8: अब मैं राजकुमार सिद्धार्थ को सामने

0: बुलाना चाहूंगा और कहूंगा कि वे भी हंस को अपने पास बुलाएं।
1: प्यारे राजहंस, मेरे प्रिय मित्र, डरो मत, तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मेरे पास आ जाओ, अपने मित्र के पास आ जाओ, आ जाओ, घबराओ मत।
2: फिर क्या था, पलक भी नहीं झपकी थी, हंस ने अपने पंख फैलाए और उड़ता हुआ सिद्धार्थ की गोद में ऐसे आ चिपका जैसे एक बालक अपनी माँ की गोद में चिपक जाता है।
3: स्वयं इस पक्षी ने अपना निर्णय बता दिया है। हमने सुना था कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, आज साक्षात देख भी लिया। मैं हर्ष के साथ घोषित करता हूँ कि ये हंस युवराज सिद्धार्थ का ही है।
4: महाराज की जय हो,
5: महाराज की जय हो,
6: महाराज की जय हो।
7: अभी आप सुन रहे थे कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम न्याय। साथियों, इस कार्यक्रम में आपने दो शब्द सुने। पहला शब्द था नीड और दूसरा शब्द था आखेट। तो इसका अर्थ आपको बता देते हैं। नीड शब्द का अर्थ है घोंसला और आखेट शब्द का अर्थ होता है शिकार। अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को, पशु पक्षियों का ख्याल रखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, सोचिए और इसकी सूची बनाइए। अभी आपने सुना कार्यक्रम न्याय।
8: मैं एक नन्ही बच्ची हूँ, प्री स्कूल में जाती हूँ, अलग रूम में चल चल।

तो सुनिए आपने छोटे बच्चों के मन की बात। निष्ठा, गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल शिक्षा, जिससे मिलेगा बचपन को महत्वपूर्ण आयाम। बाल्यावस्था में 6 वर्ष तक के छोटे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर तीव्र सकारात्मक

0: पास होता है। जी हाँ, अब महकेंगे आंगनबाड़ी और प्री स्कूल, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण बाल शिक्षा से, निष्ठा से खिलेंगे ये नन्हे फूल।
1: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है हमारा आदित्य।
2: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें भारत के सौर मिशन की विस्तार से जानकारी दी गई है।
3: 5, 4, 3, 2, 1, 0
4: दिन था 2 सितंबर 2023, स्थान इसरो का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, समय भारतीय समयानुसार ठीक 11:50। जब अंतरिक्ष यान आदित्य L1 की गगनभेदी गर्जना से आकाश गूंज उठा, इस दृश्य को टेलीविजन पर देखा।
5: श्रीहरिकोटा से आदित्य L1 के पहले सूर्य मिशन को लॉन्च कर दिया गया है।
4: रेडियो पर समाचार प्रसारित हुए और दूसरे दिन के सभी अखबारों ने इसे अपने मुख पृष्ठ पर प्रमुखता से छापा। शीर्षक था आदित्य L1 का सफल प्रक्षेपण, अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत विश्व की चौथी महाशक्ति बना। आज कक्षा में बड़े उत्साह का वातावरण है, क्योंकि विद्यालय के विशेष निमंत्रण पर आज जाने माने स्पेस जर्नलिस्ट श्री विनीत चरण जी आने वाले हैं, जो सौर्य यान आदित्य के बारे में बातचीत करेंगे।
6: क्या तुम्हें पता है कि श्री विनीत चरण जी आने वाले हैं?
7: क्या वो चंद्रयान के बारे में बात करेंगे?
6: मुझे लगता है वो आदित्य यान के बारे में बात करेंगे।
7: चलो देखते हैं वो किस यान के बारे में बात करेंगे।
8: हेलो बच्चों। तो बच्चों, शुरू करते हैं बातचीत। आप तैयार हैं?
9: जी हम तैयार हैं।
8: तो आज हम बातचीत करने जा रहे हैं भारत के सौर्य यान आदित्य L1 के बारे में।
2: बच्चों शांत हो जाओ, आप बारी बारी सर से सवाल पूछ सकते हैं।
7: सर, इसका नाम आदित्य क्यों पड़ा?
8: बहुत अच्छा सवाल। देखो, आदित्य एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है सूरज यानी सूर्य। अच्छा चलो बताओ, सूर्य के लिए और कौन कौन से शब्द हैं?
6: सर, टीचर ने बताया था कि सूर्य को रवि और भास्कर भी कहते हैं।
8: बहुत अच्छे। चलो अब मेरी ओर से एक खास सवाल। अच्छा तो अब ये बताओ कि क्या तुमने किसी वैज्ञानिक का नाम सुना है जिनके नाम में भास्कर शब्द जुड़ा है?
7: जी सर, उनका नाम है भास्कराचार्य।
8: अरे वाह, तुम्हारा क्या नाम है बेटी?
7: जी, मेरा नाम श्रुति है।
8: शाबाश श्रुति। तुम्हें बता दूं कि भास्कराचार्य प्राचीन भारत के महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। हाँ, तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे सूर्य की। क्या आप जानते हैं कि सूर्य क्या है? मेरा मतलब है कि सूर्य ग्रह है या तारा है?
10: सूर्य ग्रह है या तारा?
8: अरे सोचो सोचो, जो जवाब देगा या प्रश्न पूछेगा वो सबसे पहले अपना नाम बताएगा।
7: सर, मेरा नाम सुमित है, सूर्य एक ग्रह है।
8: सुमित, तुमसे जरा सी भूल हो गई, सूर्य असल में एक तारा है।
9: अच्छा सर।
6: सर, मेरा नाम सोहम है, मेरा प्रश्न यह है कि सूर्य इतनी गर्मी कैसे देता है? क्या वहाँ आग जल
7: तो वहाँ आग किसने लगाई होगी?
8: बच्चों, दरअसल सूर्य में गर्मी आग जलने से नहीं होती। सूर्य ऐसी गैसों से बना है जो बहुत गर्म होती हैं, जैसे हीलियम और हाइड्रोजन।
6: हीलियम और हाइड्रोजन सर?
8: हाँ, सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम नाम की गैसों का एक विशाल
6: गैसों का गोला। अब समझ आया कि

0: ये इतना गर्म कैसे होता है?
1: शाबाश, समझ गए ना?
2: जी सर।
3: सर, जिस तरह से चंद्रमा पर जाया जा सकता है, क्या उसी प्रकार सूर्य पर भी जाया जा सकता है?
1: बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखो, सूर्य का तापमान इतना अधिक है कि वहाँ चंद्रमा की तरह नहीं जाया जा सकता। हाँ, एक निश्चित दूरी से सूर्य का अध्ययन किया जा सकता है। इसलिए तो हमारे देश ने सूर्य के बारे में अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 को अंतरिक्ष में भेजा।
0: सर, आदित्य अंतरिक्ष यान के बारे में हमें विस्तार से बताइए ना।
1: जरूर बच्चों, देखो आदित्य L1 चंद्रयान की तरह ही एक यान है। कार्य है सूर्य के बारे में जानकारी जुटाना।
2: जी जी।
1: जैसे ये कैसा होता है, इसका तापमान स्थिर रहता है या घटता बढ़ता है, और इसका क्या प्रभाव हमारी पृथ्वी या सौर मंडल के अन्य ग्रहों पर पड़ता है।
3: सर, हमने आपके लेख में ही पढ़ा है कि आदित्य यान ने सूर्य के कई फोटोज पृथ्वी पर भेजे हैं।
1: हाँ, सही कहा। आदित्य यान का मुख्य उद्देश्य सूर्य की बाहरी परतों का अध्ययन करना है। इन तस्वीरों से हमें तूफानों और अंतरिक्ष के मौसम की बेहतर जानकारी मिलेगी, जिससे भविष्य में संचार और उपग्रह सेवाओं को सुरक्षित रखने में हमें बड़ी मदद मिलेगी।
0: सर, मेरा नाम दिवाकर है।
1: भाई वाह, दिवाकर का मतलब भी तो सूर्य ही होता है ना?
2: जी सर।
1: जी दिवाकर, आपका प्रश्न क्या है?
0: सर, मेरा प्रश्न है, यदि सूर्य इतना गर्म है तो आदित्य यान उसके पास जाकर तस्वीरें कैसे भेज रहा है? क्या वो जल नहीं जाएगा?
1: अरे भला जलेगा कैसे, आदित्य यान सूर्य से एक सुरक्षित दूरी पर है, करोड़ों किलोमीटर दूर, समझे?
3: जी सर। सर, आदित्य यान का पूरा नाम आदित्य L1 क्यों है? L1 का क्या मतलब है?
1: देखो बेटी, L1 का मतलब है लैग्रेंज पॉइंट। ये बिंदु अंतरिक्ष का एक विशिष्ट स्थान होता है जो सूर्य और पृथ्वी के केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा पर होता है। इस स्थान से सूर्य को लगातार बिना किसी रुकावट के देखा जा सकता है, और ये देखा गया है कि अंतरिक्ष यान लगभग स्थिर रहता है। लैग्रेंज बिंदु 1 से 5 तक होते हैं।
0: सर, एक बार जब सूर्य ग्रहण लगा था तो हमें विशेष प्रकार की किट दी गई थी, और कहा गया था कि इसी किट के द्वारा सूर्य को देखें। ऐसा क्यों?
1: बेटा सोहम, सिर्फ सूर्य ग्रहण के समय ही नहीं, सूर्य को कभी भी प्रत्यक्ष आंखों से देखना हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। लेकिन आदित्य यान ने जो तस्वीरें हमें भेजी हैं, उन्हें देखकर हमें पता चलता है कि सचमुच कितना अद्भुत है हमारा सूर्य।
3: सर, आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं भी बड़े होकर अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनूंगी, चंद्रमा और धूप बढ़ूंगी और अंतरिक्ष यान भी भेजूंगी।
1: शाबाश बच्चों, शाबाश। खूब पढ़ो, खूब पढ़ो, और देश का नाम हमेशा रोशन करो।
4: मैं भी वैज्ञानिक बनूंगा।
5: तो साथियों, अभी आपने सुनी जानकारी L1 यानी आदित्य यान के बारे में। कैसी लगी जरूर बताइएगा, और ये भी पता लगाइए कि और कौन कौन से यान अंतरिक्ष में भारत द्वारा भेजे गए हैं।
6: हमारा आदित्य, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के बाद हमारा आज का उमंग कार्यक्रम समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
7: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
8: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
9: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। ये आकाशवाणी का छिंदवाड़ा केंद्र है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 11 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए विविध भारती सेवा के कार्यक्रम मुंबई से।

0: ये थी ऋचा शर्मा की आवाज़, और आइए अब आपको सुनवाते हैं सुलक्षणा पंडित और आरती मुखर्जी का गाया हुआ ये गाना। लिखा है माया गोविंद ने, धुन बनाई है राज कमल ने।
1: धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत

0: उनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: रंग तरंग कार्यक्रम में अब सुनवा रहे हैं राजेंद्र मेहता और नीना मेहता की गाई ये गजल।

जुबिन नौटियाल की आवाज में आपने सुना ये गाना। गुरुप्रीत सैनी के बोल थे, रोचक कोहली का संगीत था। और आइए अब आपको सुनवाते हैं दिलराज कौर की आवाज, मोहसिन नकवी का कलाम।

ये थी रंग तरंग कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती। रंग

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ वार्ता कर रहे हैं। वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है। आज सुबह प्रधानमंत्री तकाइची का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे। जापान की प्रधानमंत्री कल शाम 3 दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंची। प्रधानमंत्री तकाइची का ये भारत का पहला आधिकारिक दौरा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये दौरा भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान की प्रधानमंत्री ताकायची के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत ने अपने संकल्प को दोहराते हुए कहा है कि आतंकवाद को किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता है। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मानदंडों की कड़ी आलोचना करते हुए एक मजबूत और एकजुट वैश्विक कार्रवाई का आह्वान किया। संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकवाद विरोधी रणनीति की 9वीं समीक्षा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने ये बात कही। श्री हरीश ने कहा कि भारत दशकों से सीमा पार आतंकवाद का शिकार होता रहा है और इसलिए मानता है कि आतंकवाद के सभी रूपों की स्पष्ट रूप से निंदा की जानी चाहिए। केंद्र सरकार ने असम में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार असम और अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ के हालात को लेकर बेहद गंभीर है। असम के मुख्य सचिव रवि कोटा ने बताया कि बाढ़ से 13 जिलों के करीब 72,000 लोग प्रभावित हुए हैं। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि योजना का स्थान लेगी। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के स्थानांतरण को आसान बनाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर लागू रहेगी। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने आईएसआई प्रायोजित अंतर्राज्य आतंकी और हथियार नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी आईएसआई हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके साथियों के निर्देश पर राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी गतिविधि को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। यूक्रेन के कीव में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में 11 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। स्थानीय समाचार एजेंसियों ने बताया कि आज शहर के कई हिस्सों में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। ये हमले इस सप्ताह की शुरुआत में यूक्रेन द्वारा मॉस्को पर किए गए ड्रोन हमलों के बाद हुए हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून आज दिल्ली के सभी इलाकों सहित गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर हिस्सों और राजस्थान के कुछ इलाकों में आगे बढ़ गया है। राजधानी में बारिश से गर्मी और उमस से भरे मौसम से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन में मानसून के उत्तर भारत के कई और इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टिलमैंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सहमेजबान अमेरिका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में सुनेंगे कार्यक्रम यादों की महफिल।

अभी आपने सुना यादों की बारात फिल्म का गाना किशोर कुमार और मोहम्मद रफी की आवाजों में, मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे और राहुल देव बर्मन का संगीत। और अब सुनते हैं फिल्म उमर कैद का ये गाना, लता मंगेशकर मुकेश का गाया हुआ, गुलशन बावरा का गीत, सोनी ओमी का संगीत।

0: फिल्म सावन का ये गाना आप सुन रहे थे जिसे लिखा था असद भोपाली ने, धुन बनाई थी हंसराज बहल ने, आवाज थी लता मंगेशकर की।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: यादों की महफिल कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं थोड़ी सी बेवफाई फिल्म का गाना, लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वरों में। गीत लिखा है गुलजार ने, धुन बनाई है खयाम ने।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में आप सुन रहे थे वारिस। फिल्म का ये गाना वर्मा मलिक के बोल उत्तम जगदीश का संगीत था। और आइए अब सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म सौदागर का ये गाना।

आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी और सुलक्षणा पंडित की आवाज़ों में फिल्म फांसी का ये गाना। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

योगेश की शब्द रचना, सचिन देव बर्मन का संगीत, किशोर कुमार की आवाज़ में आपने सुना फिल्म मिली का ये गाना। और आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म राजपूत का गीत, किशोर कुमार और साथियों के स्वरों में। आनंद बख्शी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन।

जावेद अख्तर के बोल हृदयनाथ मंगेशकर का संगीत फिल्म मशाल का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में। ये थी आज की यादों के महफिल की अंतिम प्रस्तुति। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध।

आप सभी को राजुल का प्यार भरा नमस्कार। सुरीला सफ़र कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में जो इबारत हमने फेसबुक पर पोस्ट की है वो आपने पढ़ी और बहुत सारे संदेश

0: भेजे इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिन लोगों ने अभी नहीं पढ़ी है उनके लिए हम एक बार यहाँ पढ़ देते हैं। खिलते नगमों की कलियाँ चुनने वाली दिलकश बहार का मौसम, 100 सालों से बंधन अनजाना बांध के चलने का मौसम। ये कहता है दिल थाम लो गर, रंग साथ अभी खिल जाएंगे, बन सुगंध सुमन मिल जाओ तो सब एक ताल बंध जाएंगे। रजनी गंधा संग खिलता मन, बांधे अनजाना सा बंधन, ये मौसम धीरे धीरे से जीवन में घुल मिल जाता है, पर जाता है तो बीते लम्हों की कसक छोड़ कर जाता है। तो ये है आज की इबारत, और इस इबारत को लेकर बहुत सारे गानों के बारे में भी आपने कहा है, तो बस ये देखना है कि आज जो गाने प्ले होने वाले हैं उनसे आपकी लिस्ट कितनी मैच कर रही है, हमें ज़रूर बताइएगा। हो सकता है कि आपने अभी अभी जो गाना सोचा हो वो हमारी इस लिस्ट में हो, तो अगर अभी भी कोई दिमाग में गाना आ रहा हो तो जल्दी से हमें बताएं। बहरहाल आज मौसम को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं, और हमारे श्रोताओं ने भी मौसम के बारे में कई संदेश भेजे हैं। एक संदेश में कहा है कि एक हम हैं जो उदास होकर चुपचाप अपने काम कर रहे हैं, और आप कितनी प्यारी सी इबारत लेकर आई हैं, जबकि हम जानते हैं कि ऐसा करना ठीक नहीं है। कितना प्यारा मौसम और प्यारा सा विविध भारती का साथ, फिर भी ना जाने क्यों ये दिल बार बार उदास हो जाता है, पर हमने अपने दिल से कह दिया कि हमें मुस्कुराना है, और हमें उदासी दूर होती नज़र आई और हम हो गए शामिल सुरीरा सफ़र में। वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे लिखते हैं कि आपकी इबारत में हमें फूल और कलियां नज़र आईं, तो हमने अपने गमले में एक बात नोटिस की, 3 दिन से एक हिबिस्कस यानी गुड़हल के एक पौधे में 3 दिन से 3-3 फूल खिल रहे हैं। आज तीसरा दिन है और कल चौथे दिन के लिए भी उसमें 3 कलियाँ हैं। इन छोटी छोटी बातों पर हमारा ध्यान नहीं जाता, पर कभी कभी ये सब देखना भी अच्छा होता है, क्योंकि इस बहाने हम प्रकृति से जुड़ते हैं और फिर ये पौधे तो कितनी खुशियाँ देते हैं हमको। बहुत सुंदर बात कही आपने, और संदेशों में बहुत सारी बातों के साथ साथ ये भी कहा गया है कि इस कार्यक्रम में विविध भारती और उसके श्रोता साथ साथ मिलकर चलते हैं, तो मौसम के साथ सृजन का लुत्फ ही कुछ और है। न जाने कितनी गीत कविताएं इनके सानिध्य में परवान चढ़ी हैं। कवि और गीतकारों की कलम का जादू जब कोरे कागज़ पर उतरता है तो सावन भादो बरखा पतझड़ हर मौसम के गीत बन जाते हैं। मौसम जीवंत में जीवन में वो सब अनुभूतियां देता है जिसे हम खुशी का नाम दे सकते हैं। शायर बशीर बद्र के माध्यम से कहें तो, अजब मौसम है मेरे हर कदम पर फूल रखता है, मोहब्बत में मोहब्बत का फरिश्ता साथ चलता है। बहुत सुंदर। तो मौसम की इतनी बातें हो गई हैं, तो क्यों ना उन सभी गीतों पर एक नज़र डालते चलें जो कि आपकी पसंद हैं, एक एक कर उनकी एक झलक सुनते जाते हैं।
1: झूमता मौत।

वो तो आपको सुनवाएंगे ही, आपसे पूछेंगे फिल्म का नाम और कलाकारों के नाम। लेकिन एक सवाल और है, आज की इबारत में शुरुआत में एक गीत के अंतरे की कुछ पंक्तियाँ छिपी हुई हैं, आपको वो गीत पहचानना है, फिल्म का नाम बताना है और साथ ही वो अंतरा भी बताना है कि वो अंतरा असल में क्या है। उसमें से कुछ शब्द लिए हैं अंतरे के, तो अब ये गीत और बताइए फिल्म का नाम और मुख्य कलाकारों के नाम।

दरअसल मौसम को लेके इतने खूबसूरत गीत हैं कि अगर हम उनको थोड़ा थोड़ा भी प्ले करते चलें तो आज के कार्यक्रम का वक्त ही पूरा हो जाएगा। इसलिए कुछ गीतों को हमने छांट कर लिया है, चुन कर लिया है। अब जो गीत हमने चुना है

बहुत बहुत शुक्रिया हमारे श्रोताओं के उन जवाबों के लिए जो उन्होंने तुरंत भेजे हैं। बताया है कि फिल्म ओपेरा हाउस का ये गाना जिसमें प्रमुख कलाकार रहे अजीत और बी सरोजा देवी। और जो दूसरा सवाल हमने पूछा था, मैं पल दो पल का शायर हूँ गीत की ये कुछ पंक्तियाँ थीं, कुछ शब्द असल में चुने थे उसके एक अंतरे से। और बताया है कि कभी कभी कभी फिल्म में अमित जी स्टेज पर गा रहे हैं। हमने ये भी कहा था कि अगर वो अंतरा आपको याद आ रहा हो तो ज़रूर लिखें, अभी कोई वैसा जवाब दिख नहीं रहा है। वैसे मौसम का जब भी हम जिक्र करते हैं तो खूबसूरती का और तमाम उन चीज़ों का जो प्रकृति से जोड़ती हैं हमें, उन सब की बातें करते हैं, लेकिन साथ ही साथ मौसम एक चीज़ और सिखाता है कि आज जो है वो कल नहीं रहेगा और जो कल है वो परसों नहीं रहेगा, यानी निरंतर बदलाव की ओर भी संकेत करता है मौसम। और ये भी बताता है

है कि कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले। तो चलिए अब अगले गाने की तरफ बढ़ें, लेकिन उससे पहले ये संदेश है। एक श्रोता ने कहा है कि आज की ये कवितामय इबारत जीवन के उस सुखद दौर का उत्सव है जो आते ही चारों तरफ सकारात्मकता बिखेर देता है, लेकिन जाते जाते हमें यादों के साए में छोड़ जाता है। ये पद्य हमें याद दिलाता है कि जीवन में अच्छे दिन या खूबसूरत लम्हे हमेशा नहीं ठहरते। उनका आना जितना सुखद होता है, उनका जाना उतना ही भावुक कर देने वाला होता है। कविता में प्रकृति के मौसम को मानवीय भावनाओं, विशेषकर प्रेम और विरह से बेहद खूबसूरती से जोड़ा गया है। क्या बात है। एक और श्रोता कह रहे हैं कि मौसम अपने साथ बहुत से परिवर्तन लेकर आता है जो हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा देता है। जब चारों तरफ फूलों की सुगंध और हरियाली बिखरी होती है, तब हम भी मन से इसमें घुल मिल जाते हैं। पर प्रकृति हमें समय समय पर अपने नए नए रूप से अवगत कराती रहती है और हमें ये संदेश देती है कि हर मौसम कुछ समय के लिए आता है, इसके बाद फिर परिवर्तन है और इसमें हमें अपने आप को ढालना है। हर मौसम हमें कुछ देकर जाता है, इसकी यादें हमारे मन मस्तिष्क पर छा जाती हैं। बहुत सुंदर बात कही आपने। एक और श्रोता ने कहा है कि प्रकृति का सौंदर्य केवल आंखों को नहीं आत्मा को भी स्पर्श करता है। फूलों की मुस्कान, रजनीगंधा की भीनी सुगंध और सुहाने मौसम का ये सम्मिलित स्पर्श जीवन के उन अनमोल क्षणों का स्मरण कराता है जहाँ सुख किसी बड़े उत्सव में नहीं बल्कि प्रकृति की सहज छटा में छिपा होता है। जब चारों ओर सृष्टि अपने सौंदर्य का संगीत बिखेरती है, तब मन भी अनायास ही भावों के सुर छेड़ देता है और जीवन एक मधुर गीत सा प्रतीत होने लगता है। बहुत सुंदर बात कही। तो चलिए इसी बात पर एक सुंदर सा गीत आपको बताना है कि फिल्म का संगीत किन्होंने दिया था और प्रमुख भूमिकाएं किन्होंने निभाई थी।

देवानंद और आशा पारेख ने जब प्यार किसी से होता है फिल्म में प्रमुख भूमिकाएं निभाई थीं। बहुत बहुत धन्यवाद जवाब के लिए। लेकिन हमने संगीतकार का नाम भी पूछा था, शंकर जयकिशन का संगीत था इस फिल्म में। और हमारे एक श्रोता ने कहा है कि मौसम बादलों बयारों और बौछारों का है, भीगने का है, यादों की रिमझिम बूंदों की जुगलबंदी में कुछ गुनगुनाने का है। जिस तरह पावस के बादल धरती का मैल धोकर उसे उजला कर देते हैं, उसी तरह हमारे मन की परतों पर ठहरा आपाधापी अशांति और बेचैनी का गुबार भी बौछारों से धुलकर उज्जवल हो सकता है। हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि भाई मौसम की बहुत बातें हो रही हैं और बारिश डर डर कर आ रही है। तो यकीन मानिए कि बारिश को हम बुला रहे हैं, बल्कि डर नहीं रही है, बल्कि आने के लिए मजबूर होती जा रही है। और बारिश जल्द ही आ जाए, हम तो यही दुआ करेंगे। एक और श्रोता ने बताया है कि वो आज शिमला में मौसम बहुत अच्छा हो गया है और मेलोडियस सॉन्ग सुनते हुए बहुत अच्छा लग रहा है उन्हें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे श्रोताओं के इन संदेशों के साथ ही साथ मौसम की जो बातें चलती जा रही हैं उनमें बहुत सुंदर तरीके से गीतों की इबारत पिरोई है हमारे एक श्रोता ने। लिखते हैं कि हे विविध भारती, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, सालों पुराना, मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना। 100 साल पहले तो नहीं, 66 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। तो आओ मिल जाएं हम सुगंध और सुमन की तरह, एक हो जाएं चलो हवा के संग, प्रसारण तरंगों की तरह। क्या बात है, पिछले 3 दिनों से मौसम ने भी करवट ली है। भीगा भीगा दिनों भीगा भीगा प्यार का समय है, सुहाना सुहाना बरसात के नशे में जहाँ है, किसी को किसी की खबर ही कहाँ है। बीते हुए लम्हों की कसक याद करते हुए तड़प ये दिन रात की, कसक ये जिन बिन बात की। हे विविध भारती, तुझे सुनने का भला ये रोग है कैसा, आप तो बता दे। भाई रोग तो नहीं है, तो आपकी बातों से लगता है कि किसी मर्ज का इलाज है विविध भारती सुनना। हमने सही कहा ना। एक और श्रोता कह रहे हैं कि मौसम का मिजाज समय अनुसार बदलता जाता है और इसके अनुरूप अपने आप को ढाल लेता है। बहारों का मौसम रंग बिरंगे फूल और सुगंध मन मस्तिष्क में घुल जाता है। धीरे धीरे ये बंधन दूर चला जाता है और उन लम्हों को याद करते रह जाते हैं। तो याद की बात हुई है, अब इस गीत को जरा सुनते हैं। आप हमें ये बताइए कि इस फिल्म में जो प्रमुख कलाकार हैं उनके नाम क्या थे।

जब आप मिला, वासु की भूमिका कमल हासन ने निभाई थी और सपना बनी थी रति अग्निहोत्री फिल्म एक दूजे के लिए का ये गाना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। कितनी खूबसूरत पंक्तियाँ लिखी हैं आनंद बख्शी साहब ने, दुनिया में प्यार की एक ही बोली। तो बताइए कि इस एक ही बोली के साथ साथ कितने सारे गीत बनते चले जाते हैं और वो कौन सा गीत है जो आपको सबसे ज़्यादा मन को लुभाता है? बताइए हमें कि इस भाव के साथ लिखा गया वो कौन सा गीत है जो आपको सबसे ज़्यादा लुभाता है। हमारे श्रोताओं के कुछ संदेश हैं। मन किसी गीत नगमे की तरह खिल रहा है और किसी खास इंसान, अनजाना रिश्ते की तरफ, अपने भीतर छिपे किसी एहसास की तरफ आकर्षित हो रहा है। ये मौसम की इनायत भी हो सकती है और प्यार का एहसास भी। हमारे एक श्रोता ने बताया कि सुरीला सफ़र शुरू होते ही बनारस में बारिश शुरू हो गई। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई, बारिश की, ये मौसम की पहली बारिश, बहुत बहुत मुबारक। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि आज तो सुरीला सफ़र में शायद विवाह की बात होगी। एक ऐसा रिश्ता अनजान होते हुए भी एक दूसरे को सब कुछ सौंप देना, प्यार की असीम खुशी के साथ जीवन जीने की इच्छा और सात जन्म तक साथ निभाने का वादा करना ही जीवन है। एक और श्रोता ने कहा है कि कहा जाता है कि बंधनों के कई रूप होते हैं, सात फेरों का बंधन, सात जन्मों का बंधन, जन्म जन्मांतर का बंधन, परंतु एक बंधन और हो भी होता है, मन से मन का। बहुत सुंदर, रेशम सा कोमल, बहते हुए नीर सा पवित्र, हवाओं में खुली हुई चंदन और फूलों की महक सा जो मन से मन की डोर को बांध कर रखता है। जब ये बंधन बनता है तो एक चुप सा मौन सा बन जाता है। यहाँ दिव्य प्रेम की अनुभूति होने लगती है जिसमें किसी अग्नि साक्षी, किसी हवन, यहाँ तक कि किसी सात वचन की भी कोई भूमिका नहीं है। यहाँ जो प्रेम डोर में बंधन होता है उसे आपस में केवल मन से मन को एक मौन ने स्वीकार किया है। न बांधने की चाहत, न छूटने का डर, क्योंकि ये है मन से मन का बंधन। बहुत सुंदर बात कही आपने। और अब अगला गीत सुन रहे हैं, सुनिए और बताइए कि इस फिल्म के संगीतकार कौन हैं। और हाँ, मौसम को लेकर जो प्यार की बोली की बात है उसमें आपको सबसे सुंदर

इकबाल कुरैशी का संगीत था इस फिल्म में लव इन शिमला का। ये गाना आपने सुना मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में। और हमने जो गानों के का जिक्र किया था कि ऐसे दिल के बोल, दिल की प्यार की बोली बोलने वाले कौन से गाने आपको पसंद हैं, तो हमारे श्रोताओं ने कई गाने, बड़े सुंदर सुंदर गाने लिख भेजे हैं। मीठे बोल बोले बोले पायलिया, और पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है, रफ़ी जी, सुमन जी, शगुन फिल्म का गाना, और एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है। एक और श्रोता ने लिखा है कि आना तो आके कभी अब जाना नहीं। एक श्रोता लिख रही है कि बाहर बरसात हो रही है और रेडियो सेट पर गानों की क्या बात है। एक और श्रोता ने बताया, नजरों से कह दो प्यार में मिलने का मौसम आ गया। एक श्रोता पूछ रहे हैं कि रुम्बा कहाँ की भाषा है, इसका क्या मतलब है जी। तो अच्छा होगा कि हमारे जो कोई दक्षिण भारतीय साथी इस समय हो फेसबुक पर वो बताएं। एक बड़ा खूबसूरत सा गाना हमारे एक श्रोता ने लिख भेजा है, अरे ओ शोख कलियों मुस्कुरा देना, जो वो जब आए, सुनो फूलों महक अपनी लुटा देना, वो जब आए, फिल्म जब याद किसी की आती है का। ये बड़ा ही सुंदर सा गीत इन्होंने हमारे साथ साझा किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। एक श्रोता बता रहे हैं कि फिल्म एक दूजे के लिए मैंने 1982 में पहला मैटनी शो देखा था, उस समय मैं फोर्थ ईयर कॉलेज में था। इस फिल्म ने सभी को पागल बना दिया था। और बहुत सारे संदेश और भी हैं। हमारे एक श्रोता ने कहा है कि मौसम अंगड़ाई में गदराई वसुधा के रूप सौंदर्य से बौराए आशिक मिजाजी दीवानगी को और भी दहनशील बनाती इबारत।

0: है। सुमन सुगंध व्याप्त कुसुम दल के मधुरस पान कराती और प्रेम रस बिखेरती, इबारत में दीवानगी की हदें पार हो जाएं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। एक और श्रोता ने कहा है कि प्रकृति का सौंदर्य, फूलों की मुस्कान एवं भीनी खुशबू और मौसम का मनमोहक मिजाज आपस में मिलकर एक ऐसी जीवंत कविता रचते हैं जो तन और मन को गहराई से भिगो देती है। ये वो त्रिवेणी है जहाँ हर एक तत्व दूसरे का पूरक बनकर इस धरा को स्वर्ग जैसा अनुभव कराता है। सौंदर्य, सुगंध और मौसम के संगम का सीधा असर हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। क्या बात कही है, बदलते मौसम के साथ प्रकृति का मिजाज भी बदलता है। आसमान में तैरते बादलों की लुका छिपी कभी रिमझिम फुहारें और क्षितिज पर बिखरती सूर्य की किरणें ऐसा समा बांधती हैं कि प्रकृति का हर कण जीवंत हो उठता है, जो आसमान के साथ जीवन में भी सतरंगी इंद्रधनुष रच देता है। तो बताइए कि ये जो इंद्रधनुष रचता है सतरंगी आसमान में बारिश के दिनों में, उस इंद्रधनुष के साथ रंगों का प्रयोग इस गाने में तो हो ही रहा है जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, और कहाँ कहाँ पर होता है, और क्या आज भी आप वैसे ही ललक कर इंद्रधनुष देखने छत पर जाते हैं या बाहर निकलते हैं जैसे बचपन में जाया करते थे?
1: नहीं,

सलिल चौधरी का संगीतबद्ध किया हुआ ये सुरीला सा गाना आनंद फिल्म से मुकेश की आवाज़ में आपने सुना, और बहुत सारे श्रोताओं ने बताया वो गाना जो उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद है। एक श्रोता ने लिखा है कि जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा, ये भी मुझे पसंद है। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि इस मौसम का सबसे बेहतरीन सुंदर गीत जो मेरा और विविध भारती का पेटेंट परमानेंट गीत है, रिमझिम गिरे सावन सुलग सुलग जाए मन। इस गीत का फिल्म का नाम मैंने विविध भारती रखा है, वैसे इस फिल्म का नाम है मंजिल। क्या बात है। एक और श्रोता कह रहे हैं कि रफ़ी साहब की आवाज़ है ये तो पहचाने, इन्होंने शायद लव इन शिमला फिल्म के उस गाने की बात की है। कहा बात इसी गाने के लिए, हमारे एक और श्रोता ने बताया है कि इस गाने में इलेक्ट्रिकल हवाईयन गिटार स्वर्गीय सरदार हजारा सिंह जी द्वारा बजाया गया है, और बड़ा प्यारा गीत दिल थाम चले हम। जब भी बारिश होती है तो पहले ये गाना होठों पर तैर जाता है, बरखा रानी जरा जम के बरसो, और ये पर्वतों के दायरे ये शाम का समा, ये गाना बहुत पसंद है हमारे एक और श्रोता को। मौसम आधारित गीतों में सबसे ज़्यादा पसंद है ये गाना हमारे एक और श्रोता को, मौसम मौसम ये लवली मौसम, और दूसरा लोफर का आज मौसम बड़ा बेईमान है। और हमारे कुछ श्रोताओं ने दिल थाम चले गीत के बारे में बताया है कि बहुत ही रोमांटिक गाना है। एक श्रोता बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा लुभाने वाला फिल्म गीत है तीसरी कसम का, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई। और ये एक और श्रोता ने कहा है कि इस गीत के बारे में केवल ये पता है कि रफ़ी साहब गा रहे हैं। तो चलिए, हमारे जिन श्रोताओं को पता है कि इस फिल्म में रफ़ी साहब की गीत के इस आवाज़ को पर्दे पर कौन अपने होठ हिला रहे हैं, तो अगर आपको पता हो तो हमें ज़रूर लिख भेजें। एक और श्रोता ने केदारनाथ फिल्म के गाने का जिक्र किया है, काफिराना सा है इश्क है या क्या है, ऐसे तुम मिले हो, ऐसे तुम मिले हो जैसे मिल रही हो इत्र से हवा। बहुत सुंदर गाना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, ये इनका गाना बहुत इन्हें प्रिय है। तमिल भाषा का शब्द है रुम्बा, हमारे एक श्रोता ने बताया है। और एक और श्रोता कह रही हैं कि आपकी दुआ का असर हुआ है, कल बनारस में रात को 1 घंटा रिमझिम बारिश हुई थी, हमारे सभी पेड़ पौधे बारिश के पानी से भीग गया था, जैसे खिल गया सब पेड़ पौधे, बनारस में मौसम सहनीय हो गया है, आपको ढेर सारा शुभेच्छा। आप नहीं वर्षा के बाशिंदों को दुआ भेजिए जी, ज़रूर वहाँ बारिश होगा। क्या बात है भाई, हम तो बिल्कुल भेज रहे हैं अपने उन सभी श्रोताओं के लिए, ठंडे ठंडे बादल वहाँ तक पहुँचे। और अब ये गाना आप सबके लिए, ज़रा इस गीत को सुनिए, फिल्म का नाम और प्रमुख कलाकारों के नाम बताइए।

इंद्रधनुष को लेकर हमने जो सवाल पूछा था उसके जवाब कई देखने को मिले। इंद्रधनुष को देखना अच्छा लगता है बचपन में भी और अब भी, इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। और एक और श्रोता ने बताया कि मैं अमेरिका के नियाग्रा फॉल देखने गई थी, वहाँ मैंने एक ही जगह पर ही छोटे छोटे बहुत से इंद्रधनुष हर थोड़ी थोड़ी दूर पर देखे जो बहुत अजूबे से लगे। वाकई हम तो सोच रहे हैं कि क्या नज़ारा होगा वो। एक और श्रोता ने कहा है कि असल जिंदगी में मुंबई में इंद्रधनुष नहीं दिखता, आज का प्रोग्राम मुझे प्रोत्साहित कर रहा है कि मुंबई से बाहर जाके इंद्रधनुष देखूं। क्या बात है। एक और श्रोता ने कहा है कि इंद्रधनुष जब भी बादलों से झांकता था हम रंग गिनने लग जाते थे, शहरों में कम दिखाई देता है, मिस यू। सच में इंद्रधनुष जब भी दिखता है तो लगता वाह वो दिन लौट आए। एक और श्रोता ने कहा है कि हम तो अभी भी इंद्रधनुष उतनी ही ललक के साथ देखते हैं, और एक बार तो दो एक साथ इंद्रधनुष निकले थे तो इच्छा भी मांग ली। हाँ, ये टोटका तो बहुत ही ज़्यादा कारगर होता था, और कितना इसको जो सबसे पक्की सहेलियाँ होती थी वो तुरंत दौड़कर बुला ले जाती थी कि चलो चलो दो इंद्रधनुष निकले हैं, जो मांगना है मांग लो। और बहुत बार मांगा जाता था कि भाई गणित का पर्चा बड़ा ख़राब होने वाला है, नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो वो उसमें अच्छे नंबर आ जाएँ, या कि हमें ये ड्रेस मिल जाए, कुछ इस तरह की ख्वाहिशें होती थी। आपने क्या कभी ऐसी कोई ख्वाहिश की है हमें ज़रूर बताइएगा। एक और श्रोता कह रहे हैं कि रुम्बा ये तमिल शब्द है, मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत या बहुत ज़्यादा। एक और श्रोता ने कहा है रंग तो जीवन शैली का अभिन्न अंग है, शिक्षा हो, सजावट हो, प्रकृति हो, विज्ञान हो या जीवन ही क्यों ना हो, ये सात रंग ही असली हैं, बाकी सब नकली है। बरसातों में दूर पहाड़ पर ये इंद्रधनुष मनमोहक होता है। और ये भी तो बताइए कि इन सात रंगों का, इन सात की ये गिनती जो है वो सुरों में भी इस्तेमाल होती है, सात सतरंगी सपने भी होते हैं और इंद्रधनुष तो होता ही होता है। एक श्रोता ने कहा है कि हमारी सगाई के बाद जब पारिवारिक फंक्शन में होने वाली धर्मपत्नी से मुलाकात हुई थी तो मौका देखकर अकेले में ये गीत गाकर सुनाया था, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा, ये सुनकर वो मुस्कुराई, ये प्यार आज तक कायम है और अंतिम सांस तक रहेगा। वाह बहुत सुंदर बात। एक और श्रोता कह रहे हैं वाह बहुत सुंदर, मैंने तेरे लिए सात रंग के सपने, सुरीले सपने चुने, हर अंतरे में कई भावों को बांध कर दिल की बातें करता हुआ प्रतीत होता है, मुकेश जी की आवाज़। और ये हमारे श्रोताओं ने कुछ संदेश में कहा है रजनीगंधा की बात, रजनीगंधा संग खिलता मन अक्सर किसी अनजाने से बंधन की महक से सराबोर हो जाता है, जिंदगी की आपाधापी में जब कोई खास करीब आता है तो भावनाएं धीरे धीरे से दिल में अपनी जगह बनाने लगती हैं, शुरुआत भले ही खामोश हो लेकिन जैसे ही दिलों के तार जुड़ते हैं जीवन के सारे सुर सुरमई हो जाते हैं और बिखरे हुए जज्बात सिमट कर एक मुकम्मल ताल में बन जाते हैं। बड़ी सुंदर बात कही आपने। तो चलिए अब अगला गाना सुनते हैं। इस गाने को सुनकर बताइए कि इस फिल्म में प्रमुख भूमिका में अभिनेत्री कौन थी, और साथ ही आपको ये भी बताना है कि ये जो फूल है रजनीगंधा ये गुलदानों में बहुत लोकप्रिय होता है, या कभी हम जब किसी को बुके गिफ्ट करते हैं, आपको अपने फ्लावर वेज में कौन सा फूल सबसे सुंदर लगेगा अगर आप किसी को देना चाहें या घर में सजाना चाहें, कौन सा फूल सबसे सुंदर लगता है?

पिछले गीत के सवाल का जवाब नजर आया। हमारे श्रोताओं ने बताया कि प्रेम गीत फिल्म के का जो गाना हमने सुनवाया था और पूछा था कि प्रमुख कलाकार कौन से हैं, राज बब्बर और अनीता राज पर फिल्माया गया है ये गाना, और इनकी लिस्ट का ये पांचवा गीत शामिल हुआ। बहुत बहुत बधाई। और एक और श्रोता ने बताया कि जबलपुर का मौसम बड़ा खुशगवार हो गया है, बरखा रानी आज सुबह से ही बरस रही हैं। सुबह सुबह छत पर जाकर सूर्य नमस्कार करने की आदत है, आज जब छत पर गए तो रिमझिम फुहारों और फुहारों के साथ फूलों का झूमना, पंछी की मधुर आवाज़ दिल को अजीब सुकून दे रही थी। ये मंजर हमने वीडियो में कैद कर लिया है। आज की बारिश शायद ये कहना चाह रही है, रजनीगंधा फूल तुम्हारे यूं ही महके जीवन में, ये पल हमें याद आएंगे, मौसम मस्ताना रास्ता अनजाना। अच्छा, इन्होंने कुछ और गीत भी बताए हैं, क्या मौसम है चल कहीं दूर निकल जाएं। हाँ, ये भी बहुत सुंदर ही सा गीत है। एक श्रोता ने बताया कि बचपन में जब इंद्रधनुष दिख जाता था तो हम कुछ विश मांगते थे, और एक श्रोता ने कहा है कि वाह क्या सुंदर प्रश्न पूछा आपने, हम तो जब भी वर्षा ऋतु में मेघों का आगमन होता है तो मोबाइल लेकर छत पर चढ़ जाते हैं रूई जैसे सुंदर सुंदर मेघों की क्लिक्स लेने के लिए। खूब सारी क्लिक्स लेते हैं लेकिन फिर वापस भागना पड़ता है भीगने के डर से, स्वयं नहीं मोबाइल के। सच में मोबाइल बचाना बहुत ज़रूरी है इस मौसम में। एक और श्रोता कह रहे हैं, जो हमने छोटे छोटे इंद्रधनुषों वाला एक संदेश पढ़ा था उसी से संबंधित है ये संदेश हमारी एक और श्रोता का लिखा है। ये तो हमने भी देखा क्योंकि कनाडा और अमेरिका दोनों के बीच का नज़ारा ही है नियाग्रा फॉल्स पर, बड़ा ही प्यारा नज़ारा, हम कभी नहीं भूल सकते, वो इतना प्यारा समा, वो पल मानो हमारे दिल में सदा के लिए बस गया है। एक और श्रोता ने कहा है कि मौसम की बातें हो रही हैं तो आज सभी को गरजते बरसते बादलों का इंतजार है, लेकिन कुदरत भी और इंतजार करा रहा है।

0: यही है इंतजार के इस वक्त के लिए इनको गीत याद आया है, कहाँ से आए बदरा, फिल्म चश्मे बद्दूर का गाना। और एक श्रोता कह रहे हैं कि भाई इंद्रधनुष प्रेमी इंद्रधनुष को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भली भांति देख सकते हैं और अपने अपने दुनिया को मुट्ठी में भरकर खुश हो सकते हैं। भाई ये कुछ मतलब ठीक है, देख सकते हैं, लेकिन देखने के साथ जो उसको एक उल्लास जुड़ा रहता है वो कैसे महसूस होगा। ये हमारे एक श्रोता ने मैसेज भेजा है कि आज कालेख वक्त एहसास और यादों के खूबसूरत ताने बाने को बुनता है। ये महज एक कुछ पंक्तियां नहीं बल्कि जिंदगी के सुरीले सफर का एक जीवंत दस्तावेज है। इसमें एक ऐसे रूमानी मौसम का जिक्र है जो अपने साथ सतरंगी ख्वाब लेकर आया है, जहां अनजाने रिश्ते भी सदियों पुराने लगते हैं। जैसे जैसे ही रजनीगंधा की भीनी खुशबू हवाओं में घुलती है, जिंदगी का हर बिखरा सुर एक मुकम्मल ताल बन जाता है। ये लम्हा भले ही हमेशा न ठहरे, पर जाते जाते दिल में ताउम्र मुस्कुराने वाली एक मीठी कसक छोड़ जाता है। सच में एक और श्रोता ने कहा है कि पुष्प बहार का सुहाना मौसम, सुगंधित फूलों की महक जीवन को खुशियां प्रदान कर रही है। सृष्टि देवता खिलकर प्रसन्नता से हंस रही है, मन भावन गीत तन्मयता से गुनगुना रही हैं। बिल्कुल बादल, बिजली, चंदन, पानी और सुमन सुगंध की तरह धीरे धीरे यह मस्ताना मौसम एक मीठी मीठी सी चुभन और ठंडी ठंडी सी अगन हमें अर्पित कर रहा है। सुरीले सफर में आज ऐसे ही कुछ मधुर गीत। और इन्होंने कुछ गीतों का भी जिक्र किया है, और बड़ी खुशी की बात है कि शुरुआत में भेजा हुआ संदेश, इसमें से कई गाने हमारी लिस्ट से मैच हो गए। एक और श्रोता ने कहा है कि कलियां और बहारों की तो बातें हैं, और रजनीगंधा फूल तुम्हारे यूं ही महके जीवन में, आओ मिल जाएं हम सुमन और सुगंध की तरह। ये कुछ इन्होंने गीत लिखे हैं, तो चलिए ये गीत भी शामिल हो गए। और एक और श्रोता ने कहा है कि फूल और कलियों की बातों पर इन्होंने अपने चारों तरफ उन्हें खिलते हुए महसूस किया है। अब ये कार्यक्रम का आखिरी गीत आपके लिए, इस गीत को सुनिए, बताइए फिल्म का नाम और प्रमुख कलाकारों के नाम।
1: अभी अलविदा मत कह।

0: रात हो गई लेकिन यादों के ये चिराग जलते रहेंगे। हमारे श्रोताओं ने बताया निकाह फिल्म का ये गाना आपने सुना। महेंद्र कपूर की आवाज़, हसन कमाल के बोल, रवि का संगीत, राज बब्बर और सलमा आगा की ये फिल्म। और बहुत सारे संदेश भेजे हैं उन फूलों के बारे में। हमारे एक श्रोता ने कहा है, रजनीगंधा तो सच में दिल से दिल की आवाज़ पहुंचाने का जरिया है। मानो हमारी गुरु स्वरूपा दीदी ने जब इतने प्यार से हमारे सत्संगी सखी के लिए रजनीगंधा फूलों का गुलदस्ता भेजा, तो नेत्रहीन हो चुकी और डायलिसिस पर चल रही सखी फूलों को पाकर खुशी से झूम उठी और रजनीगंधा फूल तुम्हारे गीत गुनगुनाने लगी। उनकी खुशी देखकर हम सब भी खुशी से सारे दर्द भूल कर उनके साथ झूमने लगे। ये बदलाव पर व्यंग है जिसकी गिरफ्त में हम सभी प्रकृति से खिलवाड़ कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग का दंश झेल रहे हैं। ये हमारे एक और श्रोता ने कहा है, जो उन्होंने कहा था कि सोशल मीडिया पर देख सकते हैं और कर सकते हैं। और हमारे और श्रोताओं के भी संदेश हैं, लेकिन अब कार्यक्रम का वक्त हो रहा है। एक श्रोता कह रही है कि फ्लावर वास से ज़्यादा हमको ये जो पेड़ों पर फूल अच्छे लगते हैं, पेड़ पौधों पर अच्छे लगते हैं, क्योंकि फ्लावर वाज में ये जल्दी से मुरझा जाते हैं। हाँ, सच में मुरझा जाते हैं, लेकिन यादों की खुशबू कभी कम नहीं होती और कभी नहीं मुरझाते वो फूल जो मीठी मीठी बातों के साथ हमारे मन में यादों के रूप में सुरक्षित रहते हैं। इन्हीं बातों के साथ अब दीजिए राजुल को इजाज़त, सुनते रहिए देश की।
1: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत यादों की बारात। पहला गीत इस फिल्म से आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें हैं, मजरू सुल्तानपुरी का गीत और राहुल देव बर्मन का संगीत।

लव इन टोक्यो कार्यक्रम का अंतिम गीत इस फिल्म से आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की, हसरत जयपुरी का गीत है और शंकर जयकिशन का संगीत।

0: हम आकाशवाणी से बोल रहे हैं। 2:10 होने को हैं। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगी।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची का आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापानी प्रधानमंत्री से अपने कैबिनेट सहयोगियों का परिचय कराया। दोनों नेता 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के तहत आपसी सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वे ताकाइची की पहली भारत यात्रा पर उनका स्वागत करके अत्यंत प्रसन्न हैं। प्रदेश में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन यानी वीबी जीराम जी का आज प्रदेशव्यापी शुभारंभ किया गया। सभी जिलों में जन सम्मेलन सह लॉन्च कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें राष्ट्रीय शुभारंभ कार्यक्रम का सीधा प्रसारण हो रहा है। कार्यक्रमों में नागरिकों को 125 दिवस रोजगार गारंटी, पारदर्शी भुगतान प्रणाली और विकेंद्रीकृत ग्राम स्तरीय योजना निर्माण की जानकारी दी जा रही है। चुनाव आयोग ने दतिया विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 13 जुलाई और मतदान 30 जुलाई को होगा, जबकि मतगणना 3 अगस्त को की जाएगी। दतिया विधानसभा क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। ये उपचुनाव कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को सजा मिलने के बाद उनकी सदस्यता समाप्त होने की वजह से हो रहा है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ माणिक साहा का उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने भोपाल स्थित निवास कार्यालय में अभिनंदन किया। दोनों नेताओं के बीच स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में नवाचारों को लेकर चर्चा हुई। डॉ साहा भोपाल में आयोजित 28वें AOMSI मिड टर्म कन्वेंशन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। ये राष्ट्रीय सम्मेलन आज से 4 जुलाई तक पीपुल्स यूनिवर्सिटी परिसर में क्रिएटिंग अ होलसम सर्जन थीम पर आयोजित किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि योजना 2026 लागू कर दी है, जिसके तहत 29 जून से आंशिक धन निकासी के नियमों में बदलाव किया गया है। नए नियमों के अनुसार सदस्यों को खाते में कम 25% राशि सुरक्षित रखनी होगी। अब घर खरीदने, निर्माण मरम्मत के साथ बीमारी, पढ़ाई और विवाह जैसे खर्चों के लिए भी धन निकाला जा सकेगा। ईपीएफओ जल्द ही यूपीआई और व्हाट्सएप के माध्यम से भी सेवाएं शुरू करने जा रहा है। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत इस वर्ष इंदौर जिले में 21 लाख पौधे लगाए जाएंगे। ये जानकारी नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में दी गई। पौधरोपण

आज से शुरू हो गया है और बीएसएफ परिसर में सर्वाधिक पौधे लगाए जाएंगे। श्री विजयवर्गीय ने कहा कि यह अभियान केवल पौधरोपण नहीं बल्कि प्रकृति और आने वाली पीढ़ियों के प्रति जिम्मेदारी का प्रतीक है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा घोषित स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग 2025-26 में प्रदेश के 10 विद्यालय राष्ट्रीय स्तर पर चयनित हुए हैं। शहरी वर्ग में रतलाम के सांदीपनी विद्यालय जावरा ने प्रथम और भोपाल के कमला नेहरू सांदीपनी विद्यालय ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। प्रदेश की सभी 78,000 से अधिक शालाओं ने इस रेटिंग में सहभागिता की थी। सभी चयनित विद्यालयों को भारत सरकार द्वारा 1,00,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ग्रैंड चेस टूर 2026 के तीसरे इवेंट में भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने शानदार शुरुआत करते हुए पहले दिन संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर जगह बनाई है। विश्व चैंपियन डी गुकेश एक हार और एक जीत के बाद छठे स्थान पर रहे। वहीं फ्रांस के अलीरेजा फिरोजा 5 अंकों के साथ अकेले शीर्ष पर बने हुए हैं। टूर्नामेंट में अब सुपर रैपिड के 6 राउंड और खेले जाने बाकी हैं। अब रुक करते हैं मौसम का। प्रदेश में मानसून लगातार आगे बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने आज के लिए हरदा, नर्मदापुरम, रायसेन और छिंदवाड़ा सहित कई जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं इंदौर में कल तेज बारिश से सड़कें जलमग्न हो गई। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अब तक सामान्य से करीब 28% कम बारिश हुई है, लेकिन जुलाई में अच्छी बारिश की उम्मीद जताई गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। एम्स भोपाल के अध्यक्ष प्रोफेसर अशोक कुमार महापात्र ने सुश्रुत कॉमन एंडो ट्रेनर फैसिलिटी का उद्घाटन किया। यह सुविधा लेप्रोस्कोपी, एंडोस्कोपी और जटिल सर्जरी का सुरक्षित और व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करेगी। निवाड़ी में महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन स्थल परियोजना के तहत यूएन वीमेन इंडिया की कंट्री रिप्रेजेंटेटिव शोको इशिकावा ने परियोजना से जुड़ी बालिकाओं से संवाद कर उनके अनुभवों को जाना। डिंडौरी में डेंगू निरोधक माह के अवसर पर डेंगू से बचाव और जन जागरूकता के लिए डेंगू रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। और गुना के क्रांतिवीर तात्या टोपे विश्वविद्यालय में नए छात्र छात्राओं के स्वागत और मार्गदर्शन के लिए दीक्षारंभ समारोह का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की बातचीत। दोनों देशों के बीच आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स और एआई सहित कई समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा, भारत जापान के द्विपक्षीय संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को लेकर भारत के प्रस्ताव को एक बार फिर से समर्थन मिला। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे के रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू। दक्षिण पश्चिम मॉनसून की दिल्ली में दस्तक, उत्तरी तथा पश्चिमी राज्यों के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा। फीफा विश्व कप में अमेरिका ने बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर 2002 के बाद पहली जीत दर्ज की। बेल्जियम ने सेनेगल को हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। भारत और जापान ने आर्थिक तथा ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स, रक्षा तथा एआई सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की वार्ता की। सम्मेलन में दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। श्री मोदी ने कहा कि इस परिकल्पना को साकार करने के लिए भारत और जापान ने एआई के क्षेत्र में एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
1: प्रधानमंत्री ताकाइची और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने जॉइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं।

0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत जापान जैव गैस पहल के माध्यम से भारत में 1000 जैव गैस और जैविक उर्वरक संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे भारत के गांवों में स्थिरता, समृद्धि और ग्रामीण आजीविका को नई शक्ति मिलेगी।
1: भारत और जापान दोनों इकोनॉमिक सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी का महत्व अच्छी तरह समझते हैं। इसी दिशा में आज हमने इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए एक ज्वाइंट रोडमैप तैयार किया है। इसके माध्यम से हम सेमीकंडक्टर, क्वांटम और एडवांस मटेरियल जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में सप्लाई चेन रेजिलियंस को मजबूत करेंगे। एनर्जी सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी इंडिया जापान बायोगैस इनिशिएटिव के माध्यम से हमें भारत में 1000 बायोगैस और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्लांट्स लगाने में सहायता मिलेगी।
0: इससे पहले आज प्रधानमंत्री तकाईची का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे। जापान की प्रधानमंत्री कल शाम 3 दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये दौरा भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन के लिए भारत के लंबे समय से चले आ रहे प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिर से समर्थन मिला है। 140 सदस्यों द्वारा अपनाई गई संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकरोधी रणनीति की 9वीं समीक्षा में सदस्य देशों से आग्रह किया गया है कि वे भारत द्वारा 3 दशक पहले प्रस्तावित सम्मेलन को अंतिम रूप देने के लिए हर संभव प्रयास करें। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि सर्वमान्य कानूनी ढांचे का अभाव वैश्विक आतंकरोधी प्रयासों को कमजोर करता है। उन्होंने आतंकवाद से निपटने में दोहरे मापदंड न अपनाने पर बल देते हुए अपराधियों, वित्त पोषकों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने का आह्वान किया।
2: India has been a victim of cross-border terrorism for decades.
3: भारत दशकों से सीमा पार आतंकवाद को झेल रहा है। हमने इसकी भारी कीमत चुकाई है। इसी अनुभव के चलते भारत ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों की निंदा की जानी चाहिए। भारत ने आतंकवाद के लिए फंडिंग को रोकने पर वैश्विक ध्यान केंद्रित करने की दिशा में काम किया है। भारत का मानना है कि आतंकवाद विरोधी प्रयासों को राजनीति से प्रेरित बयानों से कमजोर नहीं किया जाना चाहिए।
0: अमेरिका, इसराइल और अर्जेंटीना ने प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। 4,822 श्रद्धालुओं का पहला जत्था, जिसमें बालताल रूट के लिए 2,312 और पहलगाम रास्ते के लिए 2,510 लोग शामिल थे, 147 गाड़ियों के काफिले में रवाना हुए। ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण, विकसित भारत जयरामजी अधिनियम 2025 देश में रोजगार सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने और गांवों के विकास में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री चौहान ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ आज तिरुपति जिले के मुक्कावरीपल्ले गांव में विकसित भारत जयरामजी अधिनियम 2025 का शुभारंभ किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि योजना का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी गरीब मजदूर बेरोजगार न रहे और सभी को रोजगार मिले।
4: मनरेगा में केवल 100 दिन रोजगार मिलता था, विकसित भारत जयराम जी योजना में पूरे 125 दिन मजदूर को रोजगार मिलेगा। और रोजगार देने की बात प्रधानमंत्री ऐसे नहीं कह रहे हैं, पहले साल ही विकसित भारत जयराम जी योजना में केंद्र ने जो अपना पैसा दिया है वो है 95,600 करोड़ रुपया और राज्यों का 40% शेयर मिलेगा, तो एक साल में ही खर्च होंगे 1,51,282 करोड़ रुपया।
0: श्री चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आंध्र प्रदेश के लिए 70,000 से अधिक

0: पासों की मंजूरी दी। उन्होंने ग्रामीण संपर्क और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से 422 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि से 146 ग्रामीण सड़कों और 19 पुलों के निर्माण के लिए स्वीकृति पत्र भी सौंपे। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एक से दूसरी तकनीक की जगह नहीं ले रहा है बल्कि इससे टिकाऊ औद्योगिक इकोसिस्टम का निर्माण हो रहा है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी विकसित भारत के लिए देश को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हब बनाने पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ तथा संतुलित विकास के साथ जीवन को सुगम बनाने के प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत मॉनसून के मौसम में 21 लाख पौधे लगाए जाएंगे। जिले में विभिन्न स्थानों पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज रांची के लोकभवन में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत जनगणना प्रपत्र भरकर संबंधित मुख्य चुनाव अधिकारी रवि कुमार और जिला चुनाव अधिकारी मंजुनाथ भजंत्री को सौंपा। उपराज्यपाल ने देश के सभी योग्य पात्रों को जनगणना प्रपत्र सही समय पर भरने की अपील की। बंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से 7 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई। दुर्घटना उस समय हुई जब मदपटना गांव स्थित कावेरी क्रशर पत्थर खदान में एक विशाल चट्टान नीचे खदान में गिर गया जहां मजदूर काम कर रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और खदान के मालिकों की तलाश जारी है। मृतकों में बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक के निवासी थे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए खदान मालिकों के खिलाफ उचित कार्रवाई का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने ISI प्रायोजित अंतर्राज्यीय आतंकी और हथियार नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ISI हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके साथियों के निर्देश पर राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @XHIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज दिल्ली के सभी इलाकों सहित राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश के कुछ और हिस्सों में तथा मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर भागों में पहुंच गया है। राजधानी दिल्ली में बारिश से गर्मी और उमस भरे मौसम से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिन में मॉनसून के उत्तर भारत के कई और इलाकों में आगे बढ़ने की उम्मीद है। वहीं पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों के लिए तेज बारिश की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में मॉनसून के आगमन से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है और राज्य के लगभग सभी हिस्सों में बारिश हुई है।
1: दक्षिण पश्चिम मानसून मंगलवार से ही आधिकारिक तौर पर प्रदेश में दाखिल हो चुका है और ट्रफ लाइन आजमगढ़, बरेली और अयोध्या जिलों से होकर गुजर रही है। राज्य के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई, जिससे लोगों को लंबे वक्त से पड़ रही भीषण गर्मी से राहत मिली। सुल्तानपुर, मुजफ्फरनगर, बदायूं, सहारनपुर और संभल में बहुत भारी बारिश हुई, जिससे कुछ क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। हालांकि दिन के तापमान में भी गिरावट आई। ये बारिश किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है, जो धान की बुआई में देरी के कारण बेसब्री से मानसून का इंतजार कर रहे थे। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया है और कहा है कि राज्य भर में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए मौसम के हालात बेहतर बने हुए हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: महाराष्ट्र में आज लगातार दूसरे दिन भी मूसलाधार बारिश जारी रही।
2: मुंबई में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव हो गया है, यातायात धीमी पड़ गई है और उपनगरीय रेल सेवाएं कुछ मार्गों पर प्रभावित हो रही है। लगातार बारिश के चलते पवई लेक पूरी तरह भर चुका है। मुंबई विश्वविद्यालय ने पालघर जिला तथा पनवेल महानगर पालिका क्षेत्र के महाविद्यालयों में आज होने वाली परीक्षाएं रद्द कर दी है। मौसम विभाग ने उत्तर महाराष्ट्र तथा दक्षिण महाराष्ट्र गोवा तट पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।

0: कनाडा के अधिकतर क्षेत्रों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है, वहीं कुछ क्षेत्रों में बारिश और बाढ़ की समस्या बनी हुई है। ओंटारियो, क्यूबेक, प्रेरीज और नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज के कुछ हिस्सों के लिए गर्मी की चेतावनी जारी की गई है। अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, बाहरी गतिविधियों से बचने और वरिष्ठ नागरिकों तथा बच्चों का ध्यान रखने की सलाह दी है। यूक्रेन के कीव में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में 13 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। स्थानीय समाचार एजेंसियों ने बताया कि आज शहर के कई हिस्सों में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। ये हमले सप्ताह की शुरुआत में यूक्रेन द्वारा मॉस्को पर किए गए ड्रोन हमलों के बाद हुए हैं। फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलेमंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमेरिका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर 2002 के बाद पहली जीत दर्ज की। अब अमेरिका का मुकाबला बेल्जियम से होगा। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के सत्र में सेंसेक्स 402 अंक के साथ 77,325 के उच्चतम स्तर पर और निफ्टी 129 अंक बढ़कर 24,135 पर आ गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की बातचीत। दोनों देशों के बीच आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स और एआई सहित कई समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा, भारत जापान के द्विपक्षीय संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को लेकर भारत के प्रस्ताव को एक बार फिर से समर्थन मिला। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे के रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू। दक्षिण पश्चिम मानसून की दिल्ली में दस्तक, उत्तरी तथा पश्चिमी राज्यों के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आपने ट्यून किया है देश का सबसे लोकप्रिय चैनल विविध भारती। आइए सुने सदाबहार नगमे। सदाबहार नगमे कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं अमर फिल्म का ये गाना, लता मंगेशकर और साथियों का गाया हुआ, शकील बदायूनी के बोल हैं और नौशाद की धुन।

0: गया।
1: असद भोपाली का लिखा और रवि का संगीतबद्ध किया हुआ ये गीत आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में। फिल्म का नाम अपना बना के देखो। और आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म चार दीवारी का ये गाना लता मंगेशकर की आवाज में। गीत लिखा है शैलेंद्र ने, सुरों में पिरोया है सलील चौधरी ने।

0: एक रास फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। बोल मजरूह सुल्तानपुरी के थे और धुन बनाई थी चित्रगुप्त ने।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

लता मंगेशकर और मन्ना डे के स्वरों में ये गीत आपने सुना। सम्राट चंद्रगुप्त से हसरत जयपुरी ने लिखा था और कल्याण जी आनंद जी ने धुन बनाई थी। और अब आपको सुनवा रहे हैं न्यू दिल्ली फिल्म का ये गीत, लता मंगेशकर और साथियों का गाया हुआ गीत। लिखा है शैलेंद्र ने, सुरों में पिरोया है शंकर जयकिशन ने। ये है आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति। दीजिए राजुल को इजाजत, सुनते हैं ये सदाबहार नगमा।

0: की सहेली। सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। दीपा आपको भी मेरा नमस्कार।
1: सोनाली आपको और हमारी सभी सखियों सहेलियों श्रोता भाइयों को दीपा माहेश्वरी का हेल्दी नमस्कार।
0: और क्या हालचाल है?
1: बिल्कुल अच्छे। और आशा करते हैं कि हमारी सारी सखियां हमारे सभी श्रोता अपना और अपनी सेहत का और अपने परिवार का खूब अच्छा ध्यान रख रहे होंगे, क्योंकि बदलता मौसम है इस वक्त कुछ और एक्स्ट्रा ध्यान रखने की जरूरत है।
0: और झमाझम बारिश हो रही है तो बारिश का हम सभी लुत्फ उठा रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: जिन जगहों पर अभी बारिश नहीं आई है वे बारिश का इंतजार कर रहे हैं
1: और उनके लिए भी ये शुभकामना है कि जल्दी से उनके शहर में भी ये जो ठंडक हम जो एहसास कर रहे हैं उन्हें भी ये एहसास हो।
0: और ये ठंडक का एहसास है ना दीपा, ये तो इस मंच पर आते से ही हमें होने लगता है। भले ही कितनी भी चिलचिलाती गर्मी हो या बहुत ठंड हो या बारिश हो, यहाँ आने के बाद में जो सुखद अनुभूति मिलती है ना, उसका हम वर्णन नहीं कर सकते।
1: ये बात तो बिल्कुल 16 आने सही कही तुमने।
0: और जब सुखद अनुभूति कब मिलती है, जब हम अपने घर में पुराने फोटो के एल्बम लेकर बैठते हैं, कह रहे मैं पहले कैसे दिखती थी, कितनी सुंदर दिखती थी, मेरे बाल कितने लंबे थे, मैं कितनी सुंदर दिख रही थी, मेरे बच्चे कितने अच्छे दिख रहे थे, या फिर हमारा बचपन कितना खूबसूरत था। ये सब हम जब पुराने फोटो एल्बम देखते हैं ना, पुराने फोटो एल्बम देखना अपना एक अद्भुत अनुभव होता है।
1: बिल्कुल, और एक फिल्म से चल जाती है।

0: उस दिन को हम फिर से लगता है जैसे
1: जी लेते
0: जी
1: हैं।
0: लेते रहे जी रहे हैं, और वो वक्त उस वक्त क्या हुआ था कुछ बातें भी याद आ जाती हैं, और सभी लोग उस बातों को फिर याद कर करके खूब खुश होते हैं, और आनंद का जो आपस
1: क्षण
0: में
1: होता है।
0: क्षण होता है वो उसकी अनुभूति, उसका अनुभव ही कुछ अलग है। सोनाली,
1: साथ ही कहानी पद्मश्री की, इसके अंतर्गत हम तकदीदा बेगम कांथा कढ़ाई वर्क में जिन्होंने काम किया है, बहुत आगे बढ़ी है, तो उनके बारे में हम जानकारी देंगे।
0: और जो आजकल एक बात चली है कि बच्चों की शादी अपनी मर्जी से होना चाहिए या उसमें बड़ों की भी मर्जी शामिल होना चाहिए, सलाह उनकी शामिल होनी चाहिए या नहीं, ये इस बातों पे घर घर में बहुत सारी बातों पर विचार विमर्श चलते रहते हैं, जहाँ पे शादी योग्य युवक या युवतियाँ हैं उनके घरों में। तो हम भी कुछ जानेंगे कि कैसा होना चाहिए, बड़ों की सहमति या बड़े दिखाएं या बच्चे ही अपनी मर्जी बता दें, क्या सही है क्या गलत है उनके लिए, इस बारे पे थोड़ी विचार और विमर्श करेंगे।
1: देखिए, जो बदलता जमाना है ना, पुराने जमाने में थोड़ी छोटी उम्र में शादी हो जाती थी, तो उस वक्त माता पिता जो है वे उनके बारे में अच्छा ही सोचते थे। पर अब बदलते जमाने के नजरिए जो बच्चे हैं ना, थोड़ी बड़ी उम्र में शादी करते हैं, यानी 25, 26, 27, 28 के बाद में शादी करते हैं, तो उनकी राय जान लेना उतना ही जरूरी है, क्योंकि
0: जी
1: उन्हें एक साथ जिंदगी गुजारना होता है। तो इस विषय में हमारे श्रोताओं ने, हमारी सखियों ने बहुत सुंदर सुंदर कमेंट्स लिखे हैं, तो उनके हम कमेंट शामिल करेंगे, क्योंकि ये श्रोताओं का ही सेगमेंट है। मुझे कुछ कहना है, बच्चों की सहमति से हो शादी, है ना।
0: बिल्कुल
1: और साथ ही उपयोगी टिप्स अच्छी नींद के लिए, जो आजकल हम सभी को नसीब नहीं होती है। कुछ कुछ
0: ज्यादातर
1: खुशकिस्मत होते हैं
0: जी
1: जिन्हें बस ऐसे बिस्तर पर लेट गए और नींद लग जाती है, पर कुछ कुछ लोगों को बहुत जद्दोजहद के बाद नींद आती है।
0: जी तो
1: तो
0: इसके लिए भी बहुत जरूरी है कि भाई एक स्वस्थ नींद अगर मिलेगी तो स्वस्थ तन होगा, और उसके बाद आपका अगला दिन उसी तरह से स्वस्थ होगा, और साथ में तभी वो सकारात्मक हो सकेगा। तो आगे आने वाले दिनों के लिए या कल के लिए आज की रात सोना बहुत जरूरी है, वो भी एक गुड क्वालिटी स्लीप आपको मिलना चाहिए।
1: और आप क्या करना चाहिए, तो
0: गीत सुनना चाहिए।
1: सुनते हैं गीत।
2: सुर्खियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर

0: तो दीपा, बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम कहानी पद्मश्री की, इसके अंतर्गत आज हम जानकारी देंगे तकदीरा बेगम के बारे में।
1: जी, बंगाल की रहने वाली हैं ये। और सोनाली, आप तो जानती हैं कि बंगाल राज्य अपनी पारंपरिक और उत्कृष्ट कांथा कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें नक्शी कांथा, लेप कांथा, सुजनी कांथा, बेटन कांथा, ऐसे अलग अलग प्रकार के बहुत सारी शैलियां हैं। ये कला हमारे देश के प्राचीन विरासत का एक अभिन्न अंग है और बंगाल की विशेष पहचान।
0: बिल्कुल सही कहा आपने दीपा। नक्शी कांथा में पुरानी साड़ियों और कपड़ों को एक के ऊपर एक रखकर रंगीन धागों से जटिल कढ़ाई की जाती है, और इस कला में रनिंग स्टिचिंग या कंथा स्टिच का उपयोग करके सुंदर नक्शा यानी कलात्मक पैटर्न बनाया जाता है, और इसका उपयोग अक्सर रजाई, बेडशीट, पर्दे और अन्य घरेलू सामानों के लिए किया जाता है। खास तौर पर इन्हें साड़ियों पर भी उतारा जाता है।
1: बिल्कुल, और तकदीरा बेगम जो है नक्शी कांथा कढ़ाई की माहिर कलाकार हैं। उनका जन्म 1953 में पश्चिम बंगाल के परगना जिले में का एक छोटा इलाका है, नाम है श्री कृष्णापुर, वहाँ हुआ था। उनकी माँ घर पर बंगाल की जो पारंपरिक ये जो कांथा कढ़ाई है वो किया करती थी। अपनी माँ को काम करता देख तकदीरा को इस कला के लिए, जैसे एक होता है ना कि घर में एक कोई बड़ा आपका कर रहा है तो आपका भी प्यार उस कला की तरफ हो जाता है, तो स्वाभाविक सा हो गया कि तकदीरा का भी जो आकर्षण है इस कांथा कढ़ाई की ओर गया।
0: यानी ये कितनी अच्छी बात है ना कि जब हम कोई अच्छा काम बच्चों के इर्द गिर्द करते हैं तो बच्चों को भी उसमें अपने आप रुचि उत्पन्न हो
1: रुचि
0: जाती।
1: उत्पन्न होती है।
0: जी,
1: जी
0: और तकदीरा बेगम नक्शी कांथा कढ़ाई की माहिर कलाकार है। तो उनका जन्म तो आपने बता ही दिया कि 1953 में हुआ था, और बचपन में तकदीरा अक्सर स्कूल के बाद अपनी माँ के साथ कंथा कढ़ाई करती, और जिसमें वे रंगीन धागों से पारंपरिक डिजाइन बनाती। 12 या 13 साल की उम्र तक कांथा कढ़ाई की रचनात्मक दुनिया में उन्होंने प्रवेश कर लिया। देखिए, 12-13 साल की उम्र कितनी छोटी उम्र होती है
1: जी
0: ना।
1: बिल्कुल, मतलब उस वक्त तो समझ ही नहीं आता है, लेकिन ये कढ़ाई किया करती थी। और तकदीरा बेगम के पिता मूल रूप से श्री कृष्णपुर के निवासी ही थे, लेकिन बाद में वो जय कृष्णपुर चले गए थे। उन्होंने औस ग्राम के गर्ल्स स्कूल में 10वीं तक की पढ़ाई की थी। सिलाई और कढ़ाई में उनकी रुचि बहुत थी। 5वीं कक्षा से ही उन्होंने ये काम शुरू कर दिया। अपनी माँ की कांथा कढ़ाई से

0: होकर वे पारंपरिक शैक्षणिक विषयों से परे, यानी उनको शायद पढ़ाई में थोड़ा मन कम लगता होगा, अब जा करके वो सीधे सुई धागे की ये जटिल कला की ओर उनका आकर्षण बढ़ने लगा।
1: पिछले 30 वर्षों से तकदीरा ने अपना जीवन काथा कढ़ाई की कला को निपुणता प्रदान करने में समर्पित कर दिया है। बचपन के शौक के रूप में शुरू हुआ ये काम धीरे धीरे उनका जुनून और पेशा बन गया। स्कूल के दिनों में उन्होंने जो सिलाई कौशल हासिल किया था, उसी शिल्प ने उन्हें उनके उनके आजीवन सफर की नींव रख दी। यानी कितनी अच्छी बात है कि जो काम उन्होंने शौकिया तौर पर शुरू किया, उस शौक ने ही उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से
0: जी
1: सम्मानित कर दिया
0: बिल्कुल।
1: गया उन्हें। जी
0: और पिछले कई सालों से आप महिलाओं को अपनी सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधारने में बहुत उनकी मदद कर रही हैं। उनका मानना है कि पारंपरिक कलाओं के माध्यम से आर्थिक स्वतंत्रता हम महिलाएं पा सकती हैं, अपना जीवन भी बदल सकती हैं और साथ ही सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में भी हम मदद कर सकते हैं।
1: और उनका ये मानना था कि मैं कभी खाली नहीं बैठ सकती थी, मुझे काम करना हरदम पसंद था और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि सरकार ने मुझे पद्मश्री पुरस्कार के काबिल समझा और वर्ष 2024 में उन्हें भारत सरकार की ओर से पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
0: और कई सारे उनके इंटरव्यूज हुए तो उसमें से एक साक्षात्कार में उन्होंने ये भी किया, ये भी बताया था कि मेरी माँ ने कभी सोचा ही नहीं था कि वो अपनी इस कारीगरी से, इससे बने जो भी उत्पाद थे उससे पैसे कमा पाएंगी। उस समय हमारे परिवार में इसकी इजाजत भी नहीं थी, ये वो इस तरह से बताती हैं। लेकिन वह कढ़ाई में माहिर थी और उन्होंने मुझे कई दुर्लभ और जटिल डिजाइन सिखाए। मैं इस कढ़ाई को एक बड़े मुकाम तक ले जाना चाहती थी, ये मेरा सपना हुआ करता था।
1: और उनका ये मानना था दीपा कि भले ही कई लड़कियां काम करने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के लिए उत्सुक भी रहती हैं, लेकिन उनके घर से उनके पति उन्हें घर से बाहर निकलने ही नहीं देते। पर उनका ये कहना था कि उनके पति यानी तकदीरा बेगम के पति ने उन्हें भरपूर समर्थन किया और अपने दोस्तों को भी ऐसा ही करने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि वे अपनी पत्नियों को काम करने दें और उन्हें आत्मनिर्भरता बनने दें, आत्मनिर्भर होने दें।
0: बिल्कुल। अपनी लगन से तकदीरा बेगम देश की अनगिनत महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बन गई हैं। उन्होंने ये साबित कर दिया है कि दृढ़ संकल्प और कौशल से पारंपरिक कला न केवल जीवित रह सकती है बल्कि पीढ़ियों को सशक्त भी बना सकती है। ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने की उनकी 3 दशकों से अधिक की यात्रा चुनौतियों से तो बहुत भरी रही सुनाली, फिर भी इनके जो परिणाम है बहुत उल्लेखनीय निकले। इतनी सफलता उन्होंने हासिल की है और साथ में अपने सिर्फ खुद सफल नहीं हो रही हैं, खुद आत्मनिर्भर नहीं हुई, उन्होंने अपने साथ कई सारी महिलाओं को ये सफल राह दिखाई है।
1: यानी देखिए ना, उनकी एक कला के कारण कितनी सारी महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनी है, उन्हें उनकी आमदनी हो रही है। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि कोई भी कला है जो जो खुशियां तो देती है, पर ये खुशी उन्होंने अपने खुद तक सीमित नहीं रखी है बल्कि उनके कारण कितने सारे घरों में रोशनी आ रही है।
0: बिल्कुल। और ये जो आर्ट है काथा कढ़ाई, ये भी संरक्षित है आज भी, और ये तो इसमें साड़ियों में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है ये इस प्रकार की कढ़ाई।
1: तो श्रोताओं ने भी इस बारे में बहुत सारे कमेंट्स लिखे, हम वो बाद में पढ़ेंगे, पहले अभी क्या करें,
0: गीत सुनेंगे।
1: तो एक गाना सुनते हैं।
0: चलिए।
2: पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला फिर से तो

0: कुछ ऐसा ही होता है ना, जब हम पुरानी एल्बम या पुराना कोई अपनी कोई पुरानी तस्वीर हमारे हाथ लग जाती है घर सफाई के समय, तो लगता है कि वही फिर से वही बात कुछ फरमा दे, वही चीज हो जाए हमारा। हम कई बार ऐसे हंसी
1: हमारा
0: मजाक
1: चेहरा
0: में
1: वैसा
0: बोलते
1: ही
0: हैं,
1: हो जाए।
0: वैसा ही हो जाए, और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे वापस से उतने छोटे हो जाएं
1: हाँ,
0: जैसे उस वक्त थे जो हम तस्वीर में देख रहे होते हैं।
1: यानी उस वक्त मैंने थोड़ा कम लाड़ दुलार किया, अब वो
0: हाँ
1: ऐसे होते तो मैं और प्यार करती। उस वक्त मैं इतनी उलझनों में थी, इतने कामों में व्यस्त थी कि मैं अपने बच्चों को अच्छी तरह से खिला नहीं पाई, अच्छी तरह से उनका बचपन नहीं देख पाई। तो फिर से वो छोटे हो जाए तो मैं फिर से उन्हें खिला लूँ, है ना।
0: और एक दूसरा पक्ष भी हो सकता है कि उस दिन उसने बहुत ज्यादा बदमाशी की थी, तो उसे एक तो थप्पड़ उसे दे ही देना था, तो बाद में वो जिद करता ही नहीं।
1: वैसे दीपा, पुराने एल्बम हमारे जीवन की वो अनमोल धरोहर होते हैं ना, जिनमें केवल तस्वीरें नहीं बल्कि भावनाएं, रिश्ते और बीते समय की खुशबू संजोई रहती है।
0: बिल्कुल। और सोनाली, जब हम किसी पुराने एल्बम को हाथ में लेकर उनके पन्ने पलटते हैं, तो अब ऐसा लगता है जैसे समय हमें पीछे ले के जा रहा है और हम अपने ही पुराने दिनों को दोबारा मिल रहे हैं।
1: वैसे दीपा, एल्बम का जो हर पन्ना होता है ना, उसकी एक अलग कहानी होती है। और कहीं बचपन की शरारतें दिखाई देती हैं, तो कहीं माता पिता का स्नेह भरा चेहरा दिखाई देता है, कहीं परिवार के साथ बिताए त्योहारों के पल, कहीं दोस्तों के साथ हंसी मजाक की यादें, तो कहीं स्कूल के पिकनिक के फोटोज होते हैं। तो जो
0: हाँ
1: फोटोज,
0: बिल्कुल,
1: ये अनगिनत यादें होती है ना,
0: बहुत
1: और
0: सारी
1: कुछ
0: जी।
1: तस्वीरें तो ऐसी होती नहीं जो हमारे चेहरे पर मुस्कान लेकर आ जाती है, और कुछ आंखों को नम कर देती है।

0: बातें बिल्कुल सही कही तुमने कि कभी कभी एकदम ऐसा लगता है हाय वो दिन कहाँ गए, वो दिन फिर से हमारे लौट आए। और पुराने समय की तस्वीरों में एक अलग ही अपनापन होता है, तस्वीरें कम खींचा करते थे उस वक्त, इसलिए हर फोटो खास होती है और परिवार के सभी लोग एक जगह इकट्ठा होकर फोटो खिंचवाते थे। ये वो जमाना था, है ना, वो इंतजार, वो उत्साह और फिर एल्बम में तस्वीरें सजाने की खुशी। आज के हजारों मोबाइल फोटो से एक अलग ही अनुभव देती है। हमारे मोबाइल में भले ही ढेर सारे फोटो हो, हजारों में होते हैं,
1: जी
0: लेकिन जब हम एल्बम उठा करके बैठते हैं तो घर के भी जो सारे सदस्य होते हैं ना, कि वो कहते हैं अरे क्या देख रहे हो, हमें भी देखना है। और फिर उस पर वापस एक डिस्कशन, एक विचार विमर्श शुरू हो
1: और फिर
0: जाता है और
1: उस
0: फिर वो बातें
1: वक्त,
0: पता नहीं कहां
1: हाँ,
0: तक चली
1: और
0: जाती
1: उस वक्त अगर कोई घटना घटी होती तो उसे भी हम याद करके बहुत हंसते
0: है। बिल्कुल
1: हैं,
0: बिल्कुल सही कहा।
1: है ना, कि ऐसे हुआ था, ये हुआ था, है ना। एक हमारे सखी ने लिखा है, सच कहा, पहले के फोटो देखना बड़ा ही अच्छा लगता है। सच में पहले के फोटो और उनसे जुड़ी बातें जब याद आती है तो पल मानो उस समय में हमें वापस पहुंचा देते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, हमने पुराने फोटोज निकाले जिसमें हमारी बेटी बिल्कुल उनकी बेटी की तरह लगी। हमने तुरंत उसकी फोटो खींची और उसके साथ ही उसकी बेटी की भी अभी की फोटो डालकर बेटी को भेजा, तो इतनी खुश हो गई, सही में हम कितने सेम लग रहे थे, यानी कितनी
0: बिल्कुल।
1: सुंदर यादें, है ना।
0: और एक संदेश और कहता है सोनाली कि एल्बम हमें एहसास कराते हैं कि समय कभी ठहरता नहीं। जिन चेहरों पर कभी युवावस्था की चमक थी, आज उन पर अनुभव की रेखाएं हैं। कुछ लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन तस्वीरों में उनकी मुस्कान आज भी उतनी ही ताजा है। एल्बम के हर पन्ने से रिश्तों की गर्माहट, घर की खुशबू और बीते दिनों की मीठी जो एहसास है वो महसूस होते हैं। सच तो यह है कि पुराने फोटो के एल्बम केवल कागज पर छपी तस्वीरें नहीं, बल्कि जीवन की सबसे अनमोल पूंजी है।
1: एक साथी लिख कहते हैं कि सच में पुराने फोटोज देखकर तो दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। मुझे भी जिस दिन मन नहीं लगता उस दिन मैं भी अपने अपने बेटे के पुराने एल्बम निकाल कर देखती हूँ। क्योंकि मुझे शुरू से फोटोग्राफी का शौक रहा है तो मेरे पास अपनी या अपने बेटे के हर क्षण की फोटो है। जब मोबाइल नहीं था तब मेरे पर्स में हमेशा एक कैमरा रहता था, जहाँ जो अच्छा लगता था मैं फोटो ले लेती थी। यहाँ तक कि स्कूल में भी, वहाँ भी बच्चों की फोटो लेती थी, जिसकी वजह से मैं अपने स्कूल में सेल्फी मैम के नाम से जानी जाती हूँ। कितनी सुंदर बात।
0: बहुत सुंदर। और एक संदेश कहता है कि एल्बम के देखने की अनुभूति बेहद खास और भावनात्मक होती है। उस समय में पीछे जाने जैसा होता है, पुरानी यादें, चेहरे और पल आंखों के सामने सजीव हो जाते हैं। खुशी केवल तस्वीरों को देखने तक सीमित नहीं, बल्कि ये बीते हुए सुनहरे पल के एहसास को फिर से जीने का एक प्यारा माध्यम है। एल्बम पलटने से अपनों के साथ बिताए गए खास लम्हे, बचपन, शादी, छुट्टियां, त्यौहार, सब यादें ताजा हो जाती हैं।
1: एक साथी कहते हैं कि भाई मेरी तो 10th बोर्ड की जो है ना फॉर्म में लगाने वाली पासपोर्ट साइज फोटो है, उसे देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो तब बिल्कुल लड़की जैसा दिखता था। अभी मैं यहाँ पर अपलोड नहीं कर सकता, वरना मैं आपको वो फोटो जरूर दिखाता।
0: जी, कभी मौका लगेगा तो जरूर हम भी देखना चाहेंगे। और अब क्या करना चाहेंगे?
1: अब गाना सुनेंगे।
0: चलिए।

0: रिमझिम रिमझिम सावन की बरसात हो रही है, यानी सावन तो नहीं आया है अभी, पर बरसात ऐसी है कि मानो सावन आ गया है।
1: एहसास तो वही करा रहा
0: और
1: है
0: वो जो है ना
1: ना।
0: सुखद अनुभूति है ना, वो एल्बम देखने जैसी ही है। एक हमारे साथी ने लिखा है कि पुराने एल्बम के पन्ने पलटते ही यादों का कारवा चल पड़ता है। बचपन, परिवार, दोस्त और जीवन के अनमोल पल फिर से आंखों के सामने ताजा हो जाते हैं। और हर तस्वीर की एक कहानी होती है, जब दुनिया में नहीं उनकी यादें संजोए रहते हैं। शादी ब्याह की शरारतें, नाच गाना चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं। सचमुच पुराने एल्बम को देखना बीते हुए खूबसूरत पलों को एक बार जीने जैसा सुखद अनुभव मिलता है। और अब वक्त हो चुका है ब्रेक का, तो लेते हैं एक ब्रेक।
1: चलिए।

0: ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर है, कार्यक्रम है सखी सहेली, और हमारे बहुत सारे साथियों ने कमेंट्स लिखे हैं। तो एक हमारी सखी ने लिखा है कि एल्बम देखने की अनुभूति बेहद खास और भावनात्मक होती है, उस समय में पीछे जाने जैसा है जहां पुरानी यादें, चेहरे और पल आंखों के सामने सजीव हो जाते हैं। ये खुशी केवल तस्वीरों तक देखने तक सीमित नहीं है, बल्कि बीते हुए सुनहरे पल के एहसास को फिर से जीने का एक प्यारा माध्यम है। एल्बम पलटने से अपनों के साथ बिताए गए खास लम्हों, बचपन, शादी, छुट्टियों और त्योहारों की यादें ताजा हो जाती है। ये चेहरे पर मुस्कान लाने के साथ साथ आंखों में खुशी के आंसू भी लाते हैं। मैं तो बेटे के बचपन का फोटो पोते को दिखाती हूँ, और कभी कभी दोनों का फोटो लगाकर मोबाइल स्टेटस सोशल मीडिया पर लगाती हूँ। पोता फोटो को देखकर खूब खुश हो जाता है और पूछता है, दादी पापा भी मेरी तरह छोटा था। कितना मासूमियत भरा सवाल है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और इसी तरह से जब हम अपने यादों तक वापस उस गलियारों में जब हम गुजरते हैं तो मन प्रसन्न होता है, कहीं सकारात्मक एक धारा भी प्रवाह हो जाती है हमारे अंदर, और एक खुशी की जो लहर अंदर दौड़ पड़ती है, तो सब तरफ हर तरफ हमें अच्छा अच्छा और खुश खुश जैसा माहौल लगने लगता है। और एक माहौल और चल रहा है आजकल की, भाई शादी ब्याह जो है इतना जो नाजुक मसला होने लग गया है, इस पर सहमति तो परिवार की होती ही थी, पहले तो हुआ करती थी, अब बच्चों का सहमत होना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है।
0: यानी पहले बताया जाता था कि सब अच्छा है, और बच्चे जो होते थे उन्हें भी पूरा विश्वास होता था कि हमारे माता पिता कभी हमारा बुरा नहीं चाहेंगे, वो हमारा अच्छा ही चाहेंगे, और सब कुछ सोच के घर परिवार देख के पूरा

0: उनके दादा नाना नानी सारे लोग बैठ के पूरा इन्हें पूरा परिवार ही कहते हैं कि कुनबा ही इकट्ठा हो जाया करता था
1: जी
0: और फिर इस तरह से शादियां तय होती थी। पर अब समाज जो है बदल रहा है, अब बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहे हैं, उनकी भी इच्छाओं का हमें ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें किस तरह से, यानी हर किसी की अपेक्षा अलग होती है कि उन्हें ऐसा लगता है कि मेरा होने वाला पति ऐसा होना चाहिए जो मुझे समझे, मेरी
1: बिल्कुल
0: भावनाओं की कद्र करे, मैंने जो पढ़ाई की है उसे मुझे आगे बढ़ने का मौका दे, उसे उसमें हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन दे। वहीं पर लड़कों को भी अपेक्षाएं होती है कि जो लड़कियां हैं बराबरी से काम में हाथ बटाए और फिर खूब आगे बढ़ने में एक दूसरे का ये मिले,
1: मदद मिले,
0: मदद मिले,
1: बिल्कुल
0: सहयोग मिले।
1: कि हाँ एक की वजह से दूसरा आगे बढ़े और जो दूसरा है उसकी वजह से, मतलब पति पत्नी दोनों ही ये चाहते हैं कि हम एक दूसरे का सहयोग भी काम में भी करें, घर में भी करें, ये
0: घर में भी हाथ
1: एक्सपेक्टेशन,
0: बटाए,
1: हाँ
0: इन
1: ये
0: पुराने
1: वाली
0: जमाने में ऐसा
1: अपेक्षा
0: होता था कि लड़के घर में काम नहीं करते थे,
1: नहीं,
0: सिर्फ
1: ऐसा
0: लड़कियां
1: नहीं
0: ही
1: होता
0: काम
1: था।
0: करते थे।
1: हाँ लेकिन अब ये है कि आप अपने जो कार्य क्षेत्र हैं, ऑफिस है या व्यापार है, जब घर वापस आते हैं तो दोनों मिलकर अब घर रसोई सब कुछ देखते हैं, अपना काम देखते हैं, यहाँ तक कि काम बांट भी दिया जाता है। और इससे कोई गलत या बुरा नहीं मानना
0: जी
1: चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो अगर वो शहर में नहीं है, अपने माता पिता से दूर हैं, तो किस तरह से अपने सब चीज़ों का संयोजन बनाएंगे, बैलेंस से कैसे बनाएंगे अपने लाइफ में, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। इसी तरह से देखो बहुत सारे संदेश इस बात को लेकर आए हैं और बहुत अलग अलग विचार सामने आए हैं। तो ये पहला संदेश हम पढ़ रहे हैं। पुराने जमाने में माता पिता जो तय करें उनके साथ शादी हो जाया करती थी। उन दिनों लड़का लड़की एक दूसरे को देखे बिना छोटी उम्र में ही उनकी सगाई भी हो जाया करती थी। आज की तरह सगाई के बाद एक दूसरे से मुलाकातें भी नहीं हो सकती थी। उस वक्त साथ घूमने का तो सवाल ही नहीं होता था। आज लेकिन माहौल बहुत बदल गया है। लड़के के लिए 21 साल, लड़की के लिए 18 साल वैधानिक आयु होनी अनिवार्य हो चुकी है। माता पिता की मर्जी के बिना लड़का लड़की एक दूसरे की पसंद के अनुसार शादी कर सकते हैं। अब माता पिता का तो रोल सिर्फ आशीर्वाद देना ही रह गया है।
0: एक सखी ने लिखा है, विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं बल्कि दो परिवारों और दो जीवनों का मिलन होता है। माता पिता का अनुभव भी अमूल्य होता है, लेकिन बच्चों की इच्छा, उनकी भावनाएं और उनकी सहमति भी महत्वपूर्ण है। माता पिता बच्चों का मार्गदर्शन करें, उनके लिए योग्य जीवन साथी खोजने में सहायता करें, लेकिन अंतिम निर्णय बच्चों की इच्छा का सम्मान करते हुए ले। समय बदल रहा है, बच्चों की सहमति से होने वाला विवाह न केवल रिश्तों को मजबूत बनाता है बल्कि परिवार में प्रेम, सम्मान और खुशियों को भी स्थायी बनाता है।
1: बिल्कुल, वही एक और संदेश ये कहता है कि विवाह जीवन का एक महत्वपूर्ण निर्णय है, इसलिए इसमें बच्चों की सहमति और इच्छा का सम्मान आवश्यक है। माता पिता का अनुभव और मार्गदर्शन अमूल्य होता है, लेकिन जिस व्यक्ति को जीवन भर उस रिश्ते को निभाना है उसकी राय सबसे अधिक मायने रखती है। आपसी समझ, विश्वास, सहमति पर आधारित विवाह अधिक सुखद और सफल होता है। जब परिवार और बच्चों के विचारों का सम्मान करते हुए निर्णय लिया जाता है तो रिश्तों में अपनापन, सम्मान और विश्वास भी बढ़ता है।
0: एक सखी ने लिखा है कि बच्चों की सहमति से शादी। आजकल शादी का रिवाज बदल गया है, बच्चे अपने ही पसंद की शादी करना पसंद करते हैं। माता पिता को बस घर परिवार जिसको पसंद किया है उसको देखना होता है, बस माता पिता की मोहर लग जाती है। अगर माता पिता खुद से बच्चों के लिए जीवन साथी का चयन करते हैं तब भी यही स्थिति होती है। जब तक बच्चे आपस में एक दूसरे को समझ ना ले तब तक बात आगे नहीं बढ़ती, और जब तक बच्चों की सहमति नहीं होती तब तक माता पिता को रुकना होता है। पहले के समय माता पिता खुद ही पसंद करते थे, तब बच्चों की सहमति की जरूरत नहीं होती थी, पर आजकल इन बातों का ध्यान रखा जाता है।
1: एक संदेश कहता है कि आजकल जो माहौल हो रहा है और युवा पीढ़ी हाईली एजुकेटेड होने के बावजूद शादी ब्याह के पवित्र रिश्ते में कोई गलत कदम ना उठा ले, इसलिए जरूरी है कि शादी के लायक बच्चों की सहमति लेना बहुत जरूरी है। और सोने पे सुहागा वाली शादी का निर्णय होता है जब घर के बड़ों के माता पिता के तजुर्बों का भी सम्मान होता है, यानी कि सबकी सहमति सर्वश्रेष्ठ होती है।
0: और आप क्या करें।
1: अब हमारी सहमति तो ये है कि आप गीत सुनाएंगे तो हम बिल्कुल खुश भी हो जाएंगे।
0: चलिए सुनते हैं गीत।

0: बात चल रही है कि शादी हो सहमति से, यानी घर परिवार की तो सहमति हो ही, आजकल बच्चों का सहमत होना बहुत जरूरी है। एक्चुअली हमेशा से ही सबका सहमत होना बहुत जरूरी है, लेकिन अब जबकि एकल परिवार होने लगे हैं और बच्चे कई बार शादी के बाद तुरंत ही दूसरे शहर जहाँ पे कि वो काम कर रहे हैं वहां चले जाते हैं, ऐसे में अब उनके पास वो शादी ब्याह वाला अनुभव तो होता नहीं है, कैसे जीवन जिया जाना चाहिए वो अनुभव तो होता नहीं है। पहले घर में बड़े साथ में हुआ करते थे, तो कहीं पे पास में बातों में कहीं थोड़ी भी ऊंच नीच हो गई तो संभाल लिया करते थे, अब वो दोनों अकेले रहते हैं। ऐसे में अगर कोई एक गर्म मिजाज हो और एक कोई ठंडा हो तो बात कभी बन जाती है लेकिन कभी कभी बिगड़ भी जाती है।
1: इसलिए दोनों को शादी से पहले थोड़ी बातचीत करके एक दूसरे के स्वभाव को जान ले कि किस तरह से इन्हें कैसे पसंद है, उन्हें कैसे पसंद है, किस तरह से इन्हें जीवन साथी की जो अपेक्षाएं हैं वे फोन पर बात करके उन्हें पता चल जाता है कि लड़की क्या चाहती है कि कैसा हो उसका पति, और लड़का भी क्या चाहता है कि कैसा हो। तो ये अगर बातें अगर थोड़ी सी सुलझ जाए ना तो जिंदगी बहुत अच्छी सुंदर हो सकती है।
0: बिल्कुल
1: एक हमारी सखी ने लिखा है कि आज के आधुनिक जमाने में युवाओं की आपसी सहमति को शादी का सबसे प्रमुख और अनिवार्य आधार माना जाता है। कानून और सामाजिक बदलाव के अनुसार जब दो वयस्क आपस में शादी करना चाहते हैं तो उनकी सहमति सर्वोपरि होती है। भारतीय कानून के अनुसार बालिग हो जाने पर युवाओं को अपना जीवन साथी चुनने का पूरा अधिकार है। यदि दोनों वयस्क अपनी मर्जी से विवाह करते हैं तो उनकी सहमति ही कानूनी रूप से मान्य है। हमारे समाज में विवाह दो व्यक्तियों के साथ साथ दो परिवारों का भी मिलन माना जाता है। इसलिए लोग कहते हैं कि बच्चों को शादी का फैसला अपनी सहमति से जरूर लेना चाहिए, क्योंकि माता पिता के अनुभव और आशीर्वाद से रिश्ता अधिक मजबूत और सुरक्षित बनता है। माता पिता उसे परिवार से भी देख पाक रखकर इस तरह शादी का सहमति दे सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं, पर दबाव नहीं बच्चों पर। असहमति वाले दबाव वाले शादियों का नतीजा अच्छा नहीं दिख रहा। माता पिता अपने बच्चों का अच्छा ही चाहते हैं पर कभी कभी अपने इंसानी फितरत के चलते, अपनी ईगो के चलते कुछ गलत निर्णय ले लेते हैं और बच्चों पर डालते हैं, जिसका परिणाम किसी एक जो है नहीं दो परिवारों कई परिवारों को भुगतना पड़ सकता है। यानी
0: बिल्कुल
1: इस मामले में बहुत सोच समझ

0: कर हमें निर्णय लेना चाहिए।
1: जी। अच्छा, एक और संदेश आया है सोनाली, ये कहती है कि मेरी एक सखी है, उनकी बेटी की अभी हाल ही में शादी हुई है और उस शादी में हम सब ने बहुत आनंद लिया था, सब ने बहुत भरपूर आशीर्वाद युगल जोड़े को दिया था, लेकिन अब ये शादी में कहीं कुछ दिक्कतें दिखाई दे रही हैं, क्योंकि बेटी जो है वो डॉक्टर है और अब जहाँ वो ससुराल में गई है तो वहाँ ये उम्मीद लगाई जा रही है कि वो क्लिनिक छोड़कर घर का काम करें, घर शादी और इस रिश्ते को निभाने के लिए वो बच्ची वैसा कर भी रही है, लेकिन फिर भी समझदारी ज्यादा बड़ों में होनी चाहिए ऐसा हमारी सखी को लगता है। वो कहती है कि बच्चों पर भरोसा ही इस रिश्ते को आगे ले जाया जा सकता था। अब जब कारण सुन रहे हैं कि ससुराल वाले खुशी नहीं है, वो डॉक्टर है, घर में काम भी कर रही है, सब कुछ अपना जो करियर है उसको साइड में रखे हुए है, लेकिन मन में उन लोगों के फिर भी असंतोष रहता है, तो ऐसे में उन्हें ये लग रहा है कि थोड़ा सा हमें जांच पड़ताल, थोड़ी सी जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए थी, थोड़ा सा और समझ लेना चाहिए था, उसके बाद ही इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए था।
0: ये तो बात ऐसी होती है ना दीपा जी, कि ये सब बातें कहने

0: ऐसा होता है कि अभी हमने पढ़ाई लिखाई कर ली है और पढ़ाई लिखाई करने में हमने इतने वर्ष गवाए हैं, इतने सारे वर्ष हमने अपनी जिंदगी की उस पढ़ाई के लिए समर्पित किए हैं और उस पढ़ाई से ही हमारा घर चलने वाला है ना, पैसा मिलने वाला है, तो फिर क्यों ना करें नौकरी। नौकरी
1: बिल्कुल
0: करना बहुत अच्छी बात है। और कभी कभी ऐसा होता है कि एक उम्र के बाद यानी 40-45 के बाद में अगर घर के मुखिया इस दुनिया को छोड़ के चले गए यानी जीवन साथी नहीं रहे, तो उस वक्त जो महिला आती है ना उसके ऊपर बहुत बड़ी आपत्ति आ सकती है कि मेरे पास पढ़ाई है पर अनुभव नहीं है,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि बिना अनुभव के उस उम्र में कोई नौकरी नहीं देता है।
1: बिल्कुल। और आज के ज़माने में जहाँ इतनी तेज़ भागती दौड़ती ज़िंदगी चल रही है और हर जगह कंपटीशन इतना है, दोनों का काम करना
0: बहुत
1: अत्यंत
0: जरूरी है।
1: आवश्यक हो गया है। आपकी छोटी मोटी खुशियाँ, आपकी छोटी मोटी इच्छाएं भी, हम महिलाएं जो होती हैं, सारी महिलाओं के बारे में बात हो रही है कि हम आत्मनिर्भर होते हैं अपने पढ़ाई अपने शिक्षा की वजह से ही, तो हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। जो चाहे वो एक लड़की
0: ले
1: ले
0: सकती है,
1: सकती है,
0: अपनी
1: पा
0: इच्छा
1: सकती
0: पूरी
1: है,
0: कर
1: अपनी
0: सकती है।
1: इच्छा पूरी कर सकती है, न सिर्फ अपनी, वो परिवार की भी इच्छा पूरी
0: हाँ
1: कर
0: पूरी
1: लेती
0: कर
1: है।
0: सकती है,
1: और वो खुशी वो आनंद सिर्फ उस बच्ची को या उस महिला को नहीं होता, उस
0: पूरे परिवार
1: परिवार को
0: का।
1: होता है।
0: तो इसमें क्या होता है, दोनों खुश रहते हैं कि वो बाहर गई काम के लिए तो पति ने भी थोड़ा सा घर के काम में हाथ बटाया, उन्होंने
1: बिल्कुल
0: भी बाहर से गए अच्छे से पैसे कमा कर भी आ गए, पूरा घर खुशहाल रहेगा। बस थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होगी, थोड़ी सी एक दूसरे की तरफ समझेंगे, हम एक दूसरे से जुड़ेंगे तो ये रिश्ता और भी खूबसूरत होगा।
1: बिल्कुल,
0: और अब गाना सुन ले, एक
1: तो सफर और खूबसूरत हो जाएगा।
0: सुनते हैं।

0: आसमां तो झूम रहा है अभी, है ना।
1: आसमान भी झूम रहा है और गीत सुन के मन भी प्रसन्न हो रहा है।
0: मन प्रसन्न हो रहा है पर नींद तो नहीं आ रही दीपा।
1: अभी कैसे आ सकती है। अभी तो हमारी सखियां साथ में हैं भाई।
0: और पर नींद ऐसी है ना कि जब नहीं आना चाहिए तब आती है और जब आना चाहिए तब नहीं आती। बहुत बार ऐसा होता,
1: होता तो है,
0: है ना।
1: हाँ?
0: पर
1: और
0: नींद
1: ये
0: का ना सीधा सीधा संबंध हमारी मानसिक अवस्था पर भी होता है। कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि रात के समय सोशल मीडिया पे किसी से बहस हो गई कि या किसी से फोन पर बहस हो गई तो हमारी पूरी रात खराब हो जाती है।
1: उसके
0: तो
1: बारे में सोचते
0: सोच
1: हैं,
0: सोचते रहते हैं कि यार ऐसा क्यों
1: है
0: बोल
1: ना।
0: दिया, मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा, मैंने तो ये कभी नहीं चाहता हूं, फिर ये क्यों बोल दिया। इस तरह से होता है बहुत बार।
1: इसीलिए सोनाली, एक मानसिक स्वास्थ्य और हमारे अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छी और गहरी नींद बहुत आवश्यक है। और फिर अगर आप रात को चैन की नींद ना सोएंगे तो अगला दिन आपके जो है आपके काम में उसका असर दिखेगा, आप जो भोजन बना रही हैं उसमें भी असर दिखेगा, या
0: खाना
1: फिर आप चिड़चिड़े होंगे या आप बिना किसी कारण के घर में नाराजगी आपकी दिखाई देगी।
0: और ऐसा है ना, जो चेहरा होता है ना वो हमारा हमारे स्वास्थ्य का दर्पण होता है। कि हमारी नींद नहीं हुई तो हम सामने वाला बराबर पहचान लेगा कि आपकी आंखों में सूजन दिखाई दे रही है, आप ठीक से नींद नहीं ली है, आप
1: बिल्कुल।
0: हमेशा की तरह फ्रेश नहीं दिख रही है, आप थोड़ी चिड़चिड़ी नजर आ रही है, तो शायद आपकी नींद नहीं हुई है। और पूरा गुस्सा फिर वो बच्चों पर निकल सकता है, पतिदेव पर निकल सकता है, पतिदेव का गुस्सा पत्नियों पर निकल सकता है,
1: ऐसा अक्सर हो ही
0: होता
1: जाता
0: है
1: है
0: ना।
1: जब बहुत काम में प्रेशर में होते हैं हम, काम का दबाव बहुत ज्यादा होता है, या कुछ ऐसा घर में कोई त्योहार या शादी ब्याह का माहौल भी आता है ना, बहुत सारे काम होते हैं घर में और हम बिना छोटी सी बात पे ही, बात छोटी सी होती है और एकदम से हम नाराज हो जाते हैं या बोल पड़ते हैं कि क्या है, क्यों ऐसा कर रहे हो। वो इसलिए क्योंकि रात को, रोज रात को देर तक काम कर रहे हैं, सुबह जल्दी उठ रहे हैं, इस तरह के कभी 2-3 दिन तक भी अगर इस तरह की रूटीन हो जाती है तो देखिए आपके व्यक्तित्व में बहुत ज्यादा बड़ा बदलाव दिखने लग जाता है।
0: एक हमारे साथी ने लिखा है कि अच्छी नींद किसी दवा से नहीं बल्कि अच्छी दिनचर्या और शांत मन से आती है। ध्यान साधना, नियमित समय पर सोना, संतुलित भोजन, हल्का व्यायाम और तनाव कम रखने की आदतें नींद को गहरी और सुकून भरी बताती है। वहीं बहुत सारे साथियों ने कहा है कि स्क्रीन जो है, ये हमारा मोबाइल फोन है, इसको
1: बिल्कुल
0: सोने से 1-2 घंटे पहले दूर रख दीजिए।
1: बिल्कुल,
0: जब
1: बहुत जरूरी है
0: हम
1: क्योंकि इसमें से जो निकलने वाली ब्लू लाइट है वो हमारे दिमाग में मेलाटोनिन, जो वो हार्मोन जो कि नींद लाने वाला होता है, उसकी ये जिम्मेदारी होती है, तो इसका स्तर कम हो जाता है और उसी की वजह से नींद आने में दिक्कत होने लगती है और हमारा दिमाग एकदम अलर्ट रहता है, एकदम सतर्क हो जाता है, तब तक वो जो सोने की अवस्था आनी चाहिए वो पूरी अच्छे से आ नहीं पाती है।
0: एक हमारे साथी ने लिखा है कि नींद पर मैं ये बताना चाहता हूं कि कभी नींद से जागकर सुबह मजाक में सखी सहेली की सखी यानी कि मेरी धर्म पत्नी से ये गाकर सुनाता हूं, सारी सारी रात तेरी याद सताए, नींद ना आए मुझे चैन ना आए। और धर्म पत्नी तुरंत कहती, अजी छोड़ी, आप तो घोड़े बेच कर सोए थे, कोई उठाकर ले जाता आपको मालूम नहीं पड़ता। दोनों इस बात पर हंस लेते हैं। ये कितनी अच्छी बात है कि दोनों इस बात पर हंसते हैं, क्योंकि नहीं तो क्या होता ना, एक उम्र के बाद में लोग हंसना, मुस्कुराना, खिलखिलाना ही भूल जाते हैं।
1: बिल्कुल। और अगर आपकी ये हंसी बनी रहे और नींद अच्छे से आए, ये भी जरूरी है कि उसके लिए आप अपने खान पान की आदतों का भी ध्यान रखें, जैसे कि कैफीन से बचना बहुत जरूरी है दोपहर के बाद या शाम को, देर शाम को। कभी घर हम देर से आते हैं तो कहते हैं ना थोड़ी सी पहले चाय पी लेते हैं, वो चाय तो आप पी सकते हैं, कॉफी चाय जो भी आपको पसंद है वो पी सकते हैं, लेकिन उसका असर शरीर में कई घंटों तक रहता है। और बहुत जरूरी है कि हम हल्का डिनर खाएं रात के समय, रात का खाना बहुत भारी नहीं होना चाहिए, बहुत मसालेदार नहीं होना चाहिए, और उससे ज्यादा जरूरी सोने और खाने के बीच में कम से कम 2 से 3 घंटे का अंतर जरूर
0: रहना
1: होना
0: चाहिए।
1: चाहिए।
0: एक साथी ने लिखा है, अच्छी नींद के लिए मेडिटेशन करो, रात को जल्दी और हल्का खाना खाओ और मोबाइल दूर रखो, कमरे में अंधेरा हो, शांति हो, ठंडक हो, बेड आरामदायक हो तो नींद बढ़िया आती है। और जब गर्मियों का मौसम है ना, जैसे बहुत चिलचिलाती गर्मी थी, तब है ना एक नहा ले सोने से
1: बिल्कुल
0: पहले,
1: बिल्कुल।
0: नहा के ढीले ढाले सूती कपड़े पहने, और जब हम जिस चादर पे सोते हैं बिस्तर में, वो चादर एकदम सूती नरम मुलायम चादर हो, ऐसे डार्क कलर के पर्दे हो, तो नींद जल्दी से आ जाती है।
1: बिल्कुल। और आपने जो ये बात करी ना कि चादर नरम मुलायम हो, इसी तरह से आपका बिस्तर भी, जो गादी होती है वो और तकिया आरामदायक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें कहीं पे अगर रुई की है तो वो कहीं कहीं उसकी गठाने पड़ जाती हैं, उस तरह की नहीं होना चाहिए। वो बिल्कुल इस तरह हो कि वो शरीर को पूरी तरह से
0: आराम दे।
1: सपोर्ट दे और आराम दे।
0: और अब

0: हमारी एक सखी ये कहती है कि एक और जरूरी बात है कि सोने का एक समय बना लेना चाहिए। तो मैं भी समय पर अपने सारे काम निपटा लेती हूँ और बिस्तर पर आ जाती हूँ। उसके बाद कोई टीवी नहीं, कोई फोन नहीं, शांत होकर के आंखें बंद कर लेती हूँ। वो ये सलाह दे रही है कि आप भी इस नियम को 21 दिन करके देखिए और फिर देखिए कितनी अच्छी बढ़िया नींद आपको भी आएगी।
1: तो श्रोताओं के आज इतने सारे हमने सुंदर सुंदर कमेंट्स पढ़े, सारे श्रोताओं को दिल से धन्यवाद। आज सखियों के साथ, श्रोताओं के साथ बहुत आनंद आया और अब इजाजत लेने का वक्त आ चुका है। तो आप सभी को सोनाली पाठक
0: और दीपा माहेश्वरी का
1: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: हेलो दोस्तों, मौसम ले रहा है अंगड़ाइयाँ, पूरी हो रही है बरसात में भीगने की ख्वाहिश। विविध भारती के चाहने वालों की तमन्ना भी पूरी होगी, क्योंकि हम लेकर के आ गए हैं आपका पसंदीदा फोन इन प्रोग्राम हेलो फरमाइश। मैं हूं जयंत पात्रिकर और ये है आज का पहला कॉल। हेलो फरमाइश।
1: हाँ सर, नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: पवन कुमार सेन बोल रहा हूँ सर, गंडई पंडरिया छत्तीसगढ़ से।
0: बोलिए पवन कुमार जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे सर, आप लोगों के विविध भारती कार्यक्रम के दिन निमित्त श्रोता हूँ मैं, और बहुत अच्छा लगता है सर आप लोगों का जो कार्यक्रम है, आप लोगों का सुमधुर आवाज है, और इसी आवाज से हम दिल लगाए रहते हैं सर।
0: तो पूरा दिन भर आप सुनते हैं विविध भारती?
1: बिल्कुल सर, क्या समय समय में सुनता हूँ सर, मोबाइल के द्वारा काम में भी जाता हूँ, मिस्त्री लाइन के काम करता हूँ मैं।
0: मिस्त्री लाइन के मतलब?
1: तो मकान मिस्त्री का सर।
0: अच्छा अच्छा अच्छा
1: जी सर, मकान मिस्त्री का ठेकेदारी का काम करता हूँ, और रेडियो तो सर कई वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ सर मैं।
0: जो अपना काम करते हुए आप मोबाइल ऐप पे जो है विविध भारती
1: जी
0: सुनते?
1: जी सर।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, बोलिए पवन कुमार जी, क्या सुनना चाहते हैं आज?
1: आज एक बहुत ही सुंदर आपके केंद्र से गीत सुनना चाहूंगा सर, मोहम्मद रफी जी की आवाज में, भरोसा फिल्म का गीत सर, ये झुकी झुकी नैना ये लट बल खाती तो दिल क्यों ना मेरा दीवाना हो तेरा वाला गीत।
0: ये किसके लिए गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: इसमें सर मेरा खास एक परम मित्र परम दोस्त है पन्नालाल सेन जी, वहाँ तक पहुँचाना चाहता हूँ सर अपना फरमाइश अपने भाई पन्नालाल सेन तक।
0: कहाँ रहते हैं पन्नालाल जी?
1: बाग बहरा भदरसी रहता है सर, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है, अपने गंडई से कम 200 किलोमीटर आगे है सर उसका घर, और हमारा परम मित्र है सर वो।
0: अच्छा, इनका भी ये गाना पसंदीदा है?
1: बिल्कुल सर, उसी के अनुरूप तो मैं फरमाइश कर रहा हूँ सर आज।
0: जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए पवन कुमार जी। ये रहा आपकी पसंद का भरोसा फिल्म का गीत।

0: हेलो, फरमाइश।
1: हाँ, मैं राजस्थान जोधपुर से महबूब खान बोल रहा हूँ।
0: बोलिए महबूब खान साहब, कैसे हैं?
1: आज आपकी दुआ है कि सर, जैन पार्टनरशिप से बोल रहे हो आप?
0: जी जी जी
1: आपकी आवाज़ सुनता हूँ, आपका तो बहुत पुराना सुनता हूँ मैं, तो 50 साल से रेडियो स्टेशन सुन रहा हूँ।
0: क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। बताइए कौन कौन से प्रोग्राम सुनते रहे हैं पिछले 50 सालों में?
1: आओ, मैं सुनता हूँ ज्यादा, और आपकी फरमाइश, आलो फरमाइश।
0: जी जी
1: और काफी प्रोग्राम सुनता रहता हूँ।
0: और आपके पसंद के गाने कौन से होते हैं? पुराने गाने ज्यादा पसंद करते हैं आप?
1: पुराने गाने का शौकीन हूँ सर, मैं बहुत पुराने गाने की शौकीन हूँ सर। मैं मेरे दोस्तों के नाम ले सकता हूँ?
0: हाँ बिल्कुल।
1: ताज मोहम्मद जी, बरकत खां और अकबर खां और दिनेश भाई, कृष्ण राम जी, दारू भाई मेघवाल, हमारे दोस्त रेडियो श्रोता है, नियमित श्रोता है ये।
0: जी जी जी जी तो महबूब भाई, इन सारे दोस्तों को भी वही गाना पसंद है जो आप आज बताने वाले हैं?
1: हाँ जी हाँ जी, है हमारे बहुत दिल के करीब है ये गाना।
0: कौन सा गाना?
1: ये तुम्ही मेरी मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो,
0: खानदान फिल्म लगे। अच्छा जी
1: जी सर, नूतन सुनील जट फरमा है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए महबूब खान साहब। ये रहा आपके और आपके दोस्तों की पसंद का गीत।

0: हेलो, फरमाइश।
1: हाँ नमस्ते बंधुवर।
0: नमस्ते नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं गुलमंडी छत्रपति संभाजीनगर से जगन्नाथ बसे बंधु बोल रहा हूँ साहेब जी।
0: बोलिए बंधु साहब, कैसे हैं?
1: बस पात्रीकर जी, बस देखो हम यहाँ है और आप मुंबई के स्थित जगहों पर है।
0: जी
1: हम गुलमंडी से बात कर रहे हैं, आप मुंबई से बात कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है बहुत दिनों के बाद आपके ऐसे वार्तालाप हो रहा है।
0: बस ये जी, एक बात बताइए, आपके संभाजी नगर में अभी मौसम कैसा है? बारिश वारिश हो रही कि नहीं?
1: बहुत सुहाना है और वर्षा ऋतु का आगमन हो चुका है,
0: क्या बात है।
1: कुछ गर्मी से राहत महसूस हो रही है। मौसम ठंडा ठंडा है, हरियाला सावन छाया है, झाड़ तो ऐसे हल रहे कि मानो कि एसी की और पंखे की आवश्यकता ही नहीं है।
0: जी बिल्कुल, तो मुझे लगता है आज का आपका जो फरमाइशी गाना होगा वो भी ऐसा ही होगा
1: अरे
0: जो
1: साहब वो तो
0: मौसम की
1: गाना
0: बात
1: ऐसा
0: करे।
1: है, मैं बता रहा हूँ मौसम के हिसाब से है। ऐसा गीत मैं सुनना चाह रहा हूँ, 1943 में एक फिल्म बनी थी तानसेन, इसमें स्वयं कुंदनलाल सहगल साहब और
0: हाँ,
1: खुर्शीद ये कलाकार भी थे और गायक भी।
0: सहगल
1: अब तो
0: साहब।
1: बहुत कठिन है ऐसा कार्यक्रम होना, तो साहब फिल्म में इतनी चली थी है और इसके अंदर के गीत है खुर्शीद जी ने गाया है और केएल सहगल साहब ने गाया है और दृश्य इतना सुंदर है बंधु जी, मैं क्या बताऊं। ये फिल्म जितने बार भी देखे होंगे आपने या ना देखे होंगे तो देखना जरूर।
0: जी
1: क्या सुंदर अभिनय है कुंदन लाल सहगल साहब का और खुर्शीद का, स्वयं अभिनेत्री
0: जरूर
1: इनके रोल
0: जरूर।
1: है। घटा घन घोर घोर मोर मचाए शोर,
0: मोरे
1: मोरे
0: सज्जन
1: सजन आ
0: आ जा।
1: जाना। क्या गीत है, जितने बार सुनो ऐसा लगता है आग बंद करो और बैठ जाओ तो सब नए रम्य दृश्य हम बैठ के निसर्ग की सृष्टि में देख रहे हैं सुन रहे हैं। तो ये गीत सुनना हम पसंद करेंगे साहेब जी। और इसके जो है संगीतकार खेमचंद प्रकाश और
0: जी
1: गीतकार दीनानाथ मधोक।
0: बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सुनवा रहे हैं तानसेन फिल्म से ये गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार जयंत्री
0: नमस्कार।
1: जी आप ठीक हो?
0: बिल्कुल हम ठीक हैं, आप कैसे हैं?
1: बस मैं भी आपकी दुआ से ठीक हूँ और यही ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि विविध भारती की टीम जहाँ रहे खुश रहे सलामत रहे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बताइए आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: और हमारे लिए ऐसे ही प्रोग्राम सजा कर लाते रहिए जैसे आप सजा कर लाते हो।
0: जी, आपका नाम तो बताइए।
1: जी मैं श्रीनगर से बात कर रहा हूँ, साहिल।
0: और साहिल कैसे हैं?
1: बस बढ़िया हूँ सर।
0: और
1: श्रीनगर का मौसम तो बहुत ही अच्छा है आजकल, टूरिस्टों का भी रश लगा हुआ है और अमरनाथ यात्रा भी शुरू हो चुकी है।
0: जी, और बताइए विविध भारती से कब से है आपका जुड़ाव?
1: विविध भारती से जुड़ा है 2005 से सर।
0: अच्छा जी, 21
1: जी
0: साल हो
1: सर,
0: गए।
1: जी बिल्कुल।
0: तो उससे पहले क्या सुनते थे?
1: जब से होश संभाला है सर विविध भारती सुना है तब से।
0: अच्छा, सबसे ज्यादा आप क्या सुनते हैं, सिर्फ फिल्म के गाने या इसके अलावा भी कुछ?
1: मैं सबसे ज्यादा प्रोग्राम सुनता हूँ जो 4 बजे आता है पिटारा, उसमें हर दिन एक नया प्रोग्राम होता है सर। कभी सेलुलॉइड के सितारे, कभी डॉक्टर होता है, कभी कभार आप किसी सेलिब्रिटीज को लाते हो तो उनकी जो जिंदगी में उन्होंने किया होता है तो उनके बारे में हमें पता चलता है सर।
0: जी, और फिर हफ्ते में एक दिन हेलो फरमाइश भी आता है जिसके लिए
1: जी
0: आपने
1: बिल्कुल
0: कॉल
1: सर,
0: किया है।
1: बिल्कुल
0: बताइए क्या सुनना
1: बिल्कुल
0: चाहते हैं?
1: बिल्कुल। और आपने एक प्रोग्राम फिर से चालू किया है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मन चाहे गीत।
0: तो आपने खत
1: जी
0: भेजे
1: सर,
0: कि नहीं पंचायत गीत के लिए?
1: जी सर, मैंने खत भेजा है सर।
0: चलिए बताइए आज के लिए कौन सा गीत आपने
1: जी
0: सेलेक्ट
1: फिल्म का
0: किया?
1: नाम है डोली, आशा जी की आवाज में। आज मैं देखूं जिधर जिधर ना जाने क्यों उधर उधर, मुझे दो दो चार नजर आए आए
0: ओहो
1: मेहताब उधर मेहताब।
0: बढ़िया गाना है, आपको सुनवा रहे हैं डोली फिल्म का गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार
0: नमस्कार,
1: जी, मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से।
0: बोलिए राकेश जी।
1: मेरे बात में कॉल लग गया मेरा, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं आपके सभी प्रोग्राम को सुनता हूँ और आप जितने भी मेरे बात के प्रोग्राम आते हैं हेलो फरमाइश तो सुनते हैं और मन चाहे कि भी आपने शुरू किया वो भी अच्छा लगता है। सभी प्रोग्राम जो है हम विविध बात के सुनते रहते हैं।
0: बहुत अच्छा लगा जान करके। और राकेश जी ये बताइए, शिमला में क्या करते हैं आप?
1: शिमला में तो अभी हम तो घर पे रहते हैं और सेब की जो है बागवानी वो करते हैं। और अभी हमारे जो सेब के जो बाग है छोटे छोटे हैं, छोटे तो क्या है अभी तो सैंपल आ गए हैं, छोटे छोटे फूल आना शुरू हो गए हैं सेब के। और अब जो है जुलाई तक जो है हमारे सेब जो है पूरे भारत में तोड़ने के लिए आ जाएंगे।
0: अच्छा, साल में एक बार आते हैं
1: सेब
0: पेड़ों का
1: तो
0: फूल?
1: साल में एक बार आते हैं। और कहना चाहता हूँ कि जो आप तक जो सेब मिलते हैं और स्टोरेज की सेब जो है मिल जाते हैं तो तब जाके ये पूरे भारत में पहुंच जाते हैं। कई सेब जो होते हैं जो स्टोरेज की हो जाते हैं।
0: अच्छा, आपके बाग
1: तो
0: के सेब जो है वो कहाँ कहाँ तक जाते हैं?
1: हमारे सेब जो है हमारे स्थानीय मंडी में भी जाते हैं, अगर स्थानीय मंडी में ज्यादा होते तो फिर विदेश भी भेज देते हैं और बम्बई में भी इसकी जो है डिमांड ज्यादा रहती है, महाराष्ट्र और बम्बई में।
0: अच्छा, तो हम जो अब सेब खा
1: जी
0: रहे हैं उसमें हो सकता है कोई एक सेब आपके बाग से भी आया हुआ होगा?
1: बिल्कुल, क्योंकि सेब तो पता है क्या कैसी होती है, क्योंकि सेब तो कश्मीर से भी आते हैं और हिमाचल से भी आते हैं, लेकिन
0: जी
1: ये है कि कश्मीर से लेट आते हैं, हमारे हिमाचल के जो सेब होते हैं वो जल्दी आ जाते
0: जल्दी
1: हैं।
0: आ जाते हैं।
1: मैं
0: जी
1: कहना चाहता हूँ कि शिमला जो है एक पर्यटक
0: बिल्कुल
1: केंद्र भी है
0: बिल्कुल।
1: और हमारा कोटखाई क्षेत्र भी बहुत अच्छा है। और मैं कहना चाहता हूँ मैं छोटे से एक गांव में रहता हूँ, हमारे गांव का नाम है गुंडा और तहसील कोटखाई और बहुत अच्छा मतलब क्षेत्र है। मैं 400 लोग हमारे गांव में रहते हैं।
0: अच्छा जी, बताइए आज
1: जी
0: के प्रोग्राम के लिए
1: तो
0: आपने कौन सा गीत चुना है?
1: आज मुझे मोहब्बत मूवी का गाना सुना है और आईना बता कैसे ये

0: जी नमस्ते सर। जी
1: नमस्ते।
0: सर, मैं सारी कराची से बात कर रही हूँ, बिजौरा से। सर
1: बिजौरा, ये गांव कहाँ पर है आपका?
0: सागर के पास में पड़ता है, सागर मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं
1: और
0: जी।
1: सागर मध्य प्रदेश में सारिका राजपूत क्या करती हैं?
0: सर अभी तो कुछ नहीं करती, बस हाउस वाइफ हूँ, बच्चों को संभालती हूँ।
1: बहुत बड़ा काम है ये भी, और इसके साथ साथ घर का सारा कामकाज करते हुए आप रेडियो सुनती है ना?
0: जी सर, विविध भारती सुबह से चालू होती है तो 11 बजे रात में बंद होती है।
1: अच्छा, और इसमें से सुबह से लेकर रात तक कौन सा प्रोग्राम आपको ज्यादा पसंद है?
0: सर मुझे छाया गीत ज्यादा अच्छा लगता है, और आज के मेहमान, तत्काल सब सुनती हूँ मैं, हालू फरमाइश भी सुनती हूँ।
1: जी, चलो, बहुत अच्छा लगा जान

0: हेलो फरमाइश।
1: क्या लम्हों का इश्क नहीं सदियों की इबादत है? लम्हों का इश्क नहीं सदियों की इबादत है, कैसे करूं शिकायत हर सांस को तेरी चाहत है।
0: ओ हो, क्या बात है। और ये शेर कहने वाले हैं कौन? आप क्या नाम बताइए?
1: सर मैं उत्तर प्रदेश जिला रामपुर ग्राम खंडिया गेट कॉलोनी से अमरजीत बात कर रहा हूँ।
0: अमरदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। बताइए क्या सुनना चाहते हैं आज?
1: मैं गीत सुनूंगा, फिल्म का नाम रहेगा साजन, और इसमें जो गीत मैंने चुना है, देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार।
0: अच्छा जी, ये गाना आपने क्यों चुना? कोई खास बात है?
1: जी बिल्कुल खास बात है सर, ये गीत मुझे अच्छा लगता है और इसके वर्ड ऐसे हैं, अगर एक एक वर्ड को हम समझते हैं तो काफी अच्छा, दिल को सुकून देता चला जाता है।
0: चलिए तो फिर आपको सुनवाते हैं साजन फिल्म का गाना। अमरदीप जी।

0: हेलो फरमाइश।
1: जी नमस्कार, मैं पप्पू
0: नमस्कार
1: ठाकुर
0: जी,
1: कटिहार थाना जिला गोपालगंज बिहार से बोल रहा हूँ। भैया
0: बोलिए पप्पू जी, कैसे हैं?
1: जी अपना बताइए।
0: हम तो बहुत अच्छे हैं, बस श्रोताओं के बारे में जानना चाहते हैं। अलग अलग जगह से आप लोग
1: जी
0: फोन करते हैं, तो आपके
1: जी जी
0: इलाके में मौसम कैसा है? बारिश पड़ रही है?
1: जी सर, आज कितने दिनों के बाद से आज बारिश हुई है सुबह में। और मैं शहरी इलाका नहीं है, गांव का इलाका है हमारा, एक छोटा सा जिला है।
0: जी, पप्पू जी वहाँ गांव में आप क्या काम करते हैं बताइए।
1: गांव में सर मैं तो अभी बाहर गांव में काम करता था, अभी घर पे आया, 1 साल हो गया हमको। मैं दुबई, कतर और कांगो, एक अफ्रीका जगह है ना, वहां पे
0: जी
1: मैं काम किया है,
0: जी जी
1: मैकेनिक
0: जी
1: का काम मैं करता हूँ सर।
0: अच्छा, तो फिर अब पिछले
1: जी
0: साल भर से आप घर में हैं, तो यहीं अपना कुछ नया काम धंधा शुरू करने का इरादा है?
1: जी, हमारा एक सैलून का शॉप है, हमारे पिताजी चलाते हैं, तो कभी काल हम चले जाते हैं वहाँ पे। मेरा तो एक सपना था सर कि मैं कभी वेद भारती में मेरा कॉल लग जाए, हेलो फरमाइश में, उनसे मैं बहुत दिनों से ट्राई

0: करता था।
1: क्या बात है, आज सपना पूरा हो गया आपका।
0: बहुत खुश हूँ, मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि 2005-06 से जब रेडियो पे मैं सुनता था, हमारे बड़े पापा के पास एक फिलिप्स का रेडियो हुआ करता था छोटा वाला, उसको हम शॉर्ट वेव पे उसको सुना करते थे। उस समय से मैं वेद भारती को बहुत चाहता हूँ, बहुत चाहता हूँ, अभी भी सुनता हूँ, अभी मोबाइल पे सुनता हूँ मैं।
1: क्या बात है, मोबाइल ऐप डाउनलोड किया आपने?
0: जी जी, न्यूज एन आजर वाला,
1: बहुत बढ़िया है।
0: कोई भी ऐसा फरमाइश नहीं गया हो जो मैं नहीं सुना हूँ, ऐसा नहीं होता तो रिकॉर्डेड में मैं सुन लेता हूँ उसको।
1: बताइए पप्पू जी, आज के लिए आपने कौन सा गाना चुना है?
0: फिल्म का नाम है पत्थर के सनम, मनोज कुमार सर पे फरमाया गया है, वो गाना है पत्थर के सनम तुझे मैंने मोहब्बत का खुदा जाना, रफी साहब की आवाज में है।
1: चलिए, तो आपके जो कॉल लगने की खुशी हो रही है आपको, उसके और दुगना कर देते हैं। तो सुनिए अपनी पसंद का गाना पत्थर के सनम फिल्म से।

0: हेलो फरमाइश,
1: कैसे हैं आप सर?
0: हम अच्छे हैं। आप बताइए, आप कैसे हैं और अपना नाम बताइए पहले। कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं फहीम बोल रहा हूँ, श्रीनगर कश्मीर से।
0: फहीम भाई बोलिए।
1: जी सर, आज आपसे पूरे 2 महीने के बाद बात हो रही है। हम
0: जी जी जी
1: इंतजार में रहते हैं कि कब हमारे 2 महीने कंप्लीट हो जाएं और हम आपसे बात करें और विविध भारती के चैनल VBS पे अपने पसंद के नगमे सुनें।
0: जी जी बाकी पूरे देश
1: जी
0: में
1: सर,
0: तो गर्मी का मौसम खत्म हो के अब बारिश शुरू होने वाली है। बहुत लेट
1: जी
0: हालांकि आई है, मगर श्रीनगर में कैसा है मौसम?
1: श्रीनगर में इन दिनों थोड़ी सी गर्मी है। यहाँ पे 40 दिनों का एक समय होता है, 30 जून से लेकर जो है फुल मंथ जुलाई तक रहता है। उन 40 दिनों को हम कश्मीरी में बारात बोलते हैं।
0: अच्छा
1: बारात के समय यहाँ पे ज्यादा गर्मी होती है, और वैसे ही यहाँ पे 21 दिसंबर से लेकर फुल मंथ जनवरी तक 40 दिनों का एक और समय होता है, उसको हम कश्मीरी में चिलाई कलान बोलते हैं।
0: अच्छा
1: गर्मियों के 40 दिन बारात और सर्दियों के 40 दिन चिलाई कलान। ये 40 दिन 40 दिन जो है हमारे यहाँ पे बहुत स्पेशल होते हैं, गर्मियों के हिसाब से और सर्दियों के हिसाब से। तो अभी हम ऐसे समय में चल रहे हैं जो पे अभी हमें कुछ

0: है, और वैसे ही यहाँ पे 21 दिसंबर से लेकर फुल मंथ जनवरी तक 40 दिनों का एक और समय होता है, उसको हम कश्मीरी में चिलाई कलान बोलते हैं।
1: अच्छा,
0: गर्मियों के 40 दिन वहरात और सर्दियों के 40 दिन चिलाई कलान, ये 40 दिन 40 दिन जो ना हमारे यहाँ पे बहुत स्पेशल होते हैं गर्मियों के हिसाब से और सर्दियों के हिसाब से। तो अभी हम ऐसे समय में चल रहे हैं जो पे अभी हमें कुछ ही दिन हुए हैं वहरात में चल रहे हैं, तो अभी कुछ दिनों के बाद बच्चों की स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में छुट्टी रहेगी।
1: अच्छा, तो ये बहरात में क्या कुछ खास कुछ रवायत होती है, कुछ त्योहार होते
0: बारात
1: हैं?
0: के समय में जी जी त्योहार भी होते हैं बहुत सारे। बारात के समय में यहाँ पे ज्यादा गर्मी होती है, बच्चों को सब छुट्टियाँ मिलती है, तो हम कश्मीरी लोग भी जैसे आपके वहाँ पे आते हैं घूमने, हम भी यहाँ पे
1: जी
0: घूमने निकलते हैं बच्चों के साथ। तो बारात के समय हमें जो है ना यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ज्यादा ठंड ही रहती है, मौसम ठंडा ही रहता है, तो अभी हम गर्मियों को इंजॉय कर रहे हैं बारात के समय फैमिली के साथ,
1: फिर
0: फ्रेंड्स
1: भी
0: के साथ।
1: आपकी नज़र से
0: हाँ
1: वो
0: जी
1: गर्मियां हैं, मगर फिर भी एवरेज टेम्परेचर तो वहाँ 20 से कम ही रहता होगा।
0: हाँ जी हाँ जी, नॉर्मली 25-30 तक हो जाता है, और जिस दिन 30 होता है उसी शाम बारिश भी आती है, ये हमारे यहाँ पे स्पेशल एक बात है। जिस
1: हो
0: दिन
1: अच्छा,
0: 30 होता है तो उसी शाम हल्की सी बारिश भी आती है, अगले
1: जी
0: दिन फिर से वही नॉर्मल 25-27 तक जाता है।
1: जी मुल्क के दूसरे इलाकों के लोग घूमने जाते हैं श्रीनगर, मगर श्रीनगर के रहने
0: हाँ जी
1: वाले
0: हाँ जी,
1: कहाँ जाते हैं घूमने? आप कहाँ आते हैं पूरे देश में?
0: हमारे यहाँ पे स्पेशली कुछ जगहें हैं कश्मीर में ही है, दूध पथरी नाम की जगह है, वहाँ पे हम जाते हैं, सोनमर्ग भी जाते हैं, पहलगाम भी जाते हैं,
1: नहीं
0: गुलमर्ग भी जाते हैं।
1: नहीं वो तो है, आपके यहाँ आप कश्मीर की बात कर रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप जब घूमने निकलते हैं तो आपकी ख्वाहिश क्या होती है कि देश के किस इलाके में जाए, क्या देखें?
0: हम ज्यादातर पसंद करते हैं एक तो बैंगलोर जाना, और दूसरा जो है ना हमारा थोड़ा मुंबई भी जाते हैं, और केरला भी जाते हैं यहाँ के लोग, और कोलकाता भी जाते हैं। देश के बहुत सारे, सबका टेस्ट अलग अलग है,
1: जी,
0: बहुत सारे लोग यहाँ से जाते हैं, जब आउट ऑफ स्टेट जाते हैं तो इन्हीं जगहों पे जाना पसंद करते हैं। गोवा भी जाते हैं यहाँ से काम
1: चलो
0: के सिलसिले में भी और घूमने के सिलसिले में भी।
1: वाह वाह, बड़ा अच्छा लगा जान करके। और आपने टेस्ट
0: हाँ जी
1: सबका अलग होता है कहा, तो ऐसे ही म्यूजिक का टेस्ट सबका अलग होता है ना? तो
0: हाँ
1: अगर
0: जी
1: फिल्म म्यूजिक की बात की जाए, फिल्म संगीत की बात की जाए, तो आपका टेस्ट कैसा है, क्या सुनना चाहते हैं आप?
0: मैं दोनों नगमे पसंद करता हूँ, पुराने भी सुनते हैं नए भी सुनते हैं, लेकिन अभी का जो ये हमारा अभी ट्रिप चल रहा है, हम भी घूमने निकले हैं,
1: जी,
0: तो मुझे एक वीर ज़ारा का नगमा बार बार याद आ रहा है, ये हम आ गए हैं कहाँ, लता मंगेशकर और उदित नारायण जी की आवाज़ में, ये बहुत ही प्यारा नगमा है। तो मैं यही हम अपने विविध भारती के चैनल पे सुनना चाहेंगे, और साथ में जितने भी लोग अभी सुन रहे हैं जो अभी घूमने निकले हैं, वो कश्मीर के नज़ारे देख कर यही बोल रहे होंगे आपस में, अरे यार ये हम आ गए हैं
1: आ गए हैं
0: कहाँ।
1: कहाँ, क्या बहुत
0: जी
1: ही प्यारा गाना है। बहुत बहुत धन्यवाद इस गीत को चुनने के लिए, और आपको हम सुनवा रहे हैं वीर ज़ारा फिल्म से यही गीत।

0: हेलो, फरमाइश।
1: गांधी पार्क मनपुरा जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से सर जी मनोज नामदेव।
0: मनोज नामदेव जी, कैसे हैं?
1: बस सर बढ़िया है, जब आपका आशीर्वाद है भगवान कृपा से मैं बहुत बढ़िया हूँ सर।
0: बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं हैं और ऊपर वाले का, भगवान का आशीर्वाद है, उसी की दुआ से सब कुछ चल रहा है ना।
1: बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हो।
0: और मनोज नामदेव जी, आपका कामकाज कैसा चल रहा है?
1: जी जी बिल्कुल सर, कामकाज बढ़िया चल रहा था। मैं अपने शॉप पर काम कर रहा था और फोन लगा रहा था, एक हाथ से काम कर रहा था तो लगाते लगाते लग गया फोन। और कहें कि सर आकाशवाणी मुंबई सर इतना अपार प्रेम हो चुका है सर, इतना अपार प्रेम हो चुका है कि रह ही नहीं सकते जी। कहो सर।
0: कौन सा प्रोग्राम सुने बगैर नहीं रह सकते?
1: सर जी आपके सारे कार्यक्रम सुनते रहते हैं, सुबह से रात 11 बजे तक आपका कार्यक्रम बराबर सुनते हैं सर।
0: जी, तो सुबह से लेकर
1: और
0: रात तक अलग
1: यस
0: अलग इरा के गाने हम बजाते हैं, अलग अलग युग के गाने बजाते हैं, है ना, पुराने
1: बिल्कुल
0: हैं।
1: सर। और सोमवार को आता है कार्यक्रम सेहतनामा,
0: जी
1: और
0: जी जी
1: शनिवार को और रविवार को आपका मनचाहे गीत। इतना अच्छा कार्यक्रम लगता है सर, इतना
0: जी
1: अच्छा कार्यक्रम कि मेरे पास धन्यवाद देने के लिए शब्द नहीं है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद हम देते हैं आपको, और जान के हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि इतना आप पसंद करते हैं विविध भारती के अलग अलग कार्यक्रमों को। और अब ये उत्सुकता है कि आज के इस कार्यक्रम के लिए आपने किस गीत की फरमाइश लिख रखी है अपने डायरी में?
1: बिल्कुल सर, डायरी में लिख रखी है, मूवी का नाम है विजय पथ और गाने की बोल रहेंगे, आइए आपका इंतजार है।
0: तो आपका इंतजार खत्म करते हैं और आपकी पसंद का गाना आपको सुनवाते हैं।

0: दोस्तों ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लगी है उनसे हमारा गर्वबद्ध निवेदन है कि आगामी 2 माह तक हमें कॉल ना करें ताकि अन्य श्रोताओं को इसमें सहभागिता का अवसर प्राप्त हो सके। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार को दिन में 11 बजे से। इसके लिए हमारा फोन नंबर नोट करें, हमारा नंबर है 02228670288 और दूसरा नंबर है 02240024662। फोन नंबर एक बार फिर नोट करें 02228670288 और दूसरा नंबर है 02240024662। चलते चलते हम आपको ये भी बता दें कि आज का सफर आपने तय किया जयंत पात्रिकर के साथ, रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंधल और किरण बंग, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुरलेकर का और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती।

प्रस्तुत है छाया गीत। सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। सामिन, आग की त्रासदी है कि वो हमें झुलसा देती है। हाँ, आग का क्या है, पल दो पल में लगती है और बुझते बुझते एक जमाना बीत जाता है। हम ता उम्र किसी आग में जलते रहते हैं, नफरत की आग या फिर प्रेम की अगन। धुआं धुआं सा लग रहा है इन दिनों, धुआं धुआं सा लग रहा है इन दिनों, लगता है किसी का इश्क जल रहा है इन दिनों।

कहते हैं नफरत आग लगा देती है और प्रेम की एक बूंद बड़ी से बड़ी आग बुझा देती है। जिनके दिलों में नफरत होती है उनकी जुबां सिर्फ आग ही उगलती है और ये आग सिर्फ धुआं ही छोड़ती है। धुआं दर्द बयां करता है और राख कहानियां छोड़ जाती है।

हमारा प्यार जैसे जंगल की आग था, और कहते हैं अगर इश्क की आग दिल में लगी हो तो सुकून कभी मिलता नहीं है। अब आग को अच्छा या बुरा नहीं कहा जा सकता। चूल्हे में लगी आग खाना पकाती है और पेट की आग को शांत करती है, लेकिन यही आग जब रिश्तों में लग जाए तो घर जलकर खाक हो जाते हैं। यानी आग का अपना एक गुण है, आग ठंड में राहत देती है और यही आग गर्मी में झुलसा देती है। ये सीने की आग है साहेब, यहां पानी का क्या काम। ये सीने की आग है साहेब, यहां पानी का क्या काम। किया हमने महज इश्क ही तो था कमबख्त, किस्मत ही निकली बेईमान।

इस कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। आग, जी हाँ आग, कुछ नहीं बोलती। वो अपने को समेट कर चुपचाप माचिस की डिबिया में पड़ी होती है, पर कभी कभी ना राख उड़ती है ना उठता है धुआं। कुछ रिश्ते बस चुपचाप जला करते हैं। हालांकि खुद को अगर हमने परिश्रम की भट्टी में झोंक दिया तो हीरा बनकर बाहर निकलते हैं, यानी ये आग आपको जलाकर खाक भी कर सकती है और यही आग कांच को हीरा भी बना देती है।

ये आग की बात है, तूने ये बात सुनाई है। ये जिंदगी की वो ही सिगरेट है जो तूने कभी सुलगाई थी। कहते हैं आँच केवल आग में ही नहीं पाई जाती, कभी एकांत में स्वयं के भीतर के तापमान को जांच कर देखना। भीतर का मौसम भभक रहा होता है कई बार, और मन उस आँच में सिकता रहता है, धीरे धीरे धीरे धीरे। इन दिनों मौसम जैसे धुआं धुआं सा है, हर तरफ एक आग और फुगा सा है।

आग को साधते हुए कई बार आग से खेल जाते हैं हम, और यही है वो आग, सना है जिसका ताप जीवन की खुशबू से, हाँ लक्षित नहीं होता है जीवन के ठंडे और धूसर राख भरे अवसाद के नीचे। हमारे भीतर भी एक आग बची होती है और इसी आग में प्यार और नफरत सिकते रहते हैं। इसी आग में जलते हैं सपने, ख्वाबों का जंगल भी इन्हीं लपटों से झुलस जाता है, और जंगल में फैली ये आग जल्दी बुझती भी तो नहीं।

0: तो क्या है ये दुनिया, अगर मिल जाए तो क्या है।
1: और अब छाया गीत समाप्त करने की मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।
2: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
3: चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के।
2: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
4: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी यहाँ प्रोग्राम चार दिल्ली से आए।
2: संगीतकार रवि,
4: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम डोरियाँ रिकॉर्ड करना चाहते, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुना के, दो लाइन, चंदा मामा दूर के हुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के हुए पकाए दूर के।
3: आप खाए थाली में, खुन्ने को दे प्याली में।
2: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
1: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का छिंदवाड़ा केंद्र है। शाम के 5:30 हुए हैं। हमारे युवा साथी सुने उनका अपना कार्यक्रम

स्वागत करती हूँ आपके अपने कार्यक्रम युववाणी में। दोस्तों, खेल केवल मैदान पर खेले जाने वाले मुकाबले नहीं होते, बल्कि वे मेहनत, अनुशासन, संघर्ष और टीम भावना की कहानियाँ भी अपने साथ लेकर चलते हैं। कोई खिलाड़ी वर्षों की मेहनत के बाद एक पदक जीतता है, कोई टीम कठिन परिस्थितियों में जीत हासिल करती है, और लाखों दर्शक उन पलों के साक्षी बनते हैं। लेकिन इन कहानियों को देश दुनिया तक पहुंचाने का काम कौन करता है? कौन है जो मैदान और दर्शकों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी बनता है? इसका जवाब है खेल पत्रकारिता। और इसी संदर्भ में आज की बात का विषय होगा खेल पत्रकारिता और निष्पक्ष रिपोर्टिंग का महत्व। दोस्तों, हर साल जुलाई के पहले सप्ताह में विश्व खेल पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य खेल पत्रकारिता के महत्व को समझना और उन पत्रकारों के योगदान को सम्मान देना है जो खेल जगत की घटनाओं को निष्पक्ष और जिम्मेदारी के साथ लोगों तक पहुंचाते हैं। एक अच्छा खेल पत्रकार केवल स्कोर या परिणाम नहीं दिखाता, बल्कि वो उन मेहनत, संघर्ष और समर्पण की कहानियां भी सामने लाता है जो किसी खिलाड़ी की सफलता के पीछे छिपी होती हैं। किसी खिलाड़ी की यात्रा, उसकी चुनौतियां और उसकी उपलब्धियां समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बनती हैं। दोस्तों, खेल पत्रकारिता में निष्पक्षता का बहुत महत्व है। एक पत्रकार का किसी टीम या खिलाड़ी का पक्ष लेना नहीं, बल्कि तथ्यों और घटनाओं को संतुलित और जिम्मेदारी के साथ प्रस्तुत करना होता है। निष्पक्ष रिपोर्टिंग दर्शकों के विश्वास को मजबूत करती है और खेल भावना को भी बढ़ावा देती है। आज के डिजिटल दौर में जानकारी बहुत तेज़ी से फैलती है। ऐसे समय में सही, प्रमाणित और जिम्मेदारी के साथ जानकारी देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। खेल पत्रकारिता केवल बड़े अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट तक सीमित नहीं है, बल्कि ये स्थानीय और ग्रामीण स्तर की प्रतिभाओं को भी पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत में खेलों को बढ़ावा देने के लिए कई स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। खेलो इंडिया अभियान के माध्यम से युवाओं को खेलों के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। राज्यों में भी खेल अकादमियां, प्रशिक्षण केंद्रों और प्रतियोगिताओं के माध्यम से प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का अवसर दिया जा रहा है। ऐसे में खेल पत्रकारिता की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है, क्योंकि यही माध्यम नई प्रतिभाओं को समाज के सामने लाता है और युवाओं को प्रेरित करता है। दोस्तों, खेल हमें जीत और हार दोनों को स्वीकार करना सिखाते हैं, और पत्रकारिता हमें निष्पक्षता और जिम्मेदारी का महत्व समझाती है। जब खेल और पत्रकारिता दोनों अपनी मूल भावना के साथ आगे बढ़ते हैं, तब समाज को प्रेरणा, विश्वास और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। दोस्तों, ये तो थी हमारी आज की बात। चलिए कार्यक्रम में अब आगे बढ़ते हैं और पहले सुन लेते हैं एक गीत जो हमने लिया है फिल्म तमाशा से। गायक है अलका याग्निक, अरिजीत सिंह, शब्द हैं इरशाद कामिल के और संगीत है AR रहमान का।

0: वात रोग, उदर रोग, मूत्र रोग, चर्म रोग, मानसिक रोग, श्वास रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, स्त्री रोग के इलाज हेतु विभिन्न पंचकर्म विधियों व आयुर्वेदिक दवा का प्रयोग आज ही संपर्क करें डॉक्टर निधि जैन, आदिवासी संग्रहालय के सामने छिंदवाड़ा। कॉल करें 9794543985।
1: दोस्तों,

पिछले सप्ताह के प्रश्नों के उत्तर। पिछले सप्ताह हमारा पहला प्रश्न था, ड्रिप इरिगेशन से क्या बचता है, जिसका सही जवाब है पानी। दूसरा प्रश्न था, हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई, जिसका सही जवाब है 1 मई 1910। हमारा तीसरा प्रश्न था, किस गैस को लाफिंग गैस कहते हैं, जिसका सही जवाब है नाइट्रस ऑक्साइड। हमारा अगला प्रश्न था, ब्लू व्हेल किस वर्ग की सबसे जीवित प्राणी है, जिसका सही जवाब है स्तनधारी। हमारा पांचवा प्रश्न था, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था, और इसका सही जवाब है तांबा। हमारा छठवां प्रश्न था, कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड क्या कहलाता है, जिसका सही जवाब है मदरबोर्ड। और हमारा अंतिम प्रश्न था, हाल ही में चर्चा में रही कादियान व्यास रेलवे लाइन परियोजना किस राज्य से संबंधित है, जिसका सही जवाब है पंजाब से। आइए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं इस सप्ताह के सवाल। हमारा पहला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति का श्रेय किसे दिया जाता है। प्रश्न फिर से सुनिए। हमारा पहला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति का श्रेय किसे दिया जाता है।

हमारा दूसरा प्रश्न है, पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? प्रश्न दोबारा सुनिए, पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? तीसरा प्रश्न नोट करें, फ्लाइंग सिख के नाम से कौन प्रसिद्ध है? फ्लाइंग सिख के नाम से कौन प्रसिद्ध है?

अगला प्रश्न नोट करें, महादेवी वर्मा किस हिंदी साहित्य के युग से जुड़ी हुई हैं? महादेवी वर्मा किस हिंदी साहित्य के युग से जुड़ी हुई हैं?

हमारा अगला प्रश्न है, सबसे हल्की गैस कौन सी है? प्रश्न दोबारा सुनिए, सबसे हल्की गैस कौन सी है? दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? और अब हमारा अंतिम प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? मैं प्रश्न दोहराती हूँ, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है?

फ्लाइंग सिख के नाम से कौन प्रसिद्ध है? हमारा चौथा प्रश्न है, महादेवी वर्मा किस हिंदी साहित्य के युग से जुड़ी हुई हैं? हमारा पांचवा प्रश्न है, सबसे हल्की गैस कौन सी है? छठवां प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? और हमारा अंतिम और सातवां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? दोस्तों, इन प्रश्नों के उत्तर आप हमें इस नंबर पर भेज सकते हैं 860-22-622-63 या आप हमें इस पते पर अपने सवालों के जवाब भेज सकते हैं, क्रम सात सवाल द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी केंद्र कुकड़ा हिल्स छिंदवाड़ा 48001।

दोस्तों प्रश्न एक बार फिर से सुनिए। हमारा पहला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति का श्रेय किसे दिया जाता है? हमारा दूसरा प्रश्न है, पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? हमारा तीसरा प्रश्न

0: जी सुनो, कल चौपाल में सरपंच की बहू बता रही थी उनका तेल 15 दिन में खत्म हो गया।
1: अरे भाग्यवान, हमारी रसोई में शिखर गोल्ड सोयाबीन तेल है। ये कम खर्च होता है इसलिए ज्यादा चलता है, पूरा महीना आराम से निकल जाएगा।
0: मतलब महंगाई में भी बचत
1: और स्वाद भी बढ़िया, सेहत का भी ध्यान।
0: वाह, इतनी खूबी।
1: शिखर गोल्ड सोयाबीन तेल अब आपके नगर की सभी किराना दुकानों पर उपलब्ध।
2: बूंद बूंद में शुद्धता, शिखर गोल्ड तेल।
3: दोस्तों कार्यक्रम अल्फाज हैं जावेद अख्तर के।

दोस्तों, कार्यक्रम में अगला गीत हमने लिया है फिल्म वीर ज़ारा से। गायक हैं उदित नारायण, शब्द हैं जावेद के और इस गीत को संगीत से सजाया है मदन मोहन ने।

दोस्तों, कार्यक्रम के अंत में अब आखिरी गीत हमने लिया है फिल्म कलयुग से। राहत फतेह अली खान की आवाज में ये गीत, जिसमें शब्द हैं सैयद कादरी के, और इस गीत को संगीत से सजाया है रोहेल हयात और फैजल अली ने।

दोस्तों अब समय है आज के इतिहास जानने का। 2 जुलाई 1897 को महान वैज्ञानिक और रेडियो संचार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले इटली के वैज्ञानिक गुगलियो की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की थी, जिन्हें आगे चलकर आधुनिक रेडियो संचार की नींव को मजबूत किया। आइए जान लेते हैं कल के आकर्षण। दोस्तों कल की युववाणी में हम चर्चा करेंगे डिजिटल सेवाएं और नागरिक सुविधाओं का विस्तार विषय पर, साथ ही होगा क्रम रोजगार सूचना और फिल्म संगीत। इसी के साथ होगा आज का इतिहास, कल के आकर्षण और अमृतवाणी। और अब कार्यक्रम के अंत में आइए जान लेते हैं आज की अमृतवाणी। हर दिन जिंदगी हमें एक खाली पन्ना देती है, उस पर क्या लिखना है ये हमारे व्यवहार, हमारी सोच और हमारे कर्म तय करते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि दिन के अंत में आपके हिस्से में संतोष हो और किसी और के हिस्से में आपकी वजह से मुस्कान। इसी के साथ आज का युववाणी समाप्त होता है। अब अपनी दोस्त स्वाति चौरसिया को दीजिए इजाजत। जय हिंद, शुभ संध्या।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवाणी। हम आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। अब सुनिए कार्यक्रम संजवाती। कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं लता मंगेशकर की आवाज में गाए इस भजन के साथ।

0: संजवाती में अभी आप सुन रहे थे हरिहरन की आवाज में गाया ये भजन।
1: वात रोग, उदर रोग, मूत्र रोग, चर्म रोग, मानसिक रोग, श्वास रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, स्त्री रोग के इलाज हेतु विभिन्न पंचकर्म विधियों व आयुर्वेदिक दवा का प्रयोग आज ही संपर्क करें डॉक्टर निधि जैन, आदिवासी संग्रहालय के सामने छिंदवाड़ा। कॉल करें 9794543985।

0: जी सुनो, कल चौपाल में सरपंच की बहू बता रही थी उनका तेल 15 दिन में खत्म हो गया।
1: अरे भाग्यवान, हमारी रसोई में शिखर गोल्ड सोयाबीन तेल है। ये कम खर्च होता है इसलिए ज्यादा चलता है, पूरा महीना आराम से निकल जाएगा।
0: मतलब महंगाई में भी बचत
1: और स्वाद भी बढ़िया, सेहत का भी ध्यान।
0: वाह, इतनी खूबी।
1: शिखर गोल्ड सोयाबीन तेल अब आपके नगर की सभी किराना दुकानों पर उपलब्ध।

इसी भक्ति गीत के साथ में कार्यक्रम संजीवाती यहीं पर समाप्त होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र का प्रसारण। इस वक्त शाम के 6:30 हुए और हम लेकर हाजिर हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनाते हैं कुमार शानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में, बोल हैं जावेद अख्तर के, संगीत है आर डी बर्मन का और फिल्म का नाम है 1942 अ लव स्टोरी।

लुटेरा, इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे मोनाली ठाकुर की आवाज़। संगीत था अमित त्रिवेदी का और बोल थे अमिताभ भट्टाचार्य के। फिल्म संगीत अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं फिल्म चमेली से। बोल हैं इरशाद कामिल के और आवाज़ है सुनिधि चौहान की।

हम आपको याद दिला दें कि आज रात 8 बजे हम लेकर आएंगे कार्यक्रम शीर्षक संगीत। कार्यक्रम में हम आपको सुनाते हैं प्रीतम के संगीत में इरशाद कामिल के बोलों को। आवाज है मोहित चौहान की और फिल्म का नाम है जब वी मेट।

कार्यक्रम में एक बार फिर सुनिए इरशाद कामिल के बोलों को प्रीतम के संगीत में। फिल्म आक्रोश के इस गीत के लिए आवाज़ है अनुपम आमोद की।

कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवाते हैं उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज़ों में फिल्म दिल चाहता है का ये गीत। बोल हैं जावेद अख्तर के और संगीत है शंकर एहसान लॉय का।

0: इसी के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में हिंदी समाचार हम रिले करते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने आज नई दिल्ली में वार्ता के दौरान कई क्षेत्रों में आपसी संबंध मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि दोनों नेताओं की बातचीत से ऊर्जा और आर्थिक सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
2: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे।

0: मोदी ने कहा कि आर्थिक जगत इस समय आपूर्ति श्रृंखला अड़चनों, व्यापार अनिश्चितता और वैश्विक मांग में गिरावट से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
1: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनाते हुए अपने इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। नई दिल्ली में श्री पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में देश की रिफाइनिंग क्षमता को 30 करोड़ मीट्रिक टन प्रति वर्ष तक बढ़ाया जाएगा। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने राम मंदिर चंदा घोटाला मामले में आरोपी लवकुश मिश्रा से जुड़ी एक निर्माणाधीन संपत्ति पर नोटिस जारी किया है। प्राधिकरण के सचिव ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि भवन निर्माण नियमों के संदिग्ध उल्लंघन के कारण नोटिस जारी किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों के राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात इंगलवुड में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा, वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:05 हुए हैं।
3: मुझे अपनी मम्मी के जन्मदिन पर आकाशवाणी से बधाई देना है, क्या करूं?
2: नो टेंशन, इसके लिए कुकड़ा हिल्स आकाशवाणी कार्यालय छिंदवाड़ा में संपर्क करो। और हाँ, अगर शादी या शादी की सालगिरह, त्योहारों की शुभकामना या किसी विशेष अवसरों पर किसी को बधाई देना चाहते हो तो भी आप आकाशवाणी कार्यालय छिंदवाड़ा में संपर्क कर सकते हैं।
3: अच्छा, मेरे चाचा बर्तनों की दुकान खोल रहे हैं, उसके लिए भी?
2: हाँ हाँ, अपने प्रतिष्ठान के शुभारंभ पर भी आप बधाई दे सकते हैं या जानकारी दे सकते हैं। तो विज्ञापन के लिए संपर्क करें
3: कुकड़ा हिल्स आकाशवाणी कार्यालय छिंदवाड़ा।
2: हाँ,
4: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
5: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुँचने का हर विकल्प।
4: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
5: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
4: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
5: 8700001-4242।
2: आज शाम 7:20 पर हम लेकर आएंगे कार्यक्रम किसान वाणी। इसमें देंगे जानकारी हम आपको आज वन महोत्सव पर, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस पर करेंगे हम चर्चा। तो सुनना ना भूलिएगा कार्यक्रम किसानवाणी आज शाम 7:20 पर।
6: नए जमाने की नई तस्वीर, अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें हैं आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशन।

0: नेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स, और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
1: आज रात 8 बजे हम लेकर आएंगे कार्यक्रम शीर्षक संगीत, और 8:30 पर लीजिएगा आनंद कार्यक्रम सबरस का।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगू।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
2: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
4: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

0: हम आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। शाम के 7:10 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार हम रिले करते हैं आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
2: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
3: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
4: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापानी प्रधानमंत्री ताकाइची की शिखर वार्ता। आर्थिक, रक्षा और एआई क्षेत्र में हुए कई समझौते। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में अल्प वर्षा की तैयारियों के साथ नर्मदा समग्र मिशन की समीक्षा की। मनरेगा की जगह लेने वाली वीबी जीरामजी योजना का प्रदेशव्यापी शुभारंभ। अब मिलेगी 125 दिन रोजगार की गारंटी। और दतिया विधानसभा उपचुनाव का ऐलान, 30 जुलाई को होगा मतदान और 3 अगस्त को मतगणना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के बीच नई दिल्ली में वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की वार्ता हुई। भारत और जापान ने आर्थिक, ऊर्जा, सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल, रक्षा और एआई सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने एआई के क्षेत्र में एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया है। रक्षा क्षेत्र में दोनों देशों ने पहली सह विकास परियोजना पर भी समझौता किया। ऊर्जा सुरक्षा के तहत भारत जापान जैव गैस पहल से देश में 1000 जैव गैस और आर्थिक जैविक उर्वरक संयंत्र स्थापित किए जाएंगे।
1: भारत जापान संबंध

0: वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मंत्रालय में अल्प वर्षा की संभावना को देखते हुए विभिन्न विभागों की तैयारियों की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मसूर और उड़द जैसी कम पानी की फसलों के प्रति व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाए तथा अलनीनो के प्रभाव को देखते हुए एडवांस प्लानिंग की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने अगले 2 वर्षों की कार्य योजना के तहत जलाभिषेक 2.0 के माध्यम से तालाबों और बावड़ियों के पुनर्जीवन के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने नर्मदा समग्र विभिन्न मिशन की भी समीक्षा की। इस मिशन का उद्देश्य नर्मदा नदी का संरक्षण और जल संवर्धन करना है। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले से विकसित भारत जीराम जी योजना का राष्ट्रीय शुभारंभ किया। श्री चौहान ने कहा कि इस योजना के तहत मनरेगा के 100 दिनों की तुलना में अब 125 दिन रोजगार की गारंटी दी जाएगी।
2: मनरेगा में केवल 100 दिन रोजगार मिलता था, विकसित भारत जीराम जी योजना में पूरे 125 दिन मजदूर को रोजगार मिलेगा। केंद्र ने जो अपना शेयर दिया है, पैसा दिया है, वो है 95,600 करोड़ रुपया, और राज्यों का 40% शेयर मिलेगा तो एक साल में ही खर्च होंगे 1,51,282 करोड़ रुपया। इतनी बड़ी धनराशि मजदूरों को काम और गांव के विकास के लिए दी जाएगी।
1: वहीं प्रदेश में भी विकसित भारत जीराम जी योजना आज से मनरेगा का स्थान ले चुकी है। सभी जिलों में आज जन सम्मेलन सह लॉन्च कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा का उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने भोपाल स्थित निवास कार्यालय में अभिनंदन किया। दोनों नेताओं के बीच स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में नवाचारों को लेकर चर्चा हुई। डॉक्टर साहा 28वें AOMSI मिड टर्म कन्वेंशन में शामिल होने के लिए भोपाल आए। ये राष्ट्रीय सम्मेलन 2-4 जुलाई तक पीपुल्स यूनिवर्सिटी परिसर में क्रिएटिंग अ होलसम सर्जन थीम पर आयोजित किया जा रहा है। प्रदेश में महिला सशक्तिकरण और पोषण प्रबंधन को मजबूत करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के कुल 2,548 पदों पर भर्ती की जाएगी। इनमें 781 पद आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और 1,767 पद सहायिकाओं के लिए हैं। स्थानीय पात्रताधारी महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदन MP ऑनलाइन के जरिए 13 जुलाई तक स्वीकार किए जाएंगे। दोनों पदों के लिए 12वीं उत्तीर्ण और 18 से 35 वर्ष आयु सीमा निर्धारित की गई है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। चुनाव आयोग ने दतिया विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 13 जुलाई और मतदान 30 जुलाई को होगा, जबकि 3 अगस्त को मतगणना होगी। दतिया विधानसभा क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। ये उपचुनाव कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को सजा मिलने के बाद उनकी सदस्यता समाप्त होने की वजह से हो रहा है। प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास विभाग के ई नगर पालिका पोर्टल को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार की साइबर सुरक्षा श्रेणी में रजत पुरस्कार मिला है। जयपुर में आयोजित समारोह में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने यह सम्मान आयुक्त संकेत भोंडवे को प्रदान किया। आयुक्त श्री भोंडवे ने कहा कि विभाग ने आधुनिक तकनीकों और सुदृढ़ साइबर सुरक्षा उपायों से डिजिटल नागरिक सेवाओं को प्राथमिकता दी है। प्रदेश के सहकारिता खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने आज भोपाल में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय सहकारी प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। ये प्रदर्शनी सहकारिता मंत्रालय के 5 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित सहकारी सप्ताह के तहत लगाई गई है। उन्होंने हस्तशिल्प कारीगरों और महिला स्वसहायता समूहों को सिलाई मशीन सहित टूल किट भी वितरित किए। ये प्रदर्शनी 4 जुलाई तक आम नागरिकों के लिए खुली रहेगी। केंद्रीय राज्य मंत्री और धार सांसद सावित्री ठाकुर ने आज पीथमपुर में निर्माणाधीन रेलवे टनल का निरीक्षण किया। इस दौरान वे करीब 70 फीट नीचे उतरकर टनल के भीतर पहुंची। उन्होंने कहा कि रेल परियोजनाओं को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस परियोजना के पूरी होने के बाद क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत अब तक 25,892 जनजातीय घर विद्युतीकृत किए जा चुके हैं। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने सर्वाधिक 13,058 घरों को विद्युतीकृत किया।

है। ये योजना आदिवासी बहुल गांवों में परिवारों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है, जिसमें 40% व्यय राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। प्रदेश की पुलिस के लिए 1 जुलाई से EHRMS का ई लीव मॉड्यूल लागू कर दिया गया है, जिसपे पुलिसकर्मी अब ऑनलाइन अवकाश आवेदन और उनकी स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा के निर्देश पर प्रदेश की करीब 120 पुलिस इकाइयों में ये व्यवस्था लागू की गई है। भारतीय रेलवे ने जून 2026 में पिछले वर्ष की तुलना में माल ढुलाई में 4% की वृद्धि दर्ज की है। रेलवे ने पिछले महीने 142 करोड़ टन से अधिक माल की ढुलाई की। इस दौरान 63.81 करोड़ यात्रियों ने रेल यात्रा की, जो कि पिछले वर्ष से अधिक है। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में आज भोपाल समेत 11 जिलों में तेज बारिश हुई। खरगोन के कसरावद में 2 घंटे की मूसलाधार बारिश से सड़कें और खेत जलमग्न हो गए। शाहजहाँपुर के अकोदिया में लंबे इंतजार के बाद हुई बारिश से किसानों को राहत मिली। वहीं मानसून ने 24 जून को प्रदेश में एंट्री की थी और 9 दिनों में पूरे प्रदेश को कवर कर लिया है। मौसम विभाग ने हरदा, नर्मदापुरम, रायसेन, छिंदवाड़ा, पांडुना और बालाघाट में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा घोषित स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग में प्रदेश के 10 विद्यालय राष्ट्रीय स्तर पर चयनित हुए हैं। शहरी वर्ग में रतलाम के सांदीपनी विद्यालय जावरा ने प्रथम और भोपाल के कमला नेहरू सांदीपनी विद्यालय ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत इंदौर में इस बारिश में 21 लाख पौधे लगाए जाएंगे। BSF परिसर सहित देवगुराड़िया, लिम्बोदी और कृषि कॉलेज परिसर में बड़े पैमाने पर पौधरोपण होगा। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने नागरिकों से माँ के सम्मान में से कम एक पौधा लगाने की अपील की है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। धार जिले में केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण का शुभारंभ किया। रायसेन जिले के 1800 से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों पर स्कूल रेडीनेस मेला 2 का समापन उत्सव का आयोजन किया गया। बैतूल जिले के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय भैंसदही की छात्रा पद्मा मर्सकोले ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में प्रवेश पाकर जिले का नाम गौरवान्वित किया है। देवास जिले में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत 3 दिनों में 1,84,000 से अधिक बच्चों को पोलियोरोधी दवा पिलाई गई। शिवपुरी के कृषि विज्ञान केंद्र पर किसानों के लिए टमाटर और मिर्च की उन्नत खेती को लेकर एक विशेष किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया। भिंड में फसल बीमा माह के अंतर्गत जिला स्तरीय शुभारंभ कार्यक्रम का आयोजन किया गया और आगरमालवा के शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय में युवा संगम के तहत कल युवा संगम रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापानी प्रधानमंत्री ताकाइची की शिखर वार्ता, आर्थिक, रक्षा और AI क्षेत्र में हुए कई समझौते। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में अल्प वर्षा की तैयारियों के साथ नर्मदा समग्र मिशन की समीक्षा की। मनरेगा की जगह लेने वाली VB जीराम जी योजना का प्रदेशव्यापी शुभारंभ, अब मिलेगी 125 दिन रोजगार की गारंटी और दतिया विधानसभा उपचुनाव का ऐलान। 30 जुलाई को होगा मतदान और 3 अगस्त को मतगणना। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 7:10 पर। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज पर शाम के 7:20 हुए हैं। हमारे किसान साथी सुने उनका अपना कार्यक्रम किसान वाणी।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग।
1: सभी किसान भाइयों बहनों और सभी श्रोताओं को संतु भैया और
2: शिवकली बहन की भैया आपको भी मेरी बहुत बहुत राम राम।
1: हाँ राम राम। इसी के साथ स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम किसान वाणी की
2: चौपाल में।
1: अब सुनाओ बहन गल्ले, दिना के बाद आई हो चौपाल में, क्या बात है?
2: अरे क्या बताएं संतु भैया, देखो हाँ। जो समय है सो

0: है ना।
1: हाँ
0: अभी खेती बाड़ी को काम कितना है, आप तो जानते ही
1: हाउ
0: हो,
1: हाउ
0: है
1: हाउ
0: ना,
1: हाउ
0: कितना ज्यादा काम बढ़ गया
1: बड़गो हाउ हाउ हाउ
0: है
1: जा
0: ना।
1: बात तो है।
0: अच्छा संतू भैया, आपसे ना दो बात पूछनी है जरा मेरे।
1: दो बात पूछनी। अच्छा चलो पूछो, पहली बात पूछो और दूसरी बात भी पूछो।
0: भैया पहली बात तो जा कि दद्दा जी की हमके कोई कहावत सुनाने
1: अरे
0: है
1: जे
0: ना।
1: कहाँ से मन में आ गए आपके हैं, अच्छी लगत है
0: अरे
1: काय।
0: अच्छी लगत है।
1: अच्छा अच्छा अच्छा
0: और भैया दूसरी बात जा कि आज हमके जानने हैं कि भैया जे माह जुलाई में हमें कौन कौन से कृषि कार्य करने पड़े
1: अच्छा
0: है
1: बस
0: ना।
1: इतनी सी बात।
0: नहीं, और
1: हाँ
0: भी बात है।
1: अच्छा बताओ।
0: हमने आज हमारे किसान भाइयों के लाने ना कछु महत्वपूर्ण जानकारी लाए हैं है ना, तो वो बताने वाले हैं।
1: जरा हमें भी तो बताओ कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी लाई
0: नहीं
1: हो।
0: भैया, पहले ना कल्लू के दद्दा जी की कोई कहावत तो सुनाओ है
1: अच्छा
0: ना।
1: ऐसी बात है।
0: हाँ ऐसी बात है, चलो सुनाओ सुनाओ।
1: अच्छा चलो सुना दिए थे है ना। कल का भाव, हम एक शादी में गए, वहां हमने एक कहावत याद आई हम मन में हमारे, कुछ वहां का
0: कौन
1: वातावरण देख के।
0: तो भैया, कौन सी हमके भी सुना दो जरा।
1: पंगत में बेटा सदा सबको साथ निभाए। क्या बोले हमने?
0: पंगत
1: पंगत
0: में
1: में
0: बेटा
1: बेटा
0: सदा सबको साथ निभाए।
1: निभाए, जल्दी भर गओ पेट तो ओसई ओसई खाओ।
0: हाँ अरे वाह भैया, क्या बात है, जा तो बहुत ही अच्छी बताया आपने। अब एक और अर्थ भी तो बता दो जरा
1: अच्छा
0: का।
1: अर्थ भी बताना
0: हाँ
1: पड़ेगा।
0: अर्थ भी बताने पड़े।
1: सुनो, जब आप सामूहिक भोजन या पंगत में आप बैठकर भोजन कर रहे हो ना,
0: हो
1: तो एक शिष्टाचार की एक कहावत, मतलब उसमें कहा जाता है कि जल्दी जल्दी भोजन करके अकेले जो है उठना
0: नहीं
1: ठीक नहीं
0: चाहिए, हाँ
1: चाहिए, बिल्कुल
0: बिल्कुल
1: नहीं
0: नहीं
1: चाहिए
0: उठना।
1: अपने आप।
0: हाँ
1: हमें सबके साथ उठकर हाथ धोना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: यदि पेट भर भी गयो है ना, तो भी थोड़ो थोड़ो खात रहन
0: खात रहन
1: चाहिए
0: चाहिए और सबके
1: ऐसा।
0: साथ एक साथ उठने चाहिए है ना।
1: हाँ
0: अरे वाह भैया, जा तो बहुत ही अच्छी ज्ञानवर्धक बात बताए
1: हाउ
0: है ना। हम भी ध्यान रखा है और अपने सभी किसान भैया बहन भी ध्यान रखा है जब बात का
1: बिल्कुल
0: है ना।
1: बिल्कुल। अच्छा अब जा बताओ कौन कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी ले, आप तो बता दो जिन पर चर्चा करनी है अपने
0: हाँ
1: से।
0: बिल्कुल भैया, जैसे देखो पहली बात तो अपन ने बता दे आज की बात की जय माह के कृषि
1: कृषि कार्य
0: कार,
1: हाउ हाउ।
0: और दूसरी आज की बात करें अपन प्रकृति को वन महोत्सव पर।
1: अच्छा प्रकृति का वन महोत्सव।
0: हाँ
1: अरे
0: और
1: वाह,
0: भैया चर्चा करेंगे अपन अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस पर है ना।
1: अरे वाह, ये तो वाकई में महत्वपूर्ण जानकारी है भाई आज तो है। और आगे का है फिर बताओ।
0: आगे का है भैया, आगे अपन आज की बात शुरू करने से पहले कछु फरमाइशी गीत भजन वगैरह सुनवाए
1: अरे
0: कि
1: हाँ,
0: नहीं
1: आज गुरुवार को दिन है,
0: सुनवाए।
1: बढ़िया फरमाइशी गीत भजन वगैरह होते हैं है ना, फिर अपन बात करेंगे अपनी आज की बात है ना, ऐसा बोल
0: हाँ
1: रहे हैं आप।
0: बिल्कुल
1: चलो तो जो पत्र हमारे पास है, मगर कहने का गीत पहले अपन गीत सुनवा लेते
0: बिल्कुल,
1: हैं ना।
0: पहले गीत सुनवा देते हैं चलो।

0: वाह संधु भैया,
1: बीती बातों में उमरिया,
0: बहुत मजा आ गो भैया।
1: अरे तो हमारे किसान भाई फरमाइशी ऐसी लिख के भेजते हैं।
0: भैया किन्ने भेजो था जो फरमाइश?
1: देखो आपके हाथ में भी जो पत्र आपने रख ले हैं, मेरे हाथ में भी जो पत्र है, देखो जो आओ है पेपरिया रोड न्यूटन वार्ड नंबर 1 से परासिया से जी हैं, अपने नियमित श्रोता है ये। हरिराम साहू, निकिता साहू, रोशनी, गगन साहू, वंदना, चंद्र प्रकाश साहू, मास्टर प्रिंस, मास्टर यूबी हैं, सलीम अंसारी जी, भवानी साहू, पप्पू साहू, इन्होंने ये फरमाइश से लिख के भेजी थी कि भाई हमको बीती बीती बातों में उमरिया भजन सुनवाओ।
0: बिल्कुल
1: हमने सुनवा दे।
0: बिल्कुल भैया, और मेरे हाथ में जो पत्र है मैं भी इनको जो ही फरमाइश हतो है ना, और जो है ग्राम कोटलवर्री से आओ है रामादीन दुबे, श्रद्धा दुबे, सत्यम दुबे और शेखर दुबे।
1: हाँ है चलो, तो अब जा हो गई अपनी फरमाइश की बात।
0: हाँ भैया, अब जे बताओ संतु भैया कि जे वहाँ में हमें कौन कौन से कृषि माह करने पड़ा थे,
1: कृषि में कार्य करने पड़े मतलब है ना। हाँ तो किसान भाइयों आप ध्यान से सुने कि सबसे पहले बात करते हैं फसल उत्पादन पर, काहे बहन।
0: हाँ भैया, जो क्रम तो सबसे पहले आते नहीं आते बताओ।
1: फसल उत्पादन हो के बाद फिर उद्यान की हो के बाद फिर पशुपालन है ना।
0: हाँ।
1: तो किसान भाइयों खरीफ की बुआई का समय जो है ना भूमि में पर्याप्त नमी देखने के बाद ही शुरू करना चाहिए, क्यों मैन?
0: बिल्कुल करना
1: ताकि
0: चाहिए।
1: क्या होता है बताऊं?
0: क्या होता है?
1: अंकुरण जो होता है ना वो संतोषजनक होता है।
0: बिल्कुल हाँ भाइयों, आमतौर पर 4 इंच वर्षा हो जाने के बाद ही है ना बुआई को काम हमके करने चाहिए।
1: हाँ।
0: करने चाहिए कि नहीं?
1: बिल्कुल करने चाहिए, बिल्कुल करने चाहिए। और चूकली बहन आपने सही कहा है, हम इस पे आपको धन्यवाद कर रहे हैं कि ऐसे ही करना, 4 इंच अब तक बारिश ना हो जाए ना, अपनी भूमि तर बतर ना हो जाए तब तक हमें बुआई नहीं करना चाहिए, इसके बाद करना चाहिए। और सभी प्रकार के बीजों का बीजोपचार आवश्यक रूप से अपन को करना चाहिए कि नहीं?
0: बिल्कुल करना चाहिए भैया।
1: कौन सी दवा से बताऊं?
0: कौन सी दवा से बताऊं?
1: 3 ग्राम थायरम प्रति किलो बीज के हिसाब से अपन करना चाहिए।
0: बिल्कुल। और किसान भाइयों गहरी काली माटी में जो है ना प्रत्येक 18 से 20 कतार के बाद एक कतार के करने चाहिए, पता
1: कहा चूनी रखना चाहिए
0: जे को उपयोग भैया का होते कि अतिरिक्त जो है जल है ना
1: वो
0: निथर जाते हैं, और जो पौध संरक्षण के नाम काम भी तो आते कि नहीं आते।
1: और जीवन रक्षक सिंचाई के लाने भी तो की हो जात कहे जाती है।
0: बिल्कुल करो जात है भैया।
1: भाई सोयाबीन के साथ मक्का भी लगा सकते हैं, ज्वार और मूंग की अंतर्वर्ती फसल भी अपन सफलता पूर्वक ले सकते हैं।
0: बिल्कुल ले सकते हैं। और संतु भैया बताऊं?
1: हाँ बताओ।
0: धान की नर्सरी में वो जो पौधा रहे ना रोपा।
1: हाँ हाँ।

0: जब छोटे छोटे रहे थे
1: हाउ हाउ हाउ
0: तो उनके अपन का करने 20 से 25 दिन की अवस्था की जब भी हो जाए
1: हाउ हाउ
0: तो उनके अपन के निकार के
1: हाउ
0: और खेत में रोप देने चाहिए,
1: हाँ
0: रोप
1: यानी
0: देने चाहिए।
1: ध्यान वो थे अपने किसान भाई, अब जो पानी जहाँ ज्यादा रहते हैं ना।
0: अरे गांव में तो परहा भी लगा दे भैया, उसके परहा
1: अच्छा
0: कहे थे।
1: अच्छा अच्छा और किसान भाइयों एक बात और ध्यान में जरूर अपन के रखने हैं
0: हाँ कौन सी,
1: कि एक स्थान पर 2-3 से ज्यादा पौधे अपने के नहीं लगाने का है बहन।
0: बिल्कुल हो भैया, कैसे कि आपने बिल्कुल ही सही कहे है ना।
1: हो
0: और कैसे कि अपन के समय समय पर निंदाई गुड़ाई को काम भी तो करने पड़ा था क्यों।
1: करने पड़ा थे, बिल्कुल सही कह रहे हैं है ना, निंदाई गुड़ाई को काम तो करते रहने चाहिए अपन के समय समय पर है ना।
0: बिल्कुल
1: और कतार से धान की जो बुआई है ना,
0: हाँ
1: वो कतार बुआई के लिए भाई नमी के बाद अपन 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज की बुआई जो है 20 से 25 सेंटीमीटर की दूरी में अपन रखें,
0: बिल्कुल रखे नहीं।
1: कतार से कतार में रखा था का नहीं।
0: बिल्कुल रखा थे भैया। और संतु भैया जब बरसा शुरू हो जाते है ना
1: हाँ
0: तो ओमे हमके तुमके बताने हैं भैया कि हम ओमे तिल की बुआई कर सकते हैं कि नहीं करें।
1: बिल्कुल कर सकते हैं अपन, बिल्कुल तेल तो लगाते हैं ना
0: हाँ
1: और कर
0: तिल
1: सकते हैं बहन। आपको जो प्रश्न था ना बिल्कुल सही है, कर सकते हैं अपन। इसमें 4 से 5 किलो बीज के साथ भाई 30 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी रखना पड़ता है मालूम है
0: हाँ वो
1: आपको।
0: बिल्कुल रखना पड़ता। और भाई वो सोयाबीन के बीज में फफूंदनाशी बीज उपचार के बाद अपन काहे से कराते पता,
1: बताओ
0: राइजोबियम और
1: पीएसबी
0: पीएसबी
1: कल्चर
0: कल्चर को
1: से।
0: प्रयोग से
1: अरे
0: कराते है ना।
1: वाह वाह, और कुछ महत्वपूर्ण बात है फसल उत्पादन पर और सुन ले हमारे किसान भाइयों को हम बताने जा रहे हैं। वर्षा ना होने की स्थिति में भाई देखो सिंचाई की उचित व्यवस्था अपने के रखनी चाहिए
0: हाँ
1: और आगे का करने।
0: और आगे भैया गंधक और जस्ते की कमी वाले खेतों में इनको उपयोग करने हैं कि नहीं करने हैं
1: हाँ
0: है ना।
1: बिल्कुल सही। और एक अंतिम बात और अपन किसान भाइयों को बता देते हैं, मुझे
0: बिल्कुल
1: ध्यान में आया कि अंकुरण अंकुरण के उपरांत सोयाबीन की फसल में निरीक्षण करना जारी रखें अपन, छोड़े
0: बिल्कुल
1: ना,
0: बिल्कुल
1: काहे के लिए मालूम है।
0: हाँ कोपलों की रक्षा करने के नाम
1: हाँ
0: है।
1: कोपल जब बनती है ना
0: हाँ
1: उनकी रक्षा के लिए उनको देखन पड़ा था, तो अपन बार बार जाके अपन निरीक्षण कर रहे थे क्या नहीं, ये काम
0: बिल्कुल
1: अपने के करने चाहिए।
0: बिल्कुल। तो किसान भाइयों ये तो हो गई अपनी आज की बात, मतलब जो बात
1: फसल
0: हती
1: उत्पादन
0: फसल उत्पादन पर
1: हाउ
0: है
1: हाउ
0: ना।
1: हाउ
0: और आगे का संतु भैया का कर रहे
1: आगे
0: हैं।
1: का है, अब उद्यान की बात भी तो करनी है का नहीं
0: हाँ वो
1: करने।
0: भी तो बताने पड़े ना उद्यान
1: हाउ
0: के
1: हाउ
0: बारे में, तो
1: बताने
0: चलो
1: पड़े।
0: बताओ जरा।
1: देखो बहन आम है, अमरूद है, अनार है, नींबू के पौधों मतलब तैयार करके गड्ढों में अपन के लगाने चाहिए,
0: हाँ
1: आंवला और बेर में कली कायन भी अपन के करने चाहिए।
0: बिल्कुल करने चाहिए।
1: हाँ
0: और भैया जब बात आत है कहे कि
1: फल बाग,
0: रख रखाओ,
1: अच्छा काहे के रख रखाओ बताओ।
0: हाँ फल बाग के, तो हमें
1: हाँ
0: उचित खाद और उर्वरक भी तो अपन के डालने पड़े कि नहीं
1: डालने
0: पड़े
1: पड़ा, बिल्कुल डालने
0: है ना।
1: पड़ा था उनके, देने पड़ा था। किसान भाइयों टमाटर है, बैगन में अगेती गोभी के पौधों की भी मुख्य खेत पे अपन रोप सकते हैं अभी।
0: बिल्कुल। और भैया सभी प्रकार की सब्जियों में कीट रोग नियंत्रण को उपाय भी अपन के करने हैं
1: हाउ
0: है
1: हाउ
0: ना।
1: हाउ करने हैं,
0: फूल पौधों में भी अपन के उर्वरक डालने पड़े,
1: डालने
0: डालने
1: हैं
0: पड़े कि
1: डालने
0: नहीं
1: हैं, बिल्कुल
0: सुनती।
1: डालने पड़ा था।
0: अच्छा संतु भैया पशुपालन तो रहेगा होगा, पशुपालन पर भी तो
1: अरे
0: कछु
1: तो वो
0: बतान पड़े कि नहीं
1: क्रम
0: बतान
1: आ रहा
0: पड़े।
1: हो ना पशुपालन को। चलो अब
0: हाँ
1: आपने पशु उद्यान की बात समाप्त कर रहे हैं, अब पशुपालन की अपन बात कर रहे हैं। तो किसान भाई यदि आपके पास आप बकरी पालन करत हो ना, तो बकरियों में CPC का टीका अपन लगवाते हैं,
0: टीका जरूर
1: लगाने
0: लगवाएं
1: जरूरी है।
0: बिल्कुल।
1: और क्या करने आगे,
0: और पशुओं के नाने ना भैया हरे चारे की पूरी व्यवस्था करने
1: वो
0: हैं ना,
1: गिलाई का
0: वो
1: करें,
0: के लाने भैया ज्वार मक्का लोबिया अपन लगा सकते हैं कि नहीं।
1: बिल्कुल लगा सकते हैं। और किसान भाई एक अंतिम बात और सुन लें, वर्षा के कारण जहरीले जंतु जो होते हैं ना अपने बिलों से बाहर निकल कर
0: हाँ
1: कहाँ आते हैं, बाहर आते
0: बाहर
1: हैं।
0: आते हैं
1: अब ऐसी कुछ घटनाएं होने की भाई संभावना हो जाती है ना, तो उसका
0: हो जाते।
1: उपचार भी जैसे उनसे बचाव कैसे करना है ना भाई, अपने पशुशालों को कैसे बचाना है उनसे जहरीले जंतुओं से,
0: हाँ
1: वो भी बंधान करना चाहिए कि नहीं।
0: बिल्कुल करना
1: घर
0: चाहिए,
1: में अपन यदि अपनी कच्चा मकान है तो भाई उसकी पक्का बोरे पट्टी से पैक कर लें।
0: पैक कर लें। और भैया मैं एक और कछु बात कहूँगा।
1: और कहने हैं का,
0: हाँ
1: चलो अंतिम बात आप भी कह लो।
0: भैया अपन ने ग्रीष्म कालीन में जो बनाए थे अचार पापड़ बड़ी वगैरह
1: बिल्कुल
0: है ना,
1: सही, हम
0: और अपने अनाज को भंडारण करें तो क्या करने पड़े, उनकी
1: अरे
0: सुरक्षा
1: क्या
0: करने पड़े
1: बात
0: कि नहीं
1: करने
0: करने पड़े।
1: पड़े, हमें मालूम थो कि जब हमारी बहन ना यदि कोई अंतिम बात कहे कह रही है तो हम समझ गए थे कि अंतिम बात का हुए। चलो सुना थे ध्यान से, तो अचार है, पापड़ है, अनाज है, जब इनकी सुरक्षा भी करने अपन के।
0: बिल्कुल
1: चलो तो भाई ये हो गई अपनी आज की बात की, इस माह में हमें कृषि में कौन से कार्य करने होते हैं।
0: हाउ
1: अब देखो जो एक संदेश आ रहा हो बहन,
0: हाउ सुन लिया है
1: सुन
0: कभी,
1: लेगा
0: हाउ चलो सुन लिए थे।

0: मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा जमीन में नमी लेते हैं और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है जो कपास वगैरह लगाते हैं तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है।
1: ऑयल पाम का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है।
2: ऑयल पाम का खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं, वो जब बड़ा कर देता हूँ कंपनी उठा के लिए जाते हैं।
3: अब संदेश तो सुन, गीत वगैरह भी हैं तो उनको भी तो हमारे को किसान भाइयों को सुनवाना है ना।
4: बिल्कुल सुनवाना।
3: चलो जी, आया है पत्र, पर पहले हम गीत सुनवा देते हैं।
4: चलो गीत सुनवा देते हैं।

0: मंदिर मंदिर में विराजे भगवान
1: हाँ,
0: है। कितना बढ़िया गीत है, भजन है ये,
1: बहुत अच्छा।
0: और इनकी फरमाइश मालूम किसने की है बहन,
1: किसने करी भैया जरा बताओ।
0: ये महादेव घाट अमलेश्वर से है।

0: डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रियांश ठाकुर ने। और आपके पास भी तो ये पत्र?
1: हाँ भैया, मेरे पास भी एक पत्र है और एम ए फरमाइश आई है ग्राम बमनी लाला पचोली से। सतीश रघुवंशी है ना, वीरपाल यादव, रामकृष्ण मर्षकोले और विनोद रघुवंशी का।
0: चलो तो अब जी फरमाइशी गीत भी होते जा रहे हैं।
1: हाँ।
0: अब अपनी आज की बात भी आपने महत्वपूर्ण जो बताए थे ना, कहा है वो प्रकृति वन महोत्सव।
1: हाँ भैया, प्रकृति वन महोत्सव के बारे में।
0: तो किसान भाइयों, प्रकृति का वन महोत्सव भारत में हर साल, ध्यान से सुना भाई,
1: हाँ भैया,
0: जुलाई के पहले सप्ताह यानी कि 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाओ जानवरों एक सप्ताह को वृक्षारोपण उत्सव है।
1: बिल्कुल भैया।
0: एक मतलब मुख्य उद्देश्य मालूम है आपके?
1: नहीं पता भैया, बताओ।
0: अच्छा, कौन कौन से? नहीं आपके तो मालूम है।
1: हाँ मालूम है, चलो मैं बता दे रही हूँ।
0: हाँ,
1: भैया एक के प्रमुख उद्देश्य है लोगों में पेड़ लगाने,
0: हाँ,
1: पर्यावरण के हरो भरो रखने,
0: हाँ,
1: और जंगलों की रक्षा की भावना के बढ़ाने,
0: बढ़ाने। जय
1: है
0: तो
1: ना?
0: मैं बोलूँ कि आपके तो मालूम है कि नहीं मालूम।
1: हाँ, चलो
0: चलो, अब एक इतिहास के बारे में भी अपन जान लिए थे।
1: बिल्कुल जान लिए।
0: इसकी शुरुआत मालूम कहाँ से भई थी?
1: बिल्कुल,
0: कौन से वर्ष से भई थी?
1: बिल्कुल भई थी
0: 1950 में।
1: 1950 में।
0: आगे का बहुत
1: भैया, जब ना तत्कालीन केंद्रीय मंत्री कौन हते पता? कन्हैया लाल मुंशी।
0: उनने की दिया ना?
1: हाँ, उनने करी थी।
0: बिल्कुल बहन, और का?
1: और बिल्कुल भैया, वे चाहते कि लोग जो है ना,
0: हाँ?
1: उत्सव के रूप में ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं,
0: हाँ?
1: और अपनी धरती के हरी भरी बनाए।
0: और समय, मतलब उस समय की बात है, समय जुलाई को इसलिए चुना गया मालूम है, कहा है कि जो समय बारिश यानी मानसून को शुरू हो जाते का नहीं,
1: हाँ,
0: और जो मौसम में कहे लगाए गए पौधे पौधन जो होते ना,
1: हाँ,
0: उनके पानी मिलत रहे थे और वे जल्दी जल्दी का होते
1: बड़े
0: हो जाते।
1: और भैया अब ये भी जान लिए थे अपन,
0: हाँ,
1: कि जे प्रकृति के लाने जरूरी का है।
0: कहा है
1: भैया, पेड़ पौधन से अपन के ताजी हवा मिला था कि नहीं मिला?
0: बिल्कुल मिला था,
1: है ना? और काहे से कि जी पेड़ पौधा ना हो ना, कार्बन डाइऑक्साइड गंदी वाली गैस के सोख लिए थे।
0: अच्छा, सोखा थे, ग्रहण करा थे जी,
1: ग्रहण करा थे उनको,
0: और
1: जीवन के लाने जो जरूरी है कार्बन
0: और
1: डाइऑक्साइड,
0: ऑक्सीजन यानी कि ताजी हवा,
1: हाँ,
0: वो छोड़ा थे जिससे कहा होते कि अपन जो सांस लिए थे ना, और पेड़ मिट्टी की रक्षा भी तो होते ना, तो सांस भी लिए थे, तो वो ही अपनी तो ऑक्सीजन मिला था उनसे।
1: बिल्कुल,
0: और पेड़ जो है मिट्टी की
1: रक्षा भी करा था।
0: हाँ।
1: कैसे कि भैया, पेड़ की जड़ जो है ना,
0: हाँ,
1: माटी के कस के पकड़ा था,
0: हाँ,
1: ना? जैसे बारिश में जो है ना, माटी बहत नहीं आ,
0: हाँ, हाँ,
1: और पेड़ पौधा बारिश के लाने काफी मदद भी तो करा था कि नहीं
0: मदद
1: करा
0: करते। बिल्कुल, कैसे कि जी पेड़ जो है ना, बादलों के अपनी तरफ खींचा था।
1: बिल्कुल खींचा था भैया,
0: जिससे कहो मानो
1: कहो
0: बारिश होते, अच्छी बारिश होते,
1: अच्छी बारिश होते।
0: पेड़ पौधे तो भाई जीव जंतु के घर भी होते का नहीं होते?
1: बिल्कुल,
0: अपन देखा ही है पेड़ पे, लोग घोंसला बना
1: है,
0: पेड़ पे बैठा था पशु पक्षी वगैरह।
1: हाँ भैया, कई जंगली जानवर और पक्षी ना हो, जैसे कि आपने बताया कि
0: हाँ,
1: घोंसला बना के पेड़ों पर रहे थे,
0: हाँ, हाँ,
1: है ना?
0: कुल मिला कहो जाओ कि तो वन महोत्सव वृक्षों के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और लोगों के पर्यावरण संरक्षण के लाने ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करने को एक महत्वपूर्ण अवसर भी है।
1: बिल्कुल, और भैया पेड़ पौधों से अपन के ईंधन प्राप्त होते होते
0: हाँ,
1: हो, जलाऊ लकड़ी भी मिलत है,
0: हाँ,
1: है ना?
0: हाँ,
1: खाद्य संसाधनों को उत्पादन बढ़त है,
0: हाँ,
1: उत्पादकता बढ़ाने के लाने अपन खेतन के चारों ओर छायादार क्षेत्र बना सकते हैं।
0: बिल्कुल
1: है
0: बना
1: पेड़
0: सकते
1: लगा
0: हैं,
1: के।
0: पेड़ लगा सकते हैं, और किसान भाइयों पेड़ पौधे जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के भी कम करत है,
1: बिल्कुल
0: मृदा कटाव के भी रोकत है, जैव विविधता के भी बढ़ावा दिए थे,
1: बिल्कुल,
0: और साथ ही में मानव स्वास्थ्य में भी का करत है,
1: सुधार करत है,
0: सुधार करत है।
1: तो किसान भाइयों, ये महोत्सव वृक्षारोपण और पर्यावरण जागरूकता के बढ़ान देन के लाने एक मंच भी प्रदान करत है, करत है नहीं
0: भी प्रदान करत, बिल्कुल करत
1: और
0: है।
1: जीवन के कई क्षेत्रों में अपन के लाभ भी पहुंचाते कि नहीं भैया?
0: बिल्कुल पहुंचाते है। और किसान भाइयों, प्रकृति हमारी अमूल्य धरोहर है ना?
1: है भैया।
0: आओ हम महोत्सव उत्साह के अवसर पर हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए और उनके संरक्षित करण के लाने संकल्प भी ले।
1: बिल्कुल, और संकल्प ले हैं तो कहो है हरियाली बढ़े, है ना, और पर्यावरण सुरक्षित
0: हो जाए
1: भैया, साथ ही में जल स्रोत समृद्ध हो है,
0: हाँ, हाँ,
1: है
0: हाँ,
1: ना,
0: हाँ, हाँ।
1: और आने वाली पीढ़ी के स्वच्छ और स्वस्थ भविष्य मिले कि
0: मिल
1: नहीं?
0: जाए तो एक पौधा जरूर लगाएं और धरती के हरी भरी
1: बनाएं।
0: और जाहती अपनी हमारी आज की दूसरी बात,
1: बिल्कुल
0: जे को भी कहो
1: प्रकृति को वन महोत्सव,
0: वन महोत्सव।
1: हाँ।
0: अब देखो एक फरमाइशी।

0: गीत हमारे पास जो लिख भेजे हैं हमारे भाई हैं ये कहाँ है, हाँ आलीबाड़ा ब्लॉक तामिया जिला छिंदवाड़ा से देवी राम इनवाती दामिनी इनवाती, इन्होंने क्या लिखा मालूम, हमको हमारे गीत की फरमाइश आपको पूरी करना ही पड़ेगी, पर्यावरण संभालो मेरे भैया, मिलकर वृक्ष लगा लो
1: बिल्कुल।
0: और आपके पास भी ये पत्र कहाँ से आया बताओ जरा
1: भैया जी, पत्र आया है ग्राम बाजार पारा बाजार पारा बेमतरा से, है ना।
0: अच्छा,
1: भरत लाल सिन्हा और
0: लव कुमार सिन्हा, लक्की सिन्हा, है ना। चलो तो इनकी फरमाइश पे अपन ये गीत सुनवा देते हैं।
1: चलो सुन लेते हैं।
2: फूल फल ही पर है इधर से।

0: बहन एक बात बताओ।
1: हाँ भैया।
0: आप लगाओ कि नहीं वृक्ष?
1: बिल्कुल लगाओ भैया, काहे नहीं लगाओ।
0: मौसम वृक्ष को एक तो लगाना
1: जरूर लगाऊं भैया।
0: संकल्प ले लिया आपने?
1: बिल्कुल ले लई हूं।
0: अब जब बताओ कितनी देर से मैं सोच रहा हूं और आपके पास देख देख के सोच रहे तो कई कच्चे सोच रहे थे
1: भैया। मैं बहुत देर से देख रही हूं, आपने जो थैली लाया है थैली में कहां है?
0: अरे तो हमके घर जाने थे पर हमने कहा ले लें आम, ले लें तो एक पपीता भी ले लें हैं और खजूर भी ले लें। अच्छा। ऐसे करके जो हम ले जान मारे थे, आपकी नजर पड़ गई तो हम जात जात खिला दे हैं आपको।
1: अरे वाह भैया, मतलब आपने फल लेके आए हो है ना,
0: जब तो मीठी मीठी खुशबू आ रही है।
1: तो भैया यही से जुड़ी है अपनी आज की चर्चा भी है ना।
0: हाँ जुलाई के मनाते हैं ना अपन।
1: हाँ भैया, हर साल 1 जुलाई के मनाओ जाते हैं।
0: तो 2 जुलाई,
1: आज 2 जुलाई है, मगर ककर है कल अपनी चौपाली नहीं लगी थी।
0: नहीं लगी थी बिल्कुल, एक के मनाओ जात है ना 1 जुलाई के बहन। और देखो तो काले ही तो अपन ने 1 तारीख मनी थी है ना।
1: हाँ।
0: और हर साल एक अलग फल को चुनाव भी करत है।
1: हाँ।
0: अब जा साल यानी की वर्ष 2026 में कौन सो फल चुनोगा मालूम?
1: कौन सो चुनोगा भैया?
0: देखे मालूम तो जब तो खजूर लाओ मैंने देखा।
1: अच्छा खजूर।
0: हाँ बिल्कुल, आपके जात जात खिलाऊं मैं है।
1: हाँ भैया, और
0: एक
1: की थीम का है पता?
0: बताओ।
1: पौधे लगाओ सीखो जश्न मनाओ।
0: पौधे लगाओ सीखो जश्न मनाओ।
1: हाँ भैया, जो दिन एक ऐसो दिन है जैमे अपन फलों के साझा करते हैं।

0: बताने कि भैया एक दूसरे के बांटत हैं।
1: तो देखो हम भी बांट रहे हैं, देखो हमने लाए हैं तो आपके भी दें। हमारी विजय विजय बहन जो है ना वो भी हमके मिली तो उनके भी हम खिलाए,
0: बिल्कुल
1: उनकी आवाज सुने थे हमने। तो अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस के दिन भाई सब लोग अपने पसंद के फल खरीद के लाते कि नहीं लाते,
0: लाते हैं।
1: कहे कि जो दिन अपन के भाई दूसरों के साथ साझा करन के लाने प्रोत्साहित करत है, चाहे वे घर के हो और बाहर के हो, स्कूल में हो या सार्वजनिक स्थान में हो,
0: बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात का है बताऊं संतुलन, हाँ। सबसे अच्छी बात जा है भैया कि विशेष रूप से हमारे बच्चों के और घर में बड़े बुजुर्ग परिवारों के और समुदाय के लोगों के पोषण भी मिल जाते
1: हो,
0: और साथ ही में जो एकजुटता पोषण स्थिरता और सांस्कृतिक विविधता को उत्सव भी है कि नहीं,
1: सांस्कृतिक विविधता का उत्सव भी है, ये तो बड़ी बात है। और अब अपन अंतरराष्ट्रीय फल दिवस को इतिहास के बारे में थोड़ी जान लेते का नहीं,
0: बिल्कुल जान लेते हैं संतु भैया।
1: कब हो कि अप्रैल 2007 में वो बर्लिन स्थित एलिस सेलमन यूनिवर्सिटी थी का नहीं, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस, तो वहाँ समाज
0: को एक छात्र था
1: याद आ गया आपको,
0: याद आ।
1: अब एक साथ वो भोजन करण के उद्देश्य से सामाजिक एकता के बढ़ावा देने के लाने इकट्ठे भए थे,
0: बिल्कुल।
1: आगे कहो
0: तो भैया उनके मन में एक विचार आओ,
1: कौन सा विचार?
0: और भैया विचार जो हतो कि प्रकृति में सामंजस्य स्वास्थ्य और शांति के प्रतीक के रूप में फलन के सम्मानित करण के लाने एक उत्सव मनाने चाहिए।
1: अरे वाह,
0: और वो दिन हतो भैया 1 जुलाई 2007 है ना,
1: और जो उत्सव बर्लिन के क्या होता
0: भैया माउर पार्क
1: है ना, हाँ उसमें आयोजित करोगे तो जो उस समय और जो पहले विभाजन को स्थान है तो पहले थो
0: पहले।
1: मगर अब सद्भाव और प्रेम को स्थान होगा,
0: बिल्कुल।
1: तब ऐसे तो अंतरराष्ट्रीय फल दिवस एक वैश्विक मतलब उत्सव बन गया है,
0: बिल्कुल बन गया है,
1: जिसके कार्यक्रम और भी कई देशन में आयोजित करे जात
0: हैं, बिल्कुल करे जात हैं। और भैया जैसो कि अपन ने पहले भी बताए थे कि 20वें अंतरराष्ट्रीय फल दिवस 2026 को विषय का है पौधे लगाओ सीखो जश्न मना, तो जो वर्ष को विषय संयुक्त राष्ट्र द्वारा भैया 2026 को अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित करने से भी जोड़ो है।
1: अरे क्या बात है, जो कि कृषि के क्षेत्र में महिलाओं के लाने भाई संवर्धन की आवश्यकता होता का नहीं, और टिकाऊ वैश्विक खाद आपूर्ति के निर्माण में भी उनकी भूमिका दर्शात है ये तो।
0: बिल्कुल दर्शात है भैया। और अब पौधा लगाओ सीखो जश्न मनाओ के बारे में कुछ विस्तार से जान लेते अपन, है ना?
1: अच्छा, विस्तार से जान ले
0: भैया। पौधा लगाओ को मतलब है आप अपने घर पर या सामुदायिक उद्यान में या फिर कोई भी शैक्षिक कार्यक्रम के माध्यम से पौधा लगा सकते।
1: और किसान भाइयों सीखो को मतलब है आप फलों की खेती करो, उनके मूल और सांस्कृतिक संदर्भ में उनके अच्छे गुणों के बारे में जानकारी प्रदान करो। अब जश्न मनाओ को मतलब क्या है बताओ?
0: आप भोजन के
1: साझा करो।
0: तो भैया एक साथ ही में आप अपने दोस्तों और परिवारों के साथ मिलन समारोह आयोजित करके सामुदायिक कार्यक्रमों के माध्यम से फलों की सराहना करके लोगों की भागीदारी के प्रोत्साहित कर सकते हैं,
1: बिल्कुल कर सकते हैं। काहे से कि जो दिन लोगों के परिवार दोस्तों और अजनबियों के साथ फल साझा करके सामाजिक जुड़ाव भी होता है और सहानुभूति भी के बढ़ावा मिला था,
0: बिल्कुल,
1: जिससे सामुदायिक जो है भावना और सद्भावना के सिद्धांत को भी बल मिला था,
0: बिल्कुल। और अंतरराष्ट्रीय फल दिवस के ये सब उद्देश्य भी है ना, काहे से कि जे फलों के पोषण मूल और संतुलित आहार में उनके स्थान के बारे में जागरूकता बढ़ाते।
1: तो किसान भाइयों बहनों चाहती अपनी हमारी आज की चर्चा जो को विश्व का बहन
0: अंतरराष्ट्रीय फल दिवस।
1: चलो तो अब जा देखो अपने जात एक छोटो सो अपन कुछ गीत सुन ले। ये फरमाइश आई है टावर स्ट्रीट न्यूटन से निसार खान, उमेश गुप्ता, शैलेंद्र राय, अमरनाथ, मोनू हरड़े, महेश शुक्ला, सतीश साहू, बच्चा सेठ व मित्रगण, इन्होंने फरमाइश भेजी है कि हमको कोई भी अच्छा सा देवी गीत सुना दे।
0: तो चलो सुना देता।

0: जय दुर्गे, जय मात भवानी, जय दुर्गे। ये मालूम किसकी आवाज में था बहन?
1: किसकी आवाज में था?
0: रुद्र दत्त की आवाज में था।
1: अच्छा,
0: और चलो अब जान की बिरिया हो गई है, और जात जात हम बस एक ही बात कहें हमारे किसान भाइयों से, आपसे भी। हाँ। कहें बताएं किसान भाइयों, आप खुश रहें।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसानवाणी, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र का प्रसारण। रात्रि के 8 बजे हैं, हम लेकर हाजिर हैं कार्यक्रम शीर्षक संगीत।

आप सभी का स्वागत है आज के शीर्षक संगीत में। कार्यक्रम को लेकर आज मैं आपकी रेडियो मित्र विजेता देशपांडे स्वीकारिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।

श्रोताओं, शीर्षक संगीत केंद्रित होता है एक शब्द पर, शब्द जिनके न जाने कितने अर्थ अलग अलग संदर्भ में हो सकते हैं। रहीम जी का दोहा तो आपने भी सुना होगा कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे मोती मानुस जोन। पानी का इतनी खूबसूरती से महत्व बताया गया है कि वाकई जिंदगानी का सबसे अहम हिस्सा है पानी।

खारे पानी की बात करें तो पृथ्वी का 70% हिस्सा समुद्र के खारे पानी से घिरा है। पृथ्वी पर कुल 3% भाग ही पीने के पानी के लिए उपयोगी है। और मानव शरीर की बात करें तो पानी शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, साथ ही पोषक तत्वों और ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक पहुंचाता है और पाचन में मदद करता है। यानी पानी की पर्याप्त मात्रा शरीर के लिए बेहद जरूरी है। ठंडे ठंडे पानी से

पानी ही एकमात्र ऐसा तत्व है जो पृथ्वी में तीन अवस्थाओं में पाया जाता है। पानी की महत्ता इस बात से समझिए कि पानी ठंडा हो तो जमा कर मारता है, पानी गर्म हो तो जला कर मारता है, पानी ज़्यादा हो तो डुबा के मारता है, और पानी अगर ना हो तो प्यासा मारता है। इसलिए तो कहते हैं कि पानी का हर रंग बेहद अनोखा है।

पानी रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन तत्व है, जिसमें मिल जाए उसे अपना लेता है। तभी तो पानी की बूंद कीचड़ में गिरे तो कीचड़, गंगा में गिरे तो गंगा, तवे पे गिरे तो भाप और पत्ते पे गिरे तो मोती बन जाती है। यानी फर्क सिर्फ माहौल का है, इंसान भी वैसा ही बनता है जैसे उसकी संगत होती है। प्रकृति के इस अनमोल उपहार की सीखें अपने मन में उतारिए, यकीनन आप अपने मन को बेहद निर्मल महसूस करेंगे।

अपनी दिनचर्या की कल्पना करिए बिना पानी के, अपने शरीर की कल्पना करिए बिना पानी के। जी हाँ, हमारे लिए जीना असंभव होगा। पानी का निर्माण करना भी असंभव है, तो संभव क्या है? संभव है पानी की बचत करना, छोटे स्तर पर भी और बड़े स्तर पर भी। दैनिक दिनचर्या में शामिल करिए बचत से जुड़ी आदतें। जरूरत के मुताबिक पानी के इस्तेमाल को अपनाएं। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और जल बंधान के जरिए संचित करिए वर्षा के जल को। आज जरूरत है कि हम टिप टिप बरसते पानी की बूंद बूंद का संचय करें।

बाढ़ और सूखा, ये दोनों स्थितियाँ पानी के कारण निर्मित होती है। और जब मन की स्थिति की बात करें तो आँखों से बहता पानी कभी खुशी बयां करता है तो कभी दर्द बनकर बहता है। और जब मनपसंद स्वाद की बात हो तो मुंह में पानी आ ही जाता है। और यही पानी जब शरीर के किसी अंग में जमा होने लगे तो रोग के लक्षण बताता है। यानी पानी के साथ सावधानी बेहद ज़रूरी है, कहीं ये भावनाओं में आकर आँखों से छलक न जाए।

चलते चलते हम यही कहेंगे कि जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन में कभी समाधान नहीं आ सकते। जीवन में शांत होकर सोचिए, सभी समस्याओं के हल मिल जाएंगे। मन को हमेशा पानी की तरह निर्मल रखिए। इसी के साथ स्वीकारिए आज के इस कार्यक्रम से अपने रेडियो मित्र विजेता देशपांडे का नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शीर्षक संगीत, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। रेडियो प्रसारण सेवा है आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र के। रात्रि के 8:30 और 30 सेकंड हुए हैं और हम लेकर हाजिर हैं कार्यक्रम सबरस।

0: दिल से चाहने की मुझे सजा देते हो, मैं रोता हूं और तुम मजा लेते हो।
1: तेरी शिकायत कर दूं

अभी आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह की आवाज़ में ये गीत। सबरस का अगला गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं कैलाश खेर की आवाज़ में।

सबरस अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से। कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं अजीम मलिक की लिखी रचना, आवाज है चंदन।

0: इसी गीत के साथ कार्यक्रम सबरस यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 हुए हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता की। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक वर्ष में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। केंद्र ने देश भर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुरू किया। मौसम विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 मुकाबले में स्पेन और ऑस्ट्रिया होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
2: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
2: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है। लेकिन जैसे कहा जाता है, When the going gets tough, the tough get going। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनाते हुए अपनी इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय

0: साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। श्री मोदी ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
1: प्रधानमंत्री ताकाइची और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज

0: राष्ट्रों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलों पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
1: नेताओं ने व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा, सप्लाई चेन की मजबूती, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और लोगों के बीच आपसी आदान प्रदान जैसे कई क्षेत्रों में हमारे द्विपक्षीय संबंधों की मजबूत नींव पर चर्चा की। साथ ही दोनों नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र और उससे अलग शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित करने में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की भूमिका को स्वीकार किया।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि निवेश भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख संचालक बनकर उभरा है। वे आज एक निजी टेलीविजन चैनल द्वारा आयोजित एशियाई सदी को आकार देने संबंधी विषय पर भारत जापान रणनीतिक संवाद को संबोधित कर रहे थे।
2: ट्रेड ऑल्सो इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ दिस पार्टनरशिप।
3: भारत के कुशल कार्यबल के लिए अवसर खुल रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का ध्यान सभी के लिए समान विकास सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। निवेश भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख संचालक बनकर उभरा है और इससे द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।
2: ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट डायमेंशन।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। नई दिल्ली में श्री पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में देश की तेल शोधन क्षमता को 30 करोड़ मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष की स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने लंबे समय तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नियंत्रित किया। श्री पुरी ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में पेट्रोल की कीमत में केवल 5.58% और डीजल की कीमतों में 6.23% की ही वृद्धि हुई है। नागर विमानन मंत्रालय ने देशभर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य, आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। भारतीय रेलवे ने इस वर्ष जून में पिछले वर्ष इसी महीने की तुलना में माल ढुलाई में 4% की वृद्धि दर्ज की है। रेल मंत्रालय ने बताया कि रेलवे ने पिछले महीने 142 करोड़ टन से अधिक माल की ढुलाई की। इस वर्ष जून में यात्री आवागमन में भी लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। पंचायती राज मंत्रालय कल नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा। कोयला मंत्रालय ने कोयला

0: खंड आवंटियों को अधिक वित्तीय सुविधा प्रदान करने और कोयला क्षेत्र में व्यापार को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार प्रस्तुत किया है। कोयला खंड आवंटन संशोधन नियम 2026 के अंतर्गत मंत्रालय ने कोयला खंड और खनिज विकास तथा विनियमन अधिनियम 1957 के अंतर्गत आवंटित कोयला खंडों के लिए निष्पादन बैंक गारंटी के स्थान पर बीमा गारंटी बॉन्ड के उपयोग को सक्षम बनाया है। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों के राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। केरलम में शिक्षण संस्थानों को निशाना बनाने वाले नशीले पदार्थों के गिरोहों पर राज्य पुलिस की कार्रवाई में 30 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की अवैध दवाएं जब्त की गई हैं। केरलम पुलिस के अनुसार अधिकारियों ने राज्य में 5,353 मामले दर्ज किए हैं और 5,736 लोगों को गिरफ्तार किया। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किए जाते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा नगर निगम ने स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठा अभियान शुरू किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2026-27 के अंतर्गत खंडवा नगर निगम ने पॉलीथीन लाओ चाय पाओ नाम की एक पहल शुरू की है। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक बनाना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था आज कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के पहलगाम क्षेत्र में नुनवान और गांदरबल जिले के बालताल स्थित दोहरे शिविरों में पहुंचा। एक रिपोर्ट।
1: यात्रियों का पहला जत्था आज दोपहर कड़ी सुरक्षा के बीच कश्मीर घाटी पहुंचा। पहले जत्थे में 4,822 यात्री शामिल हैं। इसमें से 2,510 यात्री पहलगाम के रास्ते से यात्रा करेंगे, जबकि 2,312 यात्री बालतल से होते हुए बाबा बर्फानी की गुफा का रुख करेंगे। नुनवन और बालतल कैंप पहुंचते ही प्रशासन ने यात्रियों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। यात्रा के मद्देनजर दोनों रास्तों पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। दोनों रास्तों पर पुलिस, अर्धसैनिक बलों और आर्मी जवानों की बड़ी संख्या में तैनाती की गई है। इसके अलावा चिकित्सा सुविधाएं, मौसम की जानकारी के लिए प्रणाली, अहम जगहों पर क्विक रेस्पॉन्स टीमें, बड़े पैमाने पे CCTV निगरानी और RFID आधारित प्रणाली भी लगाई गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं इश्फाक शाह।
0: अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि राज्य में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जमीनी आकलन जारी है और इसके पूरा होने पर केंद्र सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य आपदा मोचन बल SDRF और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF के मानदंडों के अनुसार राहत सहायता प्रदान की जाएगी। मौसम विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है।
2: विभाग ने अगले 2-3 दिनों में गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी से बहुत भारी वर्षा का अनुमान लगाया है। इसी दौरान छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, राजस्थान, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल, माहे, उत्तराखंड और विदर्भ में भी मौसम की ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। हालांकि दिल्ली में अगले 24 घंटों के दौरान आसमान में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: और अब कुछ खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात इंगलवुड के लॉस एंजल्स स्टेडियम में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। स्क्वाश में विल्वन सेंथिल कुमार और तन्वी खन्ना ने मुंबई में PSA चैलेंजर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेंथिल कुमार ने मिस्र के अब्दुल्ला हाफिज को, जबकि तन्वी ने जापान की जोई फू को हराया।

0: और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता की। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक वर्ष में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। केंद्र ने देश भर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुरू किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, आइए सुने कार्यक्रम आपके लिए।

0: Countrywide.
1: आज के फनकार कार्यक्रम के लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

लीजिए पेश है प्रोग्राम आज के फनकार। सभी सुनने वालों को राजेंद्र त्रिपाठी का नमस्कार। दोस्तों, आज के फनकार हैं जाने माने पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज।

दोस्तों, लखन नाम तो फिल्म राम लखन में अभिनेता अनिल कपूर का नाम था, लेकिन इस गाने की मकबूलियत ने पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज को सुनने वालों के दिलों में इस तरह बसा दिया जैसे सीप में मोती और किसी अंगूठी में कोई शानदार नगीना। उंगली में

0: अजीज का पूरा नाम था सैयद मोहम्मद अजीज उन नबी। शुरुआती कुछ फिल्मी गाने उन्होंने मुन्ना अजीज के नाम से भी गाए, बाद में उनकी पहचान बनी बतौर पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज के नाम से। मोहम्मद अजीज जाने माने पार्श्व गायक मोहम्मद रफी के बड़े प्रशंसक थे।
1: न फनकार तुझसा तेरे बाद आया, न फनकार तुझसा

0: नदीना
1: उंगली में अंगूठी अंगूठी में नगीना
0: उंगली में अंगूठी अंगूठी में नगीना।
2: 2 जुलाई 1954 को गुमा वेस्ट बंगाल में जन्मे मोहम्मद

0: मोहम्मद अजीज को अपने जीवन में फिल्मी गायन का पहला मौका मिला बंगाली फिल्म ज्योति से। दोस्तों, आपको यहाँ याद दिलाना चाहेंगे कि बंगाली फिल्मों में मोहम्मद अजीज के तमाम गाए गीत बेहद मशहूर हुए। उसके बाद 1984 में हिंदी फिल्म अंबर में भी उन्होंने पार्श्व गायन का सिलसिला जारी रखा, लेकिन हिंदी फिल्म संगीत जगत में उनकी पहचान बनी मर्द फिल्म के इस गाने से।
1: मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला, हे मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरे दोस्त है ऊपर वाला। मर्द टांगे वाला, ओ मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरे दोस्त ऊपर।

0: अरे क्यों भाई बादल क्यों भाई मोती, मैं सच्चे का हूँ मर्द टांगे वाला, मैं हूँ मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरे दोस्त ऊपर वाला, मर्द टांगे वाला मैं हूँ मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरा दोस्त ऊपर वाला।
1: अमिताभ बच्चन अभिनीत फिल्म मर्द का ये सुपरहिट गीत गाकर मोहम्मद अजीज रातों रात पार्श्व गायन की ऊंची पायदान पर जा पहुंचे। इस फिल्म का संगीत दिया अनु मलिक ने और लोगों ने पहले तो ये समझा कि ये गाना शब्बीर कुमार ने गाया, लेकिन जब गौर किया गया तो पता चला मोहम्मद अजीज की आवाज है और बाद में इस आवाज ने धूम मचा।

मोहम्मद अजीज का बंगाली और उड़िया फिल्म इंडस्ट्री से भी जो गहरा नाता रहा है उसका जिक्र हम शुरू में ही कर चुके हैं। हिंदी फिल्म जगत की नामी संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ भी मोहम्मद अजीज का जुड़ाव दोस्तों लंबी अवधि तक बना रहा।

मोहम्मद अजीज ने अपने गायन जीवन में अपनी समकालीन दिग्गज गायिकाओं के साथ गीत गाए। लता जी के साथ उनका गाया ये गीत हम कैसे भुला सकते हैं, जो सिंदूर फिल्म का है।

दोस्तों मोहम्मद अजीज ने, जैसे कि हम बता चुके हैं, अपनी समकालीन हिट सुपरहिट गायिकाओं के साथ भी गाने गाए हैं, तो उसमें अलका याग्निक का जिक्र ना हो तो प्रोग्राम थोड़ा अधूरा सा लगेगा। आइए सुनवाते हैं आपको बंजारन फिल्म का ये गाना।

और ये गीत है साधना सरगम और मोहम्मद अजीज की आवाजों में। आप भी याद रखेंगे क्योंकि फिल्म का नाम है याद रखेगी दुनिया।

0: इसलिए।
1: दोस्तों यहाँ ये भी जिक्र करना जरूरी होगा कि मोहम्मद अजीज ने हिंदी फिल्म जगत के तमाम बड़े सितारों के लिए पार्श्व गायन किया है, जैसे अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर, मिथुन चक्रवर्ती, अनिल कपूर और गोविंदा के साथ साथ और भी कई कलाकार हैं। ऋषि कपूर के लिए मोहम्मद अजीज का गाया फिल्म नगीना का ये गीत बेहद मकबूल रहा है।

अजीज ने विभिन्न भारतीय भाषाओं में लगभग 20,000 गीत गाए हैं। संगीतकार कल्याण जी आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आर डी बर्मन, नौशाद, ओपी नैयर, राजेश रोशन, राम लक्ष्मण और रविंद्र जैन से लेकर उषा खन्ना, आनंद मिलिंद, नदीम श्रवण, जतिन ललित, अनु मलिक, आनंद राज आनंद और आदेश श्रीवास्तव तक तमाम संगीतकारों के निर्देशन में मोहम्मद अजीज ने गीत गाकर सभी को लुभाया है, बहलाया है। अनुराधा पौड़वाल के साथ मोहम्मद अजीज का गाया ये गीत आज भी 90 के दशक के फिल्म संगीत की यादों को ताज़ा कर देता है।

मोहम्मद अजीज ने हमारे देश के अलावा विदेशों में भी जाकर मंच पर अपने कई प्राइवेट कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। उड़िया और बांग्ला भाषाओं में कई फिल्मी गाने उन्होंने अनुराधा पौडवाल के साथ भी गाए और तमाम कई फीमेल सिंगर्स के साथ भी उनके गाए गीत मकबूल हुए हैं। और जहां तक भजन का सवाल है तो आपको हम ये बता दें कि उड़िया भाषा में उनके कई भजन मशहूर रहे हैं और कई अवसरों पर गाए जाते हैं।

27 नवंबर 2018 को अचानक हुए हृदयाघात यानी हार्ट अटैक की वजह से मोहम्मद अजीज हमारे बीच नहीं रहे। दोस्तों कहते हैं ना, जिस्मानी तौर पर भले ही कलाकार हमारे बीच ना हो, लेकिन अपनी विधा के बल पर वो अपने चाहने वालों के दिलों में बसा करते हैं। इसी तरह पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज भी अपनी आवाज के जरिए हमेशा हमेशा अपने चाहने वालों के मन में जीवित रहेंगे।

0: लगे।
1: तो दोस्तों ये था आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज पर। तकनीकी सहयोग दिया वंदना ठाकुर ने और कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। अब दीजिए अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत। नमस्कार।
2: आज के फनकार।

छाया गीत के सुनने वालों को नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। तेरी यादों की डोर से बंधा मेरा मन न जाने कितने सपने बुनता रहता है। कभी तेरी एक मुस्कान इन धागों को और मजबूत कर देती है, तो कभी तेरा इंतजार इन्हें और भी अनमोल बना देता है। नजर तो नहीं आते ये प्यार के धागे, मगर हर धड़कन में इनकी छुअन महसूस होती है। शायद इसी बंधन का नाम मोहब्बत है, जो दूरियों में भी साथ निभाती है।

रोज एक ही ख्वाब मेरी आंखों में चला आता है। उस ख्वाब में तुम होते हो और तुम्हारे साथ कुछ अधूरी सी प्यारी सी बातें होती हैं। कभी तुम मुस्कुरा कर पास आ जाते हो तो कभी बिना कुछ कहे ही दिल की बात कह जाते हो। सुबह आंख खुलती है तो ख्वाब टूट जाता है, लेकिन तुम्हारी वही मुस्कान मन में ठहर जाती है। शायद इसी का नाम प्यार है, जब हकीकत से पहले कोई अपने ख्वाबों में बसने लगे।

मैंने आज दिल से तुझे अपना माना है, तेरी हर सांस को ही अपना जाना है। तू भी मेरी धड़कनों का हिस्सा बन जा, मेरे हर ख्वाब का सच्चा किस्सा बन जा। ना मैं तुझसे दूर जाऊं, ना तू मुझसे कभी, ये साथ हमारा टूटे न चाहे आए कैसी भी घड़ी। हम दोनों का ये रिश्ता बस यूं ही रहे, हर जन्म में तेरा हाथ मेरे हाथ में रहे।

अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का छायागीत कार्यक्रम में स्वागत है। तुझे देखकर मन में एक अजीब सा अपनापन उतर आता है, जैसे तेरी हर खामोशी भी मुझसे कुछ कह जाती हो। तू सावन है तो मैं किसी सूखी नदी सी हूँ, तेरे आने से ही जैसे मैं पूरी हो जाती हूँ। तेरी हंसी में मुझे अपना बचपन दिखता है, तेरी आंखों में मेरा हर सपना सजता है। और सच कहूँ तो तुझे देखते ही लगता है कि मैं तुझे युगों युगों से जानती हूँ।

मैं उस बात से अनजान हूँ जिसने मेरी रातों की नींद चुपके से ले ली। अब हर रात लंबी लगती है, जैसे समय भी मुझसे रूठ गया हो। दिल में एक अजीब सी बेचैनी है, पर वजह कोई नहीं बता पाता। खामोशी भी अब कुछ कहती सी लगती है, पर मैं समझ नहीं पाती। बस इतना एहसास है कि कुछ तो है जो मुझे अंदर ही अंदर जगा रहा है, और मैं अब उस नए एहसास को और करीब से जानना चाहती हूँ।

दो नैन है उसके, पर उनमें मेरी ही एक कहानी बसी है। कुछ उसके होठों ने कभी कहा नहीं, पर मैं उसे हर बार आंखों में पढ़ लेती हूँ। कुछ बातें वो छुपा लेता है और कुछ मैं भी मुस्कुराकर अनसुना कर देती हूँ। लिखा हुआ नहीं है, फिर भी हर एहसास मुझे साफ साफ समझ आता है, जैसे कोई अधूरी किताब हो जिसे हम दोनों मिलकर जी रहे हों, और मैं हर बार उसके नैनों में खुद को उसकी मोहब्बत बनकर देख लेती हूँ।

0: जाए रात।
1: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा, वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा, वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा, ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
0: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन
2: कौन लाया, कौन लाया?

0: रंग तरंग।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होगा।
2: भारत जापान

0: संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौता दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
0: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है। लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट अपनाते हुए अपने इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
1: भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की है। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलों पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नागर विमानन मंत्रालय ने देश भर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य, आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में यूक्रेन की राजधानी कीव में 21 लोगों की मौत हो गई है और 90 अन्य घायल हो गए। कीव में मुख्य रूप से रिहायशी इमारतों और बुनियादी सुविधाओं सहित 30 जगहों पर भारी नुकसान हुआ। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह हमला यूक्रेन द्वारा रूस के आम लोगों पर किए गए हमलों के जवाब में किया गया है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात इंगलवुड के लॉस एंजलिस स्टेडियम में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Abhineet Shukla. Prime Minister Narendra Modi has said that India-Japan relations are truly very special and there are many shining examples of the success of the economic partnership. Addressing the India-Japan Joint Economic Forum in New Delhi this evening, Mr. Modi said, "When Japan's expertise and investment combine with India's speed and scale, the entire world benefits." He said, "Both the sides today decided to make the partnership even more dynamic and profound.

ये थी ऋचा शर्मा की आवाज़, और आइए अब आपको सुनवाते हैं सुलक्षणा पंडित और आरती मुखर्जी का गाया हुआ ये गाना। लिखा है माया गोविंद ने, धुन बनाई है राज कमल ने।

0: उसकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: रंग तरंग कार्यक्रम में अब सुनवा रहे हैं राजेंद्र मेहता और नीना मेहता की गाई ये गजल।

जुबिन नौटियाल की आवाज़ में आपने सुना ये गाना। गुरप्रीत सैनी के बोल थे, रोचक कोहली का संगीत था। और आइए अब आपको सुनवाते हैं दिलराज कौर की आवाज़, मोहसिन नकवी का कलाम।

ये थी रंग तरंग कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती। रंग

अभी आपने सुना यादों की बारात फिल्म का गाना किशोर कुमार और मोहम्मद रफी की आवाजों में, मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे और राहुल देव बर्मन का संगीत। और अब सुनते हैं फिल्म उमर कैद का ये गाना, लता मंगेशकर मुकेश का गाया हुआ, गुलशन बावरा का गीत, सोनी ओमी का संगीत।

0: फिल्म सावन का ये गाना आप सुन रहे थे, जिसे लिखा था असद भोपाली ने, धुन बनाई थी हंसराज बहल ने, आवाज थी लता मंगेशकर की।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी

0: निर्धार प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
1: यादों की महफिल कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं थोड़ी सी बेवफाई फिल्म का गाना, लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वरों में। गीत लिखा है गुलजार ने, धुन बनाई है खयाम ने।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में आप सुन रहे थे वारिस फिल्म का ये गाना। वर्मा मलिक के बोल, उत्तम जगदीश का संगीत था। और आइए अब सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में फिल्म सौदागर का ये गाना।

आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी और सुलक्षणा पंडित की आवाज़ों में फिल्म फांसी का ये गाना, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

योगेश की शब्द रचना, सचिन देव बर्मन का संगीत, किशोर कुमार की आवाज़ में आपने सुना फिल्म मिली का ये गाना। और आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म राजपूत का गीत, किशोर कुमार और साथियों के स्वरों में। आनंद बख्शी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन।

जावेद अख्तर के बोल हृदयनाथ मंगेशकर का संगीत, फिल्म मशाल का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में। ये थी आज की यादों के महफिल की अंतिम प्रस्तुति। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध।

आप सभी को राजुल का प्यार भरा नमस्कार। सुरीला सफ़र कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में जो इबारत हमने फेसबुक पर पोस्ट की है वो आपने पढ़ी और बहुत सारे संदेश भेजे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिन लोगों ने अभी नहीं पढ़ी है उनके लिए हम एक बार यहाँ पढ़ देते हैं। खिलते नगमों की कलियाँ चुनने वाली दिलकश बहार का मौसम, 100 सालों से बंधन अनजाना बांध के चलने का मौसम। ये कहता है दिल थाम लोगर, रंग साथ अभी खिल जाएंगे, बन सुगंध सुमन मिल जाओ तो सब एक ताल बंध जाएंगे। रजनी गंधा संग खिलता मन, बांधे अनजाना सा बंधन, ये मौसम धीरे धीरे से जीवन में घुल मिल जाता है, पर जाता है तो बीते लम्हों की कसक छोड़ कर जाता है। तो ये है आज की इबारत, और इस इबारत को लेकर बहुत सारे गानों के बारे में भी आपने कहा है। तो बस ये देखना है कि आज जो गाने प्ले होने वाले हैं उनसे आपकी लिस्ट कितनी मैच कर रही है, हमें ज़रूर बताइएगा। हो सकता है कि आपने अभी अभी जो गाना सोचा हो वो हमारी इस लिस्ट में हो, तो अगर अभी भी कोई दिमाग में गाना आ रहा हो तो जल्दी से हमें बताएं। बहरहाल आज मौसम को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं और हमारे श्रोताओं ने भी मौसम के बारे में कई संदेश

0: भेजे हैं। एक संदेश में कहा है कि एक हम हैं जो उदास होकर चुपचाप अपने काम कर रहे हैं, और आप कितनी प्यारी सी इबारत लेकर आई हैं, जबकि हम जानते हैं कि ऐसा करना ठीक नहीं है। कितना प्यारा मौसम और प्यारा सा विविध भारती का साथ, फिर भी ना जाने क्यों ये दिल बार बार उदास हो जाता है। पर हमने अपने दिल से कह दिया कि हमें मुस्कुराना है, और हमें उदासी दूर होती नज़र आई, और हम हो गए शामिल सुरीरा सफ़र में। वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे लिखते हैं कि आपकी इबारत में हमें फूल और कलियां नज़र आईं, तो हमने अपने गमले में एक बात नोटिस की। 3 दिन से एक हिबिस्कस यानी गुड़हल के एक पौधे में 3 दिन से तीन तीन फूल खिल रहे हैं। आज तीसरा दिन है और कल चौथे दिन के लिए भी उसमें 3 कलियां हैं। इन छोटी छोटी बातों पर हमारा ध्यान नहीं जाता, पर कभी कभी ये सब देखना भी अच्छा होता है, क्योंकि इस बहाने हम प्रकृति से जुड़ते हैं, और फिर ये पौधे तो कितनी खुशियाँ देते हैं हमको। बहुत सुंदर बात कही आपने, और संदेशों में बहुत सारी बातों के साथ साथ ये भी कहा गया है कि इस कार्यक्रम में विविध भारती और उसके श्रोता साथ साथ मिलकर चलते हैं, तो मौसम के साथ सजन का लुत्फ ही कुछ और है। न जाने कितनी गीत कविताएं इनके सानिध्य में परवान चढ़ी हैं। कवि और गीतकारों की कलम का जादू जब कोरे कागज पर उतरता है, तो सावन भादो बरखा पतझड़ हर मौसम के गीत बन जाते हैं। मौसम जीवन में वो सब अनुभूतियाँ देता है जिसे हम खुशी का नाम दे सकते हैं। शायर बशीर बद्र के माध्यम से कहें तो, अजब मौसम है मेरे हर कदम पर फूल रखता है, मोहब्बत में मोहब्बत का फरिश्ता साथ चलता है। बहुत सुंदर। तो मौसम की इतनी बातें हो गई हैं, तो क्यों ना उन सभी गीतों पर एक नज़र डालते चलें जो कि आपकी पसंद हैं। एक एक कर उनकी एक झलक सुनते जाते हैं।
1: झूमता मौत।

0: दरअसल मौसम को लेके इतने खूबसूरत गीत हैं कि अगर हम उनको थोड़ा थोड़ा भी प्ले करते चलें तो आज के कार्यक्रम का वक्त ही पूरा हो जाएगा। इसलिए कुछ गीतों को हमने छांट कर लिया है, चुन कर लिया है। अब जो गीत हमने चुना है वो तो आपको सुनवाएंगे ही, आपसे पूछेंगे फिल्म का नाम और कलाकारों के नाम। लेकिन एक सवाल और है, आज की इबारत में शुरुआत में एक गीत के अंतरे की कुछ पंक्तियाँ छिपी हुई हैं। आपको वो गीत पहचानना है, फिल्म का नाम बताना है और साथ ही वो अंतरा भी बताना है कि वो अंतरा असल में क्या है। उसमें से कुछ शब्द लिए हैं अंतरे के। तो अब ये गीत और बताइए फिल्म का नाम और मुख्य कलाकारों के नाम।
1: देखो।

बहुत बहुत शुक्रिया हमारे श्रोताओं के उन जवाबों के लिए जो उन्होंने तुरंत भेजे हैं। बताया है कि फिल्म ओपरा हाउस का ये गाना जिसमें प्रमुख कलाकार रहे अजीत और बी सरोजा देवी। और जो दूसरा सवाल हमने पूछा था, मैं पल दो पल का शायर हूँ गीत की ये कुछ पंक्तियाँ थीं, कुछ शब्द असल में चुने थे उसके एक अंतरे से। और बताया है कि कभी कभी कभी फिल्म में अमित जी स्टेज पर गा रहे हैं। हमने ये भी कहा था कि अगर वो अंतरा आपको याद आ रहा हो तो ज़रूर लिखें, अभी कोई वैसा जवाब दिख नहीं रहा है। वैसे मौसम का जब भी हम जिक्र करते हैं तो खूबसूरती का और तमाम उन चीज़ों का जो प्रकृति से जोड़ती हैं हमें, उन सब की बातें करते हैं, लेकिन साथ ही साथ मौसम एक चीज़ और सिखाता है कि आज जो है वो कल नहीं रहेगा और जो कल है वो परसों नहीं रहेगा। यानी निरंतर बदलाव की ओर भी संकेत करता है मौसम, और ये भी बताता है कि कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले। तो चलिए अब अगले गाने की तरफ बढ़ें, लेकिन उससे पहले ये संदेश है। एक श्रोता ने कहा है कि आज की ये कविता में इबारत जीवन के उस सुखद दौर का उत्सव है जो आते ही चारों तरफ सकारात्मकता बिखेर देता है, लेकिन जाते जाते हमें यादों के साए में छोड़ जाता है। ये पद्य हमें याद दिलाता है कि जीवन में अच्छे दिन या खूबसूरत लम्हे हमेशा नहीं ठहरते। उनका आना जितना सुखद होता है, उनका जाना उतना ही भावुक कर देने वाला होता है। कविता में प्रकृति के मौसम को मानवीय भावनाओं, विशेषकर प्रेम और विरह से बेहद खूबसूरती से जोड़ा गया है। क्या बात है। एक और श्रोता कह रहे हैं कि मौसम अपने साथ बहुत से परिवर्तन लेकर आता है जो हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा देता है। जब चारों तरफ फूलों की सुगंध और हरियाली बिखरी होती है तब हम भी मन से इसमें घुल मिल जाते हैं, पर प्रकृति हमें समय समय पर अपने नए नए रूप से अवगत कराती रहती है और हमें ये संदेश देती है कि हर मौसम कुछ समय के लिए आता है, इसके बाद फिर परिवर्तन है और इसमें हमें अपने आप को ढालना है। हर मौसम हमें कुछ देकर जाता है, इसकी यादें हमारे मन मस्तिष्क पर छा जाती हैं। बस

सुंदर बात कही आपने। एक और श्रोता ने कहा है कि प्रकृति का सौंदर्य केवल आंखों को नहीं आत्मा को भी स्पर्श करता है। फूलों की मुस्कान, रजनीगंधा की भीनी सुगंध और सुहाने मौसम का यह सम्मिलित स्पर्श जीवन के उन अनमोल क्षणों का स्मरण कराता है जहाँ सुख किसी बड़े उत्सव में नहीं बल्कि प्रकृति की सहज छटा में छिपा होता है। जब चारों ओर सृष्टि अपने सौंदर्य का संगीत बिखेरती है तब मन भी अनायास ही भावों के सुर छेड़ देता है और जीवन एक मधुर गीत सा प्रतीत होने लगता है। बहुत सुंदर बात कही। तो चलिए इसी बात पर एक सुंदर सा गीत आपको बताना है कि फिल्म का संगीत किन्होंने दिया था और प्रमुख भूमिकाएं किन्होंने निभाई थी।

देवानंद और आशा पारेख ने जब प्यार किसी से होता है फिल्म में प्रमुख भूमिकाएं निभाई थीं। बहुत बहुत धन्यवाद जवाब के लिए। लेकिन हमने संगीतकार का नाम भी पूछा था, शंकर जयकिशन का संगीत था इस फिल्म में। और हमारे एक श्रोता ने कहा है कि मौसम बादलों बयारों और बौछारों का है, भीगने का है, यादों की रिमझिम बूंदों की जुगलबंदी में कुछ गुनगुनाने का है। जिस तरह पावस के बादल धरती का मैल धोकर उसे उजला कर देते हैं, उसी तरह हमारे मन की परतों पर ठहरा आपाधापी अशांति और बेचैनी का गुबार भी बौछारों से धुलकर उज्जवल हो सकता है। हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि भाई मौसम की बहुत बातें हो रही हैं और बारिश डर डर कर आ रही है। तो यकीन मानिए कि बारिश को हम बुला रहे हैं, बल्कि डर नहीं रही है, बल्कि आने के लिए मजबूर होती जा रही है। और बारिश

जल्द ही आ जाए, हम तो यही दुआ करेंगे। एक और श्रोता ने बताया है कि वो आज शिमला में मौसम बहुत अच्छा हो गया है और मेलोडियस सॉन्ग सुनते हुए बहुत अच्छा लग रहा है उन्हें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे श्रोताओं के इन संदेशों के साथ ही साथ मौसम की जो बातें चलती जा रही हैं उनमें बहुत सुंदर तरीके से गीतों की इबारत पिरोई है हमारे एक श्रोता ने। लिखते हैं कि हे विविध भारती, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, सालों पुराना, मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना। 100 साल पहले तो नहीं, 66 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। तो आओ मिल जाएं हम सुगंध और सुमन की तरह, एक हो जाएं चलो हवा के संग, प्रसारण तरंगों की तरह। क्या बात है, पिछले 3 दिनों से मौसम ने भी करवट ली है। भीगा भीगा दिनों भीगा भीगा प्यार का समय है, सुहाना सुहाना बरसात के नशे में जहाँ है, किसी को किसी की खबर ही कहाँ है। बीते हुए लम्हों की कसक याद करते हुए तड़प ये दिन रात की, कसक ये जिन बिन बात की। हे विविध भारती, तुझे सुनने का भला ये रोग है कैसा, आप तो बता दे। भाई रोग तो नहीं है, तो आपकी बातों से लगता है कि किसी मर्ज का इलाज है विविध भारती सुनना। हमने सही कहा ना। एक और श्रोता कह रहे हैं कि मौसम का मिजाज समय अनुसार बदलता जाता है और इसके अनुरूप अपने आप को ढाल लेता है। बहारों का मौसम रंग बिरंगे फूल और सुगंध मन मस्तिष्क में घुल जाता है, धीरे धीरे ये बंधन दूर चला जाता है और उन लम्हों को याद करते रह जाते हैं। तो याद की बात हुई है, अब इस गीत को जरा सुनते हैं। आप हमें ये बताइए कि इस फिल्म में जो प्रमुख कलाकार हैं उनके नाम क्या थे?

जब आप मिला, वासु की भूमिका कमल हासन ने निभाई थी और सपना बनी थी रति अग्निहोत्री फिल्म एक दूजे के लिए का ये गाना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। कितनी खूबसूरत पंक्तियाँ लिखी हैं आनंद बख्शी साहब ने, दुनिया में प्यार की एक ही बोली। तो बताइए कि उस एक ही बोली के साथ साथ कितने सारे गीत बनते चले जाते हैं, और वो कौन सा गीत है जो आपको सबसे ज़्यादा मन को लुभाता है? बताइए हमें कि इस भाव के साथ लिखा गया वो कौन सा गीत है जो आपको सबसे ज़्यादा लुभाता है। हमारे श्रोताओं के कुछ संदेश हैं। मन किसी गीत नगमे की तरह खिल रहा है और किसी खास इंसान, अनजाना रिश्ते की तरफ, अपने भीतर छिपे किसी एहसास की तरफ आकर्षित हो रहा है। ये मौसम की इनायत भी हो सकती है और प्यार का एहसास भी। हमारे एक श्रोता ने बताया कि सुरीला सफ़र शुरू होते ही बनारस में बारिश शुरू हो गई। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई बारिश की, ये मौसम की पहली बारिश, बहुत बहुत मुबारक। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि आज तो सुरीला सफर में शायद विवाह की बात होगी। एक ऐसा रिश्ता अनजान होते हुए भी एक दूसरे को सब कुछ सौंप देना, प्यार की असीम खुशी के साथ जीवन जीने की इच्छा और 7 जन्म तक साथ निभाने का वादा करना ही जीवन है। एक और श्रोता ने कहा है कि कहा जाता है कि बंधनों के कई रूप होते हैं, 7 फेरों का बंधन, 7 जन्मों का बंधन, जन्म जन्मांतर का बंधन, परंतु एक बंधन और हो भी होता है, मन से मन का। बहुत सुंदर। रेशम सा कोमल बहते हुए नीर सा पवित्र, हवाओं में खुली हुई चंदन और फूलों की महक सा जो मन से मन की डोर को बांध कर रखता है। जब यह बंधन बनता है तो एक चुप सा मौन सा बन जाता है। यहाँ दिव्य प्रेम की अनुभूति होने लगती है जिसमें किसी अग्नि साक्षी, किसी हवन, यहाँ तक कि किसी सात वचन की भी कोई भूमिका नहीं है। यहाँ जो प्रेम डोर में बंधन होता है उसे आपस में केवल मन से मन को एक मौन ने स्वीकार किया है। न बांधने की चाहत, न छूटने का डर, क्योंकि ये है मन से मन का बंधन। बहुत सुंदर बात कही आपने। और अब अगला गीत सुन रहे हैं, सुनिए और बताइए कि इस फिल्म के संगीतकार कौन हैं। और हाँ, मौसम को लेकर जो प्यार की बोली की बात है, उसमें आपको सबसे सुंदर, सबसे प्यारा, मन के करीब गाना कौन सा लगता है?

धरती पे वहाँ एक अब्र जवां, देखो तो जरा क्यों झुकने लगा, ओ हो, और देख के ये क्यों दिल अपना कुछ घटने लगा, कुछ रुकने लगा।

इकबाल कुरैशी का संगीत था इस फिल्म में लवन शिमला का। ये गाना आपने सुना मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में। और हमने जो गानों के का जिक्र किया था कि ऐसे दिल के बोल, दिल की प्यार की बोली बोलने वाले कौन से गाने आपको पसंद हैं, तो हमारे श्रोताओं ने कई गाने, बड़े सुंदर सुंदर गाने भी लिख भेजे हैं। मीठे बोल बोले बोले पायलिया, और पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है, रफ़ी जी, सुमन जी, शगुन फिल्म का गाना, और एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है। एक और श्रोता ने लिखा है कि आना तो आके कभी अब जाना नहीं। एक श्रोता लिख रही है कि बाहर बरसात हो रही है और रेडियो सेट पर गानों की क्या बात है। एक और श्रोता ने बताया, नज़रों से कह दो प्यार में, मिलने का मौसम आ गया। एक श्रोता पूछ रहे हैं कि रुम्बा कहाँ की भाषा है, इसका क्या मतलब है जी। तो अच्छा होगा कि हमारे जो कोई दक्षिण भारतीय साथी इस समय हो फेसबुक पर वो बताएं। एक बड़ा खूबसूरत सा गाना हमारे एक श्रोता ने लिख भेजा है, अरे ओ शोख कलियों मुस्कुरा देना, जो वो जब आए, सुनो फूलों महक अपनी लुटा देना, वो जब आए। फिल्म जब याद किसी की आती है का ये बड़ा ही सुंदर सा गीत इन्होंने हमारे साथ साझा किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। एक श्रोता बता रहे हैं कि फिल्म एक दूजे के लिए मैंने 1982 में पहला मैटनी शो देखा था, उस समय मैं फोर्थ ईयर कॉलेज में था। इस फिल्म ने सभी को पागल बना दिया था। और बहुत सारे संदेश और भी हैं। हमारे एक श्रोता ने कहा है कि मौसम अंगड़ाई में गदराई वसुधा के रूप सौंदर्य से बौराए आशिक मिजाजी दीवानगी को और भी दहनशील बनाती इबारत है, सुमन सुगंध व्याप्त कुसुम दल के मधुरस पान कराती और प्रेम रस बिखेरती इबारत में दीवानगी की हदें पार हो जाएं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। एक और श्रोता ने कहा है कि प्रकृति का सौंदर्य, फूलों की मुस्कान एवं भीनी खुशबू और मौसम का मनमोहक मिजाज आपस में मिलकर एक ऐसी जीवंत कविता रचते हैं जो तन और मन को गहराई से भिगो देती है। ये वो त्रिवेणी है जहाँ हर एक तत्व दूसरे का पूरक बनकर इस धरा को स्वर्ग जैसा अनुभव कराता है। सौंदर्य, सुगंध और मौसम के संगम का सीधा असर हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। क्या बात कही है, बदलते मौसम के साथ प्रकृति का मिजाज भी बदलता है। आसमान में तैरते बादलों की लुका छिपी कभी रिमझिम फुहारें और क्षितिज पर बिखरती सूर्य की किरणें ऐसा समा बांधती हैं कि प्रकृति का हर कण जीवंत हो उठता है, जो आसमान के साथ जीवन में भी सतरंगी इंद्रधनुष रच देता है। तो बताइए कि ये जो इंद्रधनुष रचता है सतरंगी आसमान में बारिश के दिनों में, उस इंद्रधनुष के साथ रंगों का प्रयोग इस गाने में तो हो ही रहा है जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं।

0: और कहाँ कहाँ पर होता है। और क्या आज भी आप वैसे ही ललक कर इंद्रधनुष देखने छत पर जाते हैं या बाहर निकलते हैं जैसे बचपन में जाया करते थे?
1: मैंने

सलिल चौधरी का संगीतबद्ध किया हुआ ये सुरीला सा गाना आनंद फिल्म से मुकेश की आवाज़ में आपने सुना, और बहुत सारे श्रोताओं ने बताया वो गाना जो उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद है। एक श्रोता ने लिखा है कि जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा, ये भी मुझे पसंद है। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि इस मौसम का सबसे बेहतरीन सुंदर गीत जो मेरा और विविध भारती का पेटेंट परमानेंट गीत है, रिमझिम गिरे सावन सुलग सुलग जाए मन। इस गीत का फिल्म का नाम मैंने विविध भारती रखा है, वैसे इस फिल्म का नाम है मंजिल। क्या बात है।

सलिल चौधरी का संगीतबद्ध किया हुआ ये सुरीला सा गाना आनंद फिल्म से मुकेश की आवाज़ में आपने सुना, और बहुत सारे श्रोताओं ने बताया वो गाना जो उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद है। एक श्रोता ने लिखा है कि जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा, ये भी मुझे पसंद है। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि इस मौसम का सबसे बेहतरीन सुंदर गीत जो मेरा और विविध भारती का पेटेंट परमानेंट गीत है, रिमझिम गिरे सावन सुलग सुलग जाए मन। इस गीत का फिल्म का नाम मैंने विविध भारती रखा है, वैसे इस फिल्म का नाम है मंजिल। क्या बात है।

अगर आपको पता हो तो हमें ज़रूर लिख भेजें। एक और श्रोता ने केदारनाथ फिल्म के गाने का जिक्र किया है, काफिराना सा है इश्क है या क्या है, ऐसे तुम मिले हो जैसे मिल रही हो इत्र से हवा, बहुत सुंदर गाना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, ये इनका गाना बहुत इन्हें प्रिय है। तमिल भाषा का शब्द है रुम्बा, हमारे एक श्रोता ने बताया है। और एक और श्रोता कह रही हैं कि आपकी दुआ का असर हुआ है, कल बनारस में रात को 1 घंटा रिमझिम बारिश हुई थी, हमारे सभी पेड़ पौधे बारिश के पानी से भीग गया था, जैसे खिल गया सब पेड़ पौधे, बनारस में मौसम सहनीय हो गया है, आपको ढेर सारा शुभेच्छा। आप नहीं वर्षा के बाशिंदों को दुआ भेजिए जी, ज़रूर वहाँ बारिश होगा। क्या बात है भाई, हम तो बिल्कुल भेज रहे हैं अपने उन सभी श्रोताओं के लिए, ठंडे ठंडे बादल वहाँ तक पहुँचे। और अब ये गाना आप सबके लिए, ज़रा इस गीत को सुनिए, फिल्म का नाम और प्रमुख कलाकारों के नाम बताइए।

नवाब कई देखने को मिले। इंद्रधनुष को देखना अच्छा लगता है बचपन में भी और अब भी, इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। और एक और श्रोता ने बताया कि मैं अमेरिका के नियाग्रा फॉल देखने गई थी, वहाँ मैंने एक ही जगह पर ही छोटे छोटे बहुत से इंद्रधनुष हर थोड़ी थोड़ी दूर पर देखे, जो बहुत अजूबे से लगे। वाकई हम तो सोच रहे हैं कि क्या नज़ारा होगा वो। एक और श्रोता ने कहा है कि असल जिंदगी में मुंबई में इंद्रधनुष नहीं दिखता, आज का प्रोग्राम मुझे प्रोत्साहित कर रहा है कि मुंबई से बाहर जाके इंद्रधनुष देखूं। क्या बात है। एक और श्रोता ने कहा है कि इंद्रधनुष जब भी बादलों से झांकता था हम रंग गिनने लग जाते थे, शहरों में कम दिखाई देता है, मिस यू। सच में इंद्रधनुष जब भी दिखता है तो लगता है वाह वो दिन लौट आए। एक और श्रोता ने कहा है कि हम तो अभी भी इंद्रधनुष उतनी ही ललक के साथ देखते हैं, और एक बार तो दो एक साथ इंद्रधनुष निकले थे तो इच्छा भी मांग ली। हाँ, ये टोटका तो बहुत ही ज़्यादा कारगर होता था, और कितना इसको जो सबसे पक्की सहेलियाँ होती थी वो तुरंत दौड़कर बुला ले जाती थी कि चलो चलो दो इंद्रधनुष निकले हैं, जो मांगना है मांग लो। और बहुत बार मांगा जाता था कि भाई गणित का पर्चा बड़ा ख़राब होने वाला है, नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो वो उसमें अच्छे नंबर आ जाएँ, या कि हमें ये ड्रेस मिल जाए, कुछ इस तरह की ख्वाहिशें होती थी। आपने क्या कभी ऐसी कोई ख्वाहिश की है हमें ज़रूर बताइएगा। एक और श्रोता कह रहे हैं कि रुम्बा ये तमिल शब्द है, मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत या बहुत ज़्यादा। एक और श्रोता ने कहा है रंग तो जीवन शैली का अभिन्न अंग है, शिक्षा हो, सजावट हो, प्रकृति हो, विज्ञान हो या जीवन ही क्यों ना हो, ये सात रंग ही असली हैं, बाकी सब नकली है। बरसातों में दूर पहाड़ पर ये इंद्रधनुष मनमोहक होता है। और ये भी तो बताइए कि इन सात रंगों का, इन सात की गिनती जो है वो सुरों में भी इस्तेमाल होती है, सात सतरंगी सपने भी होते हैं और इंद्रधनुष तो होता ही होता है। एक श्रोता ने कहा है कि हमारी सगाई के बाद जब पारिवारिक फंक्शन में होने वाली धर्मपत्नी से मुलाकात हुई थी तो मौका देखकर अकेले में ये गीत गाकर सुनाया था, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा, ये सुनकर वो मुस्कुराई, ये प्यार आज तक कायम है और अंतिम सांस तक रहेगा। वाह बहुत सुंदर बात। एक और श्रोता कह रहे हैं वाह बहुत सुंदर, मैंने तेरे लिए सात रंग के सपने, सुरीले सपने चुने, हर अंतरे में कई भावों को बांध कर दिल की बातें करता हुआ प्रतीत होता है, मुकेश जी की आवाज़। और ये हमारे श्रोताओं ने कुछ संदेश में कहा है रजनीगंधा की बात, रजनीगंधा संग खिलता मन अक्सर किसी अनजाने से बंधन की महक से सराबोर हो जाता है, जिंदगी की आपाधापी में जब कोई ख़ास करीब आता है तो भावनाएं धीरे धीरे से दिल में अपनी जगह बनाने लगती हैं, शुरुआत भले ही खामोश हो लेकिन जैसे ही दिलों के तार जुड़ते हैं जीवन के सारे सुर सुरमई हो जाते हैं और बिखरे हुए जज्बात सिमट कर एक मुकम्मल ताल में बंध जाते हैं। बड़ी सुंदर बात कही आपने, तो चलिए अब अगला गाना सुनते हैं। इस गाने को सुनकर बताइए कि इस फिल्म में प्रमुख भूमिका में अभिनेत्री कौन थी, और साथ ही आपको ये भी बताना है कि ये जो फूल है रजनीगंधा, ये गुलदानों में बहुत लोकप्रिय होता है या कभी हम जब किसी को बुके गिफ्ट करते हैं, आपको अपने फ्लावर वेज में कौन सा फूल सबसे सुंदर लगेगा, अगर आप किसी को देना चाहें या घर में सजाना चाहें कौन सा फूल सबसे सुंदर लगता है।

पिछले गीत के सवाल का जवाब नजर आया। हमारे श्रोताओं ने बताया कि प्रेम गीत फिल्म के का जो गाना हमने सुनवाया था और पूछा था कि प्रमुख

थे। और एक श्रोता ने कहा है कि वाह क्या सुंदर प्रश्न पूछा आपने, हम तो जब भी वर्षा ऋतु में मेघों का आगमन होता है तो मोबाइल लेकर छत पर चढ़ जाते हैं रूई जैसे सुंदर सुंदर मेघों की क्लिक्स लेने के लिए। खूब सारी क्लिक्स लेते हैं लेकिन फिर वापस भागना पड़ता है भीगने के डर से, स्वयं नहीं मोबाइल के। सच में मोबाइल बचाना बहुत ज़रूरी है इस मौसम में। एक और श्रोता कह रहे हैं, जो हमने छोटे छोटे इंद्रधनुषों वाला एक संदेश पढ़ा था उसी से संबंधित है ये संदेश हमारी एक और श्रोता का। लिखा है, ये तो हमने भी देखा क्योंकि कनाडा और अमेरिका दोनों के बीच का नज़ारा ही है नियाग्रा फॉल्स पर, बड़ा ही प्यारा नज़ारा, हम कभी नहीं भूल सकते, वो इतना प्यारा समा, वो पल मानो हमारे दिल में सदा के लिए बस गया है। एक और श्रोता ने कहा है कि मौसम की बातें हो रही हैं तो आज सभी को गरजते बरसते बादलों का इंतज़ार है, लेकिन कुदरत भी और इंतज़ार करा रही है। इंतज़ार के इस वक्त के लिए इनको गीत याद आया है, कहाँ से आए बदरा, फिल्म चश्मे बद्दूर का गाना। और एक श्रोता कह रहे हैं कि भाई इंद्रधनुष प्रेमी इंद्रधनुष को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भली भांति देख सकते हैं और अपने अपने दुनिया को मुट्ठी में भरकर खुश हो सकते हैं। भाई ये कुछ मतलब ठीक है देख सकते हैं, लेकिन देखने के साथ जो उसको एक उल्लास जुड़ा रहता है वो कैसे महसूस होगा। ये हमारे एक श्रोता ने मैसेज भेजा है कि आज काले वक्त एहसास और यादों के खूबसूरत ताने बाने को बुनता है, ये महज एक कुछ पंक्तियां नहीं बल्कि ज़िंदगी के सुरीले सफ़र का एक जीवंत दस्तावेज़ है। इसमें एक ऐसे रूमानी मौसम का जिक्र है जो अपने साथ सतरंगी ख्वाब लेकर आया है, जहां अनजाने रिश्ते भी सदियों पुराने लगते हैं। जैसे जैसे ही रजनीगंधा की भीनी खुशबू हवाओं में घुलती है, ज़िंदगी का हर बिखरा सुर एक मुकम्मल ताल बन जाता है। ये लम्हा भले ही हमेशा न ठहरे पर जाते जाते दिल में ताउम्र मुस्कुराने वाली एक मीठी कसक छोड़ जाता है। सच में एक और श्रोता ने कहा है कि पुष्प बहार का सुहाना मौसम, सुगंधित फूलों की महक जीवन को खुशियाँ प्रदान कर रही है, सृष्टि देवता खिलकर प्रसन्नता से हंस रही हैं, मन भावन

पिछले गीत के सवाल का जवाब नजर आया। हमारे श्रोताओं ने बताया कि प्रेम गीत फिल्म के का जो गाना हमने सुनवाया था और पूछा था कि प्रमुख

0: छोड़ जाता है। सच में एक और श्रोता ने कहा है कि पुष्प बहार का सुहाना मौसम, सुगंधित फूलों की महक जीवन को खुशियां प्रदान कर रही है। सृष्टि देवता खिलकर प्रसन्नता से हंस रही हैं, मन भावन गीत तन्मयता से गुनगुना रही हैं। बिल्कुल बादल, बिजली, चंदन, पानी और सुमन सुगंध की तरह धीरे धीरे यह मस्ताना मौसम एक मीठी मीठी सी चुभन और ठंडी ठंडी सी अगन हमें अर्पित कर रहा है। सुरीले सफर में आज ऐसे ही कुछ मधुर गीत, और इन्होंने कुछ गीतों का भी जिक्र किया है। और बड़ी खुशी की बात है कि ये शुरुआत में भेजा हुआ संदेश, इसमें से कई गाने हमारी लिस्ट से मैच हो गए। एक और श्रोता ने कहा है कि कलियां और बहारों की तो बातें हैं, और रजनीगंधा फूल तुम्हारे यूं ही महके जीवन में, आओ मिल जाएं हम सुमन और सुगंध की तरह, ये कुछ इन्होंने गीत लिखे हैं, तो चलिए ये गीत भी शामिल हो गए। और एक और श्रोता ने कहा है कि फूल और कलियों की बातों पर इन्होंने अपने चारों तरफ उन्हें खिलते हुए महसूस किया है। अब ये कार्यक्रम का आखिरी गीत आपके लिए, इस गीत को सुनिए, बताइए फिल्म का नाम और प्रमुख कलाकारों के नाम।
1: अभी अलविदा मत कहो।

संगीत राज बब्बर और सलमा आगा की ये फिल्म, और बहुत सारे संदेश भेजे हैं उन फूलों के बारे में। हमारे एक श्रोता ने कहा है, रजनीगंधा तो सच में दिल से दिल की आवाज़ पहुंचाने का जरिया है। मानो हमारी गुरु स्वरूपा दीदी ने जब इतने प्यार से हमारे सत्संगी सखी के लिए रजनीगंधा फूलों का गुलदस्ता भेजा, तो नेत्रहीन हो चुकी और डायलिसिस पर चल रही सखी फूलों को पाकर खुशी से झूम उठी और रजनीगंधा फूल तुम्हारे गीत गुनगुनाने लगी। उनकी खुशी देखकर हम सब भी खुशी से सारे दर्द भूल कर उनके साथ झूमने लगे। ये बदलाव पर व्यंग है जिसकी गिरफ्त में हम सभी प्रकृति से खिलवाड़ कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग का दंश झेल रहे हैं। हमारे एक और श्रोता ने कहा है, जो उन्होंने कहा था कि सोशल मीडिया पर देख सकते हैं और कर सकते हैं, और हमारे और श्रोताओं के भी संदेश हैं, लेकिन अब कार्यक्रम का वक्त हो रहा है। एक श्रोता कह रही है कि फ्लावर वास से ज़्यादा हमको ये जो पेड़ों पर फूल अच्छे लगते हैं, पेड़ पौधों पर अच्छे लगते हैं, क्योंकि फ्लावर वाज में ये जल्दी से मुरझा जाते हैं। हाँ, सच में मुरझा जाते हैं, लेकिन यादों की खुशबू कभी कम नहीं होती और कभी नहीं मुरझाते वो फूल जो मीठी मीठी बातों के साथ हमारे मन में यादों के रूप में सुरक्षित रहते हैं। इन्हीं बातों के साथ अब दीजिए राजुल को इजाज़त, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

रात होगी लेकिन यादों के ये चिराग जलते रहेंगे। हमारे श्रोताओं ने बताया निकाह फिल्म का ये गाना आपने सुना, महेंद्र कपूर की आवाज़, हसन कमाल के बोल, रवि।

रोकती है मेरी राहें, मैं की बोतल जैसी बाहें, हाय हाय।

इशारे ये अदाएं, मैं की बोतल जैसी बाहें, हाय हाय ये निगाहें, हाय हाय हाय ये निगाहें, कर दे शराब जिसे चाहे मैं तो भूल गया राहें।

फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। अब हमारी आज की ये सभा यही संपन्न होती है। कल प्रातः 5:55 पर अपनी प्रातःकालीन प्रसारण सभा के कार्यक्रमों के साथ हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति

फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। अब हमारी आज की ये सभा यही संपन्न होती है। कल प्रातः 5:55 पर अपनी प्रातःकालीन प्रसारण सभा के कार्यक्रमों के साथ हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति